0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: RM2 Radio Musty.
1: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:04 हो रही हैं. रास्ता भले ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में जोश है, आप में हिम्मत है, आप में पैशन है, आप में डिसिप्लिन है, तो हर रास्ते को आप पार कर सकते हो. Wishing you all a very good morning, my dear listeners. आज है 2 जून. बॉलीवुड के लिए खास दिन और दुख भरा दिन भी है, क्योंकि इसी तारीख को 2 जून इन द ईयर 1988 कितने साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी वो याद करते हैं, उनको याद आते हैं, यानी कि उनको याद हम करते हैं. द चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, आपको पता चल गया. हम बात कर रहे हैं अबाउट द ग्रेट लेट राज कपूर साहब. 14 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था और 2 जून 1988 को उनका देहांत. हिंदी सिनेमा में जो एक्टर रहे, स्क्रीन प्ले राइटर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और संगीत तो उनके खून में ही था. एंड ऑफकोर्स आज उनकी बरसी है, तो पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे, और आज उनकी बरसी पर उनके लिए श्रद्धांजलि स्पेशल प्रोग्राम्स भी होंगे. 12 बजे आप सुनते रहिएगा एंड थोड़ी बहुत बातें भी हम करते रहेंगे सुबह सुबह उनके गानों के जरिए. सो वेटिंग फॉर यू ऑन 5499-1294. इट्स योर वेकअप कॉल.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: बस हीरा और पन्ना की कहानी तो चलती रहेगी. आप अपनी सुनाई 5499 1294 पर. Wishing you all a very good morning. प्यार भरा नमस्कार once again. Specially आपको धीरज, साथ में आयुष, विधिशा, अश्विन, हरक परिवार, ज्योति, मोदा बैसी. प्रणाम आपको. यहाँ पर हैं कौन? वेल त्रियोली से भाई सूरज शर्मा, सजादा और पूरे परिवार के नाम. राम राम जी. आपको भी विशिंग वेरी गुड मॉर्निंग. बेटी है रिया, साथ में आंशी, केशनी, चाची प्रेमिला, रामचंद्र और सभी के नाम. फ्रॉम कविता बर्टन, आप हो फ्रॉम पॉजिटिव लाक. प्रणाम. आप कैसी हैं शीला जी? फ्रॉम लेस्पेरेंस ट्रेबिशे. रैली हो बिल्कुल ठीक ठाक. प्यार भरा नमस्कार आपको भी. मिस्टर सूर्यदेव सुमागो, ओ आज आपका बर्थडे है. सो आपकी प्यारी पत्नी माला, बेटे हैं कृष्ण, उत्तम, सुयश, शर्वन, 8 छोटे बच्चे, बहू तथा सभी सुमाहू परिवार से एंड दोज फ्रॉम कनाडा आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेज रही हैं. एंड यहाँ पर है कौन? द शो मस्ट गो ऑन, राज कपूर साहब कहते थे. डेफिनेटली मिस्टर टोनी, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आज उनकी बरसी है और ऐसे ग्रेट कलाकार को हम भूल नहीं सकते. एंड एवरग्रीन सॉन्ग्स, उनकी मूवीज हमेशा भले ही ना रहें लेकिन ये जो एवरग्रीन क्लासिक्स मूवीज एंड सॉन्ग्स हैं हमेशा रहेंगे. रेडियो मस्ती टीम, विश यू अ ब्लेस्ड थर्सडे. थैंक यू. एंड आपको संगम वाले सीन्स पसंद हैं और हर दिल जो प्यार करेगा. छुपे छुपे आपने गाने की फरमाइश भी कर दी है. हम कोशिश करती हैं. सरोज, उमेश, आरशी, साथ में अंबल, राजन, कथुबोन से पूरे परिवार के नाम. एंड गुड मॉर्निंग आपको. गोइंग टू हॉस्पिटल, भाभी इज नॉट वेल. अरे बाप रे बाप, वो ठीक हो जाए यही हम प्रार्थना करते हैं. अब्दुल अंसारा बानू एंड जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइक खुशनुआ सियापाजु फैमिली, थैंक यू सो मच. एंड स्पेशली आपके लिए भी प्यारी सी ज्योति शतुबिनागस से, आशनी रेखा, सुरेखा एंड ऑफकोर्स माधव परिवार, विदाउट फॉरगेटिंग प्यारी सी अमृता एंड फैमिली पोएतु साबले से.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: आप जहां भी रहे सलामत रहे खुश रहे हम यही कामना करते हैं. 518. So आज है बरसी द ग्रेट पुण्यतिथि द ग्रेट लेट राज कपूर साहब की. भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा नाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके गानों के जरिए. और वे सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक जैसे कहते हैं ना दृष्टिकोण वाली फिल्म मेकर थे, निर्देशक थे यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी. वैसे आज उनको हम याद कर रहे हैं और सोच एक ऐसी सोच और कला के प्रतीक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में एक नई पहचान दी. वैसे 14 दिसंबर 1924 को जन्मे राज कपूर ने बहुत ही कम उम्र में ही फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था. अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा

और दृष्टि से अलग मुकाम ही हासिल किया है, जिन्होंने आरके फिल्म्स की स्थापना की और कई यादगार फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। उन्हें फिल्मों में आम इंसान की कहानी, उनके सपने, उनके संघर्ष, उनके जज्बात खूबसूरती से दिखाया जाता था। आवारा हो, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मेली, चोरी चोरी और इतनी सारी फिल्में हैं इन्होंने अमर बना दिया।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: उनका जापानी जूता जो था वो देश भर में पूरी दुनिया में घूम चुके थे और ऐसे गाने Well, thank you so much. Evergreen songs only on Radio Musti. आज अरलेट राज कपूर की बरसी है, उनकी पुण्यतिथि है. उनके बहुत सारे फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं और यहाँ पर हैं हबी सुबिराज ऑलरेडी वर्किंग और बस जितने भी उनके पैसेजेस हैं हमें सुनते सुनते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हैं. गुड मॉर्निंग एंड बो कुराज टू यू ऑल. बेटा श्रेयस के नाम बेटी शेवी आज वेल. थैंक यू सो मच. यहाँ पर गानों की फरमाइश तो इतने सारे आ रहे हैं भाई. राज कपूर पर फिल्म आया, मैं कोशिश कर रही हूँ और क्या. ओके तो यहाँ पर जब उनकी बात होती है उनका जो ऑन स्क्रीन अंदाज था बहुत ही अनोखा था. आई मीन राज कपूर, उनका मासूम चेहरा, दिल को छू लेने वाली अदाकारी, आम आदमी के किरदार को यानी कि जीवंत करने की कला उन्होंने किया था और हर दिल अजीज बन गए थे. कई लोग तो उन्हें बॉलीवुड के मशहूर कलाकार चार्ली चैपलिन एज आई सेड से प्रेरित मानते थे और उनके कई किरदार में चैपलिन जैसी जो सादगी थी, जो मानवता था वो झलक देखती थी. एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली उनको द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है और मुकेश की आवाज़ स्पेशली लगभग जितने भी गाने राज कपूर साहब पर पिक्चराइज हुए हैं वो सब मुकेश की आवाज़. और इन दोनों को कहा जाता है जैसे जूते और मोजे लाइक शर्ट एंड पतलून वगैरह यू नो, तो ऐसे ही माना जाता है. उनका अभिनय एक ऐसी जोड़ी थी जिसे दर्शक कभी भूल नहीं पाते हैं. और राज कपूर की फिल्मों में जो आम आदमी के सपने, उनकी परेशानियां, उनकी उम्मीदें दिखाई देती हैं, अपने किरदारों के माध्यम से उन्होंने गरीबी, जो असमानताएं थी, प्यार, इंसानियत जैसे विषय को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया और उनका ट्रैम्प स्टाइल कैरेक्टर दुनिया भर में मशहूर हुआ और लोगों ने उन्हें भारतीय सिनेमा का वंस अगेन चार्ली चैपलिन भी कहा.

वेल, हर दिल जो प्यार करेगा वो तो हमेशा गाना ही गाएगा, और इन गानों के साथ साथ आपके मैसेजेस भी आ रही है. थैंक यू सो मच. सो लेट मी विश हैप्पी बर्थडे टू यू प्रिंसेस प्रिस्टी. ये है मॉम निष्ठा, पापा दीपक, विति, जशवी, आंशी, नानी श्यामा, नाना प्रदीप, सब परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. प्रणाम आपको. आप हो फी फ्रॉम थ्रियोले. गाना आपके लिए भी है रेडियो मस्टी टीम. थैंक यू धनेश्वर जी, प्यारी पत्नी सुनीता, संजीव, निशा, देव, रेखा, दावेदुस परिवार है. एंड बो कोहाज, हैव ए नाइस डे अहेड. ये ट्यूसडे रेनी है कोंगोमा में. ओहो, यहाँ पर सुया जी कहती है बस अपना ख्याल रखिएगा. एंड 5499 1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: अपनी अपनी पसंद की लड़की या फिर लड़के को तो आप मिल पाएंगे, लेकिन राज कपूर जैसे लेजेंडरी एक्टर, कैरेक्टर एंड आर्टिस्ट दुनिया में कम ही ऐसे होते हैं. तो आज उनकी बरसी पर कुछ बातें उनकी हो रही हैं उनके गानों के साथ साथ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट राज कपूर, तो वे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन, चाइना और अन्य कई देशों में भी बेहद ही लोकप्रिय थे, फेमस थे. उनकी मूवी आवारा और उनका गीत आवारा हूँ दुनिया भर में पसंद किया गया और आज भी किए जाते हैं उनके गाने. उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक, जैसे कहते हैं ना, विश्वव्यापी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी फिल्मों का जो संगत भी उनकी सफलता का और संगीत भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था. उन्होंने संगीतकारों, लिरिसिस्ट्स यानी कि गीतकारों और सिंगर्स के साथ मिलकर ऐसे ऐसे गाने दिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. बेट प्यार हुआ, इकरार हुआ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, दोस्त दोस्त ना रहा, वगैरह वगैरह, इन गीतों में जिंदगी के गहरे एहसास समाये हुए हैं.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सूरज जैसा भी हो सीरत अच्छी होनी चाहिए क्यों भाई। आप है महेंद्र फ्रॉम परमा कैथुबोन और आप कह दे कि राजू ने कहा था कि द शो 3 घंटे का याद है ना। हाँ जी ये तो हमें भी पता है कि उन्होंने कहा था 3 घंटों का शो बचपन जवानी और बुढ़ापा। लेकिन जैसा भी समा हो जैसा भी हाल हो हम हमेशा आपके साथ ही हैं और रहेंगे। नंदा जी गुड मॉर्निंग, दूतिका रघुजाना और यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे हम सफर बने हुए हैं थैंक यू सो मच। म्यूजिक एंड जॉगिंग वेरी गुड कॉम्बिनेशन थैंक यू सो मच ललिता एंड जीतन फैमिली।

0: दिल की बातें दिल ही जाने या किस्मत जाने?
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: And as usual, शुरुआत आपके साथ.
2: Aries मेष राशि.
0: आज घर में किसी खास मेहमान के आने से रौनक और खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप उनकी खातिरदारी में व्यस्त रहेंगे। परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में नई मिठास खोल देगी। वैसे मनमुटाव भी धीरे धीरे खत्म होने नजर आए रहेंगे और कामों को टालने की आदत आज नुकसान दे सकती है यार। और अगर आप मौज मस्ती में सिर्फ घुले रहेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। दैट्स व्हाई जरूरी काम समय पर निपटाएं।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: वेल, आज अतीत की कोई पुरानी गलती अचानक सामने आ सकती है हाँ, जिससे रिश्तों में थोड़ी खटास आने की संभावना है। विरोधियों की बातों में आकर कोई निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर बढ़ाएं। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी हर परिस्थिति में आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। संतान का जिद्दी स्वभाव आपकी चिंता बढ़ा सकती है। दैट्स व्हाई उन्हें प्यार और समझदारी से संभालने की जरूरत होगी।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आज धन और आर्थिक मामलों में किस्मत आपका साथ देगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुके हुए काम भी पूरे होने की संभावना है। यदि कोई प्रोजेक्ट या काम पैसों की वजह से अटका हुआ था तो अब उसमें गति आएगी। सरकारी कामों को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें और आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए किसी अच्छी योजना में निवेश करना चाहेंगे जरूर।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: लेन देन और पैसों से जुड़े मामलों में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके भीतर आगे बढ़ने और खुद को साबित करने की जबरदस्त इच्छा रहेगी। मेहनत से पीछे हटना आपके स्वभाव में नहीं होगा। परिवार में किसी से किया हुआ वादा निभाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना वेरी इंपॉर्टेंट।
2: लियो सिंह राशि।
0: आज आपकी मीठी वाणी और विनम्र व्यवहार आपको लोगों के बीच खास पहचान दिलाएगा। समझदारी से कही गई बातें आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। तरक्की की ओर तेजी से कदम बढ़ाएंगे। पुराने कर्ज उतारने की आप कोशिश में आप सफल भी हो सकती हैं। परिवार में एकजुटता और अपनापन बना रहेगा।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: वेल, आज का दिन सामान्य लेकिन संतुलित रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई पुरानी डील आखिरकार फाइनल हो सकती है, जिससे मन को राहत मिलेगी। स्वादिष्ट भोजन और जीवन साथी के साथ बिताए गए पल रिश्तों में और गहराई लाएंगे। कहीं घूमने जाने का प्लान बने तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही निकले हाँ।
2: लिब्रा तुला राशि।
0: वेल, आज आपको हर फैसला सोच समझ कर ही लेना जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है।

0: जरूरी मेडिकल टेस्ट भी करानी पड़ सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जहां आपकी सक्रियता और ईमानदारी लोगों को प्रभावित करेगी। वैसे घर में मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा और जीवंत बना रहेगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज का दिन धैर्य और संयम से काम लेने का संदेश दे रहा है। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने लिए शॉपिंग कर सकती हैं और खुद पर खर्च करने का भी मन बनेगा। बड़ों के आशीर्वाद से प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आय में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। वैसे दोस्तों के साथ पार्टी या किसी खास आयोजन की योजना बन सकती है, हालांकि उसमें एक खर्च भी खूब होगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। खान पान में लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए खुद का ध्यान रखें। लंबे समय से जिस घर या प्रॉपर्टी को खरीदने की आप कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपका दिल खुश कर सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव स्ट्रेस कम होगा और घर का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: राइट, आज स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद शानदार रहेगा। परीक्षा या फिर पढ़ाई से जुड़ी परिणाम उम्मीद से बेहतर आ सकती हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपके सम्मान में छोटी सी पार्टी या सेलिब्रेशन भी हो सकता है। घूमने फिरने की योजना बने तो खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर रखें तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: कार्यक्षेत्र में किसी की बात आपको दिल पर लग सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ने की संभावना है। हालांकि बॉस की सलाह और निर्देशों को गंभीरता से लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेन देन से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता रखें। संतान को नौकरी या करियर के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। वैसे पारिवारिक बिजनेस में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे मन में संतोष और खुशी बनी रहेगी।
1: Pisces, मीन राशि,
0: लास्ट, आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सीख देगा। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से निराशाजनक खबर मिल सकती है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है। घर परिवार की समस्याएं मन को और परेशान कर सकती हैं, लेकिन यदि आप शांत रहकर काम लेंगे तो धीरे धीरे हालात संभल भी सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड अ वेरी गुड डे अहेड।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वेल दो जो 1988 को राज कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गाने, उनकी यादें आज भी हमारे साथ हैं, है ना। उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हर पीढ़ी उनकी फिल्मों से कुछ न कुछ सीखती है और उनकी कला का सम्मान करता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमने उनके विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके गानों को फिर से याद किया। राज कपूर जैसे कलाकार शरीर से भले ही दूर हो जाते हैं, लेकिन अपनी कला और विरासत के माध्यम से सदा अमर रहते हैं। बस एक नाम नहीं है राज कपूर, बल्कि इंडियन सिनेमा का एक युग थे। उनकी मुस्कान, उनकी फिल्में और उनके सपने आज भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। और बस 12 बजे इन रेट्रो रिदम डेफिनेटली उनके और मस्त गाने आप पर सुनते चलेंगे। अभी के लिए बस 6 बजे की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप सुनेंगे संक्षिप्त समाचार।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Shiva ji hai. सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ सुनते हैं आपसे पूजा नमस्कार आपको
6: नमस्कार नीतूषा सभी को मेरा नमस्कार कांटोरेल मामले में पिंक कपड़े पहने हुए और कथित रूप से तलवार लिए युवती उस युवती को कल सीसीआईडी में पेश की गई हिंसा की घटनाओं के 15 दिन बाद उससे पूछताछ की गई और उसके वकील गाल गुलबुल भी उसके साथ थे 22 साल की इस युवती ने इस आरोप से इनकार किया है उसने घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी की पुष्टि की और बताया कि वहां के कुछ निवासी उस पर और उसके दोस्तों पर हमला करना चाहते थे और उनका वाहन जला देना चाहते थे उन्हें जंगल में शरण लेनी पड़ी और बाद में एसएमएफ द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया बाइक इस निवासी को पूछताछ के बाद घर लौटने की अनुमति दी गई पूर्व वित्त मंत्री रंगनाथन पदयाची को कल सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया उनसे उन बयानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया जिनमें कहा गया था कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 2025 में 83 बिलियन रुपए छाप कर सरकार को ट्रांसफर किए गए थे साहित्य कला और मानवता के प्रतीक रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके 165वें जन्म वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान में कल आयोजित समारोह में इस वर्ष का टैगोर मेमोरियल लेक्चर राष्ट्रपति गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने प्रस्तुत किया विदेश में इजराइल और हेजबुला के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है इजरायली ताकतों ने दावा किया है कि उन्होंने लबनान सीमा के पास स्थित ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया है अरब मौसम का हाल पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है सुबह के समय और इस बीच हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही है अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह को देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिरे रहेंगे रह रहकर वर्षा होगी दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा रात को भी मौसम सुहाना रहेगा हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी दक्षिण पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 अधिकतम 23 से 26 शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा सूर्योदय आज सुबह 6:38 पर सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला हम मिलेंगे 6:30
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio.

हम तो कहते हैं हमेशा सीधे रास्ते पर चलेंगे तो ठोकर भी नहीं लगेगी। 6:09 वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, प्यार भरा नमस्कार प्रणाम, ये है राइज एंड शाइन। ऑफ कोर्स बहुत सारे मैसेजेस आपके नाम ऑन 5499-1294। सो वेरी गुड मॉर्निंग आपको बदवक विदेशी एंड एनी सॉन्ग आप कहते हैं तो अनुषा व्हाई नॉट। गुड मॉर्निंग सरिता जी फ्रॉम गुड लैंड्स, बस राज कपूर के गाने सुनते ही बचपन की यादें उभर आई है, ये तो है यादें। वुड लाइक टू विश एल्डर ब्रदर ऋषि हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस हिम। एंड ये है रीना आरव पापा सुनील बेलेश से, आपके पूरे परिवार की ओर से आपकी कसम आपने गाने की फरमाइश की है, तो चलिए 12 बजे सुनते रहिए जगमनी और आपके पूरे परिवार के नाम। ये गाना आपके लिए चलाती है खुशबू फ्रॉम लामोचिया, चंदन, सोनाली, शनाया, शानवी एंड फैमिलीज। पूजा बिसेसा अपने देवर ऋषि बिसेसा को कहना चाहती हैं हैप्पी बाला बर्थडे। हाँ, ये है बिसेसा फैमिली की ओर से, आपको भी नमस्ते करण। एंड नेक्स्ट गाना आपके लिए सोनम भोला, एंजल, अभिषा, विष्णी और अश्विनी है, मॉम लिटिल गर्व, मयांसी एंड

हर चीज जो हम करते हैं उसमें अजूबा है, अजूबा है, अजूबा है। 616, थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको रीना संजीता। कैथ्रो कुकु से कहती है, मेरे प्यारे दोनों बेबीज प्रत्युष दुर्वांश साथ में है कौन यहाँ पर, अपने दो कहाली के नाम तो बहुत सारे हैं। ऑल राइट, शीना और आपकी मॉम रेणुका, पापा मनोज, हर दयाल परिवार के नाम विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट गाना आपके लिए भी चलाते हैं यहाँ पर। थैंक यू कुमार एंड द बिशन फैमिली, बर्थडे विशेज टू लवली हबी ऋषि फ्रॉम वाइफ पूजा, बेटा अवनीश, बेटी अवनी, बेलागिबिया सश से क्या बात है, आपके नाम तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं मिस्टर ऋषि। वंस अगेन फ्रॉम बाबू पल्लवी, पापा सूर्यदेव, सभी बिसेस और परिवार के नाम। चलिए लगे हाथ आपको भी हम विश कर दें हैप्पी बर्थडे। आप हो सलवन वेंकाता सामी ऑफ लाठो कनेक, बेस्ट विशेस टू यू आपके बर्थडे पर, वाइफ बेला, बेटा पुरुष, आपकी माँ, आपकी बहनें, सब परिवार, आपके सास ससुर, लक्ष्मण परिवार की ओर से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

अजनबी को कब अपने बन जाते हैं पता भी नहीं चलता है. थैंक्स टू दिस सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल रोमांटिक गाने बॉलीवुड के जो हमको जोड़े रखे हैं. थैंक यू सो मच. हे कंग्रेचुलेशंस आपको रुद्राक्ष नंदिनी रोड्रिग्स, एंड घर में नया मेहमान आया हुआ है. सो बधाइयां जयान जारा रविश प्रीशा लवशा एंड डियर वंस. प्यारी सी कविता, गुड मॉर्निंग माय डियर. नमस्ते जी, विशिंग तन्वी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम चाची बेबी, चाचा संजीव, भाई मनीष, सिस्टर है दीक्षा, भाई है यानी कि ब्रो इन लो आशले, गमदुआ परिवार, प्रदीप पपाय से गुड मॉर्निंग हेमा. नेक्स्ट गाना आप आ मेरे नाम. हाँ, थैंक यू सो मच. एंड जितने भी गाने हैं गर्ल्स आर टू यू लवली पीपल. रास्ते पर होंगे प्लीज ड्राइव केयरफुली, गोइंग टू वर्क, बों को आज टू यू ऑल. 6:23 यानी कि 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. उसके बाद वेदिता आपके साथ जुड़ जाएंगी इन मॉर्निंग बीट.

0: सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। राष्ट्रीय सभा की कार्य आज दिन के 11:30 बजे विपक्ष नेता जो रिजोंगा के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी। एजेंडा में कुल 60 से अधिक प्रश्न हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रश्न प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से पूछे जाएंगे। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस बहुत जल्द मॉरिशस के प्लेनमायों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। जुलाई 2026 से मॉरिशस में कई सामाजिक अकाउंट्स में धीरे धीरे कमी किए जाने की संभावना। इन परिवर्तनों के केंद्र में सीएसजे इनकम अलाउंस स्कीम है, जिनका प्रबंधन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। और विदेश में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कांटोरेल में पेश आई घटना के सिलसिले में उस दिन पिंक कपड़े पहने और कथित रूप से तलवार लिए उस युवती को कल सीसीआईडी में पेश किया गया। हिंसा की घटनाओं के 15 दिन बाद अपने वकील राउफ गुलबुल की मौजूदगी में उससे पूछताछ की गई। 22 साल की इस युवती ने इस आरोप से इनकार किया है। उसने घटना स्थल पर अपनी मौजूदगी की पुष्टि की और बताया कि वहां के कुछ निवासी उस पर और उसके दोस्तों पर हमला करना चाहते थे और उनका वाहन जला देना चाहते थे। उन्हें जंगल में शरण लेनी पड़ी और बाद में एसएमएफ द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। पाइकी से निवासी को पूछताछ के बाद घर लौटने की अनुमति दे दी गई। चलिए उनके वकील राउफ गुलबुल को सुनते हैं।
1: Donc il y a une sortie et une motion bail pour ban du monde qui fermé dans l'affaire de Cantorel. Mais certainement c'est quelque chose qui a eu ça, madame, la patine à sable de cela. Alors quel film là bien vous trouvez? Prends film là, zoom li, gété, patine à sable de cela.
2: Qui était sa maître?
1: Mon bezao patine à sable.
2: Mon client.
1: Mon bezao, non, mon pas dire voilà qui mon client j'ai moi. C'est mon bezao ça ban c'est qui peut passer l'eau. Il était un peu bezao. La femme au sable c'est pas gété, patine à sable de la main. Mon bezao peine à sable.
0: और इस मामले में हिरासत में मौजूद संदिग्धों की जमानत पर रिहाई के लिए याचिका आज 2 जून को मोका की अदालत में विचार किया जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री रंगना देनपदे कल दिन के 1:30 बजे अपने वकील राउफ गुलबुल के साथ पोर्टलिस के सीसीआईडी पहुंचे। पदयाची जिन के खिलाफ 16 मई से बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, उनके साथ पूछताछ शाम 4:15 बजे तक चली। उन्होंने 11 मई को फेसबुक पर प्रकाशित एक वीडियो में कहा था कि सरकार ने पिछले साल 83 बिलियन रुपए छापे। पदयाची ने कहा कि वे संपन्न आर्थिक बहस के अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं। बैंक ने उनके इस बयान को अगले ही दिन खारिज कर दिया था। पूर्व वित्त मंत्री रंगना देनपदयाची को सुनते हैं।
3: Aujourd'hui, je suis là pour défendre mes droits d'avoir un débat économique serein. L'économie, c'est un débat permanent, contradictoire. C'est pas une science figée. Donc, c'est un débat en permanence. On peut être d'accord avec moi, on peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux être d'accord avec vous. On commence à empêcher que les gens émettent des opinions. Vous vous rendez compte, un ancien ministre des Finances. Imaginez-vous quelqu'un qui va dire quelque chose par rapport à l'économie. Il n'aura plus le droit. Il n'aura plus le droit parce qu'on va utiliser la loi pour empêcher cette personne de parler.
0: राष्ट्रीय सभा की कार्य आज दिन के 11:30 बजे विपक्ष

0: विपक्ष नेता जूलियन रोंगाओ के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम होगा। एजेंडा में कार्यसूची में कुल 60 से अधिक प्रश्न हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को संबोधित होंगे। ये प्रश्न संवेदनशील मामलों से संबंधित हैं, जिनमें रोड्रिग्स नशे के खिलाफ लड़ाई, सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं। चलिए, जेनी येलप्पा की रिपोर्ट पर सुनते हैं अर्शिता रघु को।
1: आज राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही सत्र में शासन यानी गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं तथा देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विशेषकर वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सबसे पहले गोंबी पुथोदो चुनाव क्षेत्र के सांसद राम इतवरिया प्रधानमंत्री से वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट की तैयारियों के तहत आयोजित परामर्श बैठकों तथा उनमें शामिल हितधारकों के बारे में जानकारी मांगेंगे। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी से जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच प्राप्त वैट से संबंधित एक प्रश्न भी उठाया जाएगा। वित्तीय मामलों से जुड़े एक अन्य मुद्दे पर रिविया डिजोंगी सुयाक चुनाव क्षेत्र के सांसद रोशन जमन कोविड-19 प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फंड के मामले पर प्रश्न करेंगे। वे वर्ष 2022 में सिल्वर बैंक में निवेश किए गए 2.5 बिलियन रुपए के विथड्रॉवल तथा शेष 500 मिलियन रुपए की राशि की वर्तमान स्थिति पर स्पष्टीकरण चाहेंगे। वहीं सांसद जोआना बेरांजे एकाधिकार यानी मोनोपोलिस्टिक और अर्ध एकाधिकार यानी क्वाजी मोनोपोलिस्टिक वाले बाजारों में मूल्य नियंत्रण के मुद्दे को उठाएंगी। वे जानना चाहेंगी कि क्या एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग निर्धारण पर नियंत्रण के मामले में कंपटीशन कमीशन को अप्रभावी माना जा रहा है और इसी कारण एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। सार्वजनिक सेवाओं के संचालन पर भी चर्चा का केंद्र रहेगा। पोर्ट लुइस नॉर्थ मोटाइलोंग निर्वाचन क्षेत्र के सांसद लुडोविक काजेन प्रधानमंत्री से कैश ऑफिसेज के कार्य समय को दोपहर 2:30 बजे के बाद तक बढ़ाने तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नकदी रहित पेमेंट प्रणाली लागू करने की संभावनाओं पर सवाल पूछेंगे। रोड्रिक्स से संबंधित एक प्रश्न में पोमाचुरें ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही पिछले 5 वर्षों में ड्राइविंग परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या और जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंसों के आंकड़ों पर भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सांसदों के प्रश्न सत्र के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल विधेयक पर बहस फिर से शुरू होगी। इसके अलावा सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 नंबर 2 बिल भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक में वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान सरकार के संचालन और निवेश संबंधी अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रावधान किया जाएगा।
0: अब तक मॉरिशस से अदिस अबेबा जाने के लिए यात्रियों को जोहान्सबर्ग, नैरोबी या अंतानानारिवो में ठहराव करना पड़ता था। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस बहुत जल्द मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। प्रणव बिहारी की रिपोर्ट पर सुनते हैं करुणा लालू को।
2: ये उड़ानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को भरी जाएंगी। 12 जुलाई को अदिस अबेबा से सुबह 8:50 पर उड़ान भरी जाएगी, जो मॉरिशस को दोपहर 3:20 पर पहुंचेगी। वापसी में यात्री मॉरिशस से शाम 4:15 रवाना होंगे। रात 9:45 इथियोपिया की राजधानी अदिस अबेबा पहुंचेंगे। इस मार्ग पर इथियोपियन एयरलाइंस अपने लोकप्रिय विमान बोइंग 737 MAX 8 का उपयोग करेगी, जिसमें 16 बिजनेस क्लास और 144 इकोनॉमी क्लास सीटें उपलब्ध हैं। ये विमान क्षेत्रीय और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। एयरलाइन वर्तमान में ऐसे 29 विमानों का संचालन कर रही हैं और पिछले वर्ष नवंबर

0: नवंबर में 11 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर भी दिया गया था, जिससे उसके कुल ऑर्डर की संख्या 44 हो गई। समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेफिन टासू के अनुसार मॉरिशस के लिए ये नई उड़ान कंपनी की अफ्रीकी विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इस नई कनेक्टिविटी से दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापार आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
1: जुलाई 2026 से मॉरिशस में कई सामाजिक भत्तों यानी अकाउंट्स में धीरे धीरे कमी किए जाने की संभावना है। इस फैसले ने विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच कई सवाल और चिंताएं पैदा कर दी है। इन परिवर्तनों के केंद्र में सेज इनकम अलाउंस स्कीम है, जिनका प्रबंधन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। हजारों परिवार इसका असर हजारों परिवार पर पड़ सकता है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सहायता पर निर्भर है। जेनी येलाप्पा, अशिता रघु।
2: जुलाई 2026 से मॉरिशस के सोशल रजिस्टर में पंजीकृत नहीं होने वाले लाभार्थियों के अकाउंट में धीरे धीरे कमी की जाएगी। ये सहायता उन लाभार्थियों और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों के लिए है जिनकी मासिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति महीने में 20,000 रुपए से कम कमाता है तो उसकी सहायता राशि 1,000 रुपए कर दी जाएगी। जिनकी आय 20,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच है, उन्हें लगभग 833 रुपए मिलेंगे। 25,000 से 30,000 रुपए कमाने वालों को 667 रुपए मिलेंगे। 30,000 से 50,000 रुपए मासिक आय वाले लाभार्थियों को 500 रुपए का अलाउंस दिया जाएगा। साथ ही रेवेन्यू मिनिमम गारंटी अलाउंस उन फुल टाइम कर्मचारियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 20,000 रुपए से कम है। ये अलाउंस जुलाई 2026 से अधिकतम 1,890 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकता है। जो लोग इस लाभ से फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के पास अपनी बैंक जानकारी पंजीकृत करनी होगी, जो उसकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य कम आय वाले कामगारों के लिए सहायता बनाए रखना और सामाजिक सहायता प्रणाली को धीरे धीरे पुनर्गठित करना है।
1: भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य है अलग अलग देशों के विकास मॉडल, प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय चुनौतियों को करीब से समझना। इसी कड़ी में डेलीगेशन ने कल एबन में मंत्री शकील मोहम्मद से मुलाकात की। करुणा लालू।
0: मॉरिशस इन 16 देशों में शामिल है, जिसे नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रोग्राम के संदर्भ में चुना गया। इस पहल का मकसद दुनिया के विभिन्न इलाकों के नागरिक और सैनिक उच्चाधिकारियों को विकास, शासन और सहयोग की चुनौतियों की बेहतर समझ प्रदान करना है। इसी संदर्भ में नेशनल डिफेंस कॉलेज के कमांडर एम अवशल मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस फोर्स के 15 उच्चाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में मॉरिशस में है। भारत में 11 महीने के एक प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, जिसके दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति का अध्ययन कर रहे हैं। सैद्धांतिक भाग पूरा होने पर 16 देशों में जाएंगे। इनमें मॉरिशस शामिल हैं, जहां की संस्कृति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन कर भारतीय सरकार को सुधार के मार्ग का प्रस्ताव करेंगे।
3: एंड टू सजेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ वी कैन इंप्रूव ऑन दैट, सो दैट इज द मेन फोकस ऑफ आवर टूर ओवर हियर।
0: इस डेलीगेशन का स्वागत भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने किया। कई विकास बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें भारत के समर्थन से मॉरिशस सरकार द्वारा साकार की जाने वाली परियोजनाएं भी शामिल
4: रहीं। पर्यावरण
0: क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की नीति मकान निर्माण को लेकर नीति, डिजिटल स्ट्रेटेजी आदि पर सवाल किए गए। यह प्रमाणित

0: करता है कि दुनिया में मॉरिशस की एक अहम जगह है। ये डेलीगेशन 6 जून तक मॉरिशस में रहेगा। कई मुलाकातें निर्धारित हैं, खासकर पुलिस कमिश्नर और विभिन्न मंत्रालयों के साथ, जिनमें विदेश मंत्रालय भी शामिल हैं।
1: और साहित्य, कला और मानवता के प्रतीक रवींद्रनाथ टैगोर को उनके 165वें जन्मवर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रवींद्रनाथ टैगोर संस्थान में कल एक समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष का टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने प्रस्तुत किया। विधिमा सिबुरन की ये विशेष रिपोर्ट।
2: कवि, दार्शनिक और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा, रचनात्मकता और मानवतावाद के अपने दृष्टिकोण से पीढ़ियों को प्रेरित करते आ रहे हैं। टैगोर मेमोरियल लेक्चर के 98वें संस्करण के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान ने द परफेक्ट पर्ल ऑफ द डीप ओशन विषय पर आयोजित एक ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। ओहेलिया कहती हैं, मेरे अध्यापकों ने मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं समुद्र पसंद करती हूँ। कैम्ब्रिज प्रोजेक्ट में मैं इस पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं अधिक प्रेरित हुई हूँ।
3: Pour moi, la période c'est moi. Mes sentiments dans une société où tout est standardisé, tout le monde essaye d'être pareil, on se met dans des petites boîtes.
2: एलिशेवा ने कहा, मैं खुद मोती हूँ, मैं अपने आप को सीमित नहीं रखती, मैं इस पेंटिंग के माध्यम से अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ।
3: Qui me fait plonger pour essayer de me trouver moi-même. Et je cave trouver dans le dessin que il y a une fille, l'épaisseur, tout ça, ça représente l'eau et ça, ça représente le résultat de comment je me trouve.
2: इस वर्ष टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल द्वारा दिया गया, जिन्होंने आज की दुनिया में टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता पर विशेष जोर दिया।
4: L'occasion cause le la vie et la contribution de Rabindranath Tagore essentiellement comment nous besoin refaire une réflexion le nous-mêmes. Deuxièmement, mon aussi cause le la philosophie de l'éducation de Rabindranath Tagore.
2: मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और योगदान पर बात की कि कैसे हमें अपने आप पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने शैक्षिक आध्यात्मिकता पर बात की जो बच्चों की जरूरतों पर आधारित है। और तीसरी बात, टैगोर की अवधारणा ये है कि विश्व एक बड़ा परिवार है और हमारे बीच सॉलिडारिटी, साझा और शांति होनी चाहिए। ये दिखने में आसान विचार हैं, लेकिन जबरदस्त संदेश हैं। हमारी युवा पीढ़ी को ऐसे संदेश अपनाने चाहिए और अपनी जिंदगी में ढालने चाहिए।

0: शिक्षा, संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इन आयोजनों का उद्देश्य रविंद्रनाथ टैगोर के मूल्यों को बनाए रखना और मॉरिशस की युवा पीढ़ी को अपनी रचनात्मकता, सीखने के प्रति रुचि तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपने लगाव को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: मॉरिशस में आर्य समाज का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और वैदिक आयोजन सत्यार्थ प्रकाश मास आरंभ हो चुका है। ये विशेष माह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन, चिंतन और प्रचार प्रसार को समर्पित है। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न आर्य सभा समाजों और आर्य में मतलब वहाँ पर प्रवचन, सत्संग, वैदिक यज्ञ, भजन का आयोजन किया जा रहा है। जनता को सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांतों को समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मॉरिशस में यह आयोजन भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। आर्य सभा मॉरिशस की प्रधाना डॉक्टर शांति मुहाबीर को सुनते हैं।
2: जून महीना हिंदू जाति के लिए एक विशेष महीना है। यह मास सत्यार्थ प्रकाश मास नाम से प्रचलित है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 के जून मास में ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। सत्यार्थ प्रकाश में मानव जीवन को पवित्र बनाने वाले उच्च विचार निहित हैं। हजारों वर्षों से होश और जोश गंवा चुकी हिंदू जाति को सत्यार्थ प्रकाश ने नया जीवन दिया। हिंदुओं के लिए यह ग्रंथ संजीवनी है। स्वामी दयानंद चिंतक थे, महर्षि थे, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में वे गंभीर चिंतन और विचारशीलता का परिचय देते हैं। अगर हम अपने विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। इस वर्ष भारत से प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। वे वैदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं और शिक्षाविद हैं। परिवारों में, स्कूलों में और समाजों में उनके व्याख्यान निर्धारित किए गए हैं। आप उनके प्रवचनों से अवश्य लाभ उठाइए।
1: विदेश में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। इसराइली ताकतों ने दावा किया है कि उन्होंने लबनान सीमा के पास स्थित ऐतिहासिक किले पर भी कब्जा किया है और सीमा पार बढ़ते हमलों और लगातार बिगड़ते हालात के बीच कार्रवाइयों का आयोजन किया जा रहा है।

मौसम का हाल पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा और अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और रात को भी मौसम अच्छा रहेगा। हवा हल्की रहेगी और पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 26, हाल इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:38 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा।

0: 6:53 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी, और साथ ही रेडियो असिस्टेंट कोविला को भी हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी मदद से हम ये बुलेटिन आप तक पहुंचा पाए हैं। कुछ ही समय में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड नोवेल डेकुवेट में अठहत्तर साल की 78 years old बीबी फातिमा लाउटन पैदाशी नाम टप्सी और जिन्हें लोग फतेह नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके शौहर वाहब लौटन के मकान रॉयल रोड नोवेल डेकुवेट से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए नोवेल डेकुवेट की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए सैकोंस्टान सैंपिया का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। सर अब्दुल रहमान उस्मान लेन लेस्कालिये में 73 साल के 73 years old जनाब अहमद बाशिया खुसी जिन्हें लोग बशीर नाम से ज़्यादा जानती थी इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज सुबह दस बजे इनके मकान साबदुल रहमान उस्मान लेन लेस्कालिये से उठाकर दफनाने के लिए लासूजी लेस्कालिये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM।

Savanne Road Nouvelle France में, Savanne Road Nouvelle France में श्रीमती लक्ष्मीन बासुदेल सिंह, श्रीमती लक्ष्मीन बासुदेल सिंह, पैदाशी नाम बाबूलाल और जिन्हें लोग कुसिल नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ ही आज दिन के एक बजे, इनके मकान सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामदीन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 8, इंकमान स्ट्रीट वाले पीटो पोर्टलुइस में 43 साल के 43 ईयर्स ओल्ड श्री पुरेंद्र सिंह पुनीत, जिन्हें लोग पुपो नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनके पिता राम पुनीत के मकान नंबर 8 इंकामैन स्ट्रीट वाले पीटो पोर्टलुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेदीदाम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लासूस का ट्रबोन अवेन्यू सिनेवासेन में 54 साल की 54 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चूरामनी रामभजन, पैदाशी नाम दौलत और जिन्हें लोग आरती नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे, इनके बेटे मनोज रामभजन के मकान लासूस का ट्रबोन अवेन्यू सिनेवासेन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। लाकावेन नंबर 1 वाकुआ में, 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मेरामा कालीमुतु, पैदाशी नाम लक्ष्मिया और जिन्हें लोग माना नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग मिस कालीमुतु एकोल मातेनेल नाम से भी जानते थे। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनके बेटे तिरुवन कालीमुतु के मकान लाकावेन नंबर 1 वाकुआ से उठाकर थ्वामामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड ओकुले में, 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुलमा, मिसिज सुलमा बीबी चमरू, पैदाशी नाम मोहम्मद अली और जिन्हें लोग सुल नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 11 बजे, इनके मकान रॉयल रोड ओकुले से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। कोमियासों स्ट्रीट क्यूपिप में 34 साल के 44 ईयर्स ओल्ड श्री रविंद्रनाथ सिउरतन, जिन्हें लोग प्रवीण नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सुबह 10 बजे, इनके पिता किशन सिउरतन के मकान कोमियासों स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। अवेन्यूगी रोजमो ट्रैफल रोज हिल में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री गणेश वेंकटाचलम, जिन्हें लोग विष्णु नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सुबह 10 बजे, इनकी बहन रोजा वाइथिलिंगम के मकान अवेन्यूगी रोजमो ट्रैफल रोज हिल से उठाकर सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए। अवेन्यू गी रोजमो ट्रैफल रोज हिल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्री गणेश वेंकटाचलम, जिन्हें लोग विष्णु नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे, इनकी बहन रोजा वैठिलिंगम के मकान अवेन्यू गी रोजमो ट्रैफल रोज हिल से उठाकर समौतें की सिमिट्री ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। शास्त्री रोड बुआ पियोलेते आरूज में 56 साल की 50

0: 36 years old है श्रीमती प्रबीता चौधरी। श्रीमती प्रबीता चौधरी पैदाशी नाम तिरबोहन और जिन्हें लोग सुनीता नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके मकान शास्त्री रोड दबुआ पियोलेते आहूजे से उठाकर सिपाही ब्रिले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 10 AM। और नंबर 22 रोवलिन ओकुले क्यूपिप में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री करण देव आलिया। श्री करण देव आलिया जिन्हें लोग करण देव नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी लीला देवी आलिया के मकान नंबर 22 रोवलिन ओकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Masti.
3: Radio Masti.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
1: RM2
3: Radio Masti.
1: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Masti.
1: Feel the Masti.
4: साथ बजकर एक मिनट हुआ है।
5: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो भाई जो सो रहे उठो जागो और अपने दिन को दो एक जबरदस्त किक स्टार्ट क्योंकि आप सुन रहे हैं मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट वेदिता साथ हूं मैं आपके 9 बजे तक। भाई आज का दिन है नए मौकों का नए सपनों का एकदम फुल पॉजिटिव वाइब्स का। चाहे आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं स्कूल रन पर निकले हो ट्रैफिक में मॉर्निंग में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते पीक टाइम नहीं ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग फंस भी जाते हैं। तो चलो भाई या तो फिर आप घर पे एंजॉय करें अपनी गर्मा गर्म चाय हम आपके साथ हैं और बस नॉनस्टॉप मस्ती म्यूजिक और खूबसूरत गीतों के साथ आज के शो में आपके फेवरेट क्या पता कुछ फेवरेट हम आपके बॉलीवुड गाने चला दे एंड साथ में अगर आप चाहे तो अपने अपनों को भी याद कर सकते हैं बाय सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन 5491294। तो चलिए भाई वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दीजिए और स्माइल को थोड़ा सा और वाइड कर लीजिए। आई लव दिस वन या ये जो आपकी बड़ी वाली स्माइल होती है ना ये मेरा फेवरेट है जी फेवरेट। चलिए भाई तैयार हो जाइए एक जबरदस्त धमाकेदार मॉर्निंग के लिए क्योंकि ये है मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती जहां पर बजता है रोज सुबह आपकी हैप्पीनेस का बीट।
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: हिट म्यूजिक ओनली
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 7:20 हुए हैं और आपको पता है ये टाइम होता है

0: जब हम सबको रिमाइंड करते हैं गाइस कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई या आपके फ्रेंड सर्कल्स में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, कोई आस पड़ोस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जो लोग आपके दिल के करीब हैं, अगर उन्हें आप सरप्राइज करना चाहते हैं तो लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हमारे पास उनके लिए एक वाउचर भी है और उनको हम सरप्राइज करेंगे रेडियो पर, राइट? आपको करना क्या है, उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर आपको मुझ तक पहुँचाना है ऑन 5491294, जी हाँ 5491294 पर। चलिए अभी एकदम आपका हम फिर से स्वागत करते हैं हमारी मॉर्निंग बीट में, और रेडियो मस्ती आप रोज़ सुनते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर हम जब सरप्राइज़ करते हैं तो वो कैसे जाता है। अभी के लिए अगर आप भी चाहते हैं मैं किसी को हेलो हाय कहूँ तो आप जल्दी से अपने मैसेज भेज दीजिएगा, एंड ऋषि को हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ आप लोग जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं, गाड़ी में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, काम के लिए निकल गए हैं, काम से घर वापस जा रहे हैं, या तो फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ, ओ हो मम्मी इलायची वाली बनाना, नहीं जिंजर वाली तो पी ली हमने ना, अभी मम्मी कहती है कि जिंजर वाली पीनी चाहिए ना, अभी सर्दी का मौसम है। प्लीज़ गाइस, सर्दी के मौसम में अपना पूरा ख्याल रखना, और थोड़ा सा अगर आप अभी से ही प्रिकॉशन ले लेंगे ना तो आगे चल के जब सर्दी टकड़ी सर्दी होने लगेगी तो शायद आप बीमार ना पड़े। और जितने भी लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठंड में आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।
1: Radio Musti. Hit music only. Feels a musti. Radio Musti.

0: हेलो,
1: हेलो,
0: यस हेलो मिसेस सुधा,
1: यस,
0: या कैन आई हैव अ रेंडेवू विद यू टुडे फॉर अ हेयर कट?
1: विद मी और
0: या आई
1: आई एम
0: हर्ड
1: ऑफ टुडे.
0: यू आर ऑफ टुडे, बट आई रियली नीड अ हेयर कट टुडे.
1: आई कैन सेंड यू माय
0: No, no,
1: colleague
0: I no,
1: number.
0: no.
1: You can
0: Actually,
1: call her.
0: I wanted you to cut my hair, please.
1: Sorry, ma'am. I can't.
0: But you are at Grand Bay, right?
1: Yes.
0: But I stay nearby.

0: हैप्पी बर्थडे सुधा, ये लोग मुझे पकड़ क्यों लेते हैं? यानी कि जहाँ जिसको भी मैं फ़ोन करती हूँ उनको पता चल जाता है कि विदिता फ़ोन करने वाली है, और सबको पता है फ़ोन बज रहा है मेरा, देखो देखो देखो विदिता, देखो देखो अभी वो मुझे बेवकूफ़ बनाएगी, देखो मैं उसको बेवकूफ़ बनाती हूँ, देखो ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ, ये धोखा है, दिस इज चीटिंग, आई डोंट लाइक इट, दिस इज चीटिंग। सुधा हैप्पी बर्थडे।
1: थैंक यू मैम।
0: आपको पता है आपको सरप्राइज किसने किया?
1: माय हस्बैंड।
0: हाँ, उन्हीं का कारनामा है ये। आपके हस्बैंड का नाम है विनय ना?
1: हाँ।
0: तो विनय जी ने हमें आपका मैसेज भेजा था, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं आपको बताऊं कि लूलू हाइपरमार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है एक वाउचर, जिसे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा RDMBC आपके आईडी कार्ड के साथ। सो आज नहीं तो कल, आपके पास 2 दिन है, प्लीज़ आएगा और अपना जो वाउचर है उसे आप ले जाएगा। और हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे सुधा। वैसे बाल कटवाने आ जाओ। आ जाओ। चलो बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।
2: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio Musty. Musty. Musty.
2: साथ बजकर 36 मिनट हुए हैं. यू आर लिस्निंग टू रेडियो मस्ती वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट. कीप लिस्निंग. थोड़ी देर में बढ़ेंगे हम स्पोर्ट्स की ओर.

0: हाय रे पिया, चलो जी काटा लगा। लेकिन यहाँ पर हमें भी कुछ आवाज आई पीछे से, इससे पहले कि मुझे चाटा लगा बोलूं। चलो जी, सुबह के 7:40 हुए हैं, बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की ओर।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स,
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: And it's time to meet our sports guru Arvind. चलिए देखते हैं लेटेस्ट खबरें क्या है। मिलते हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
5: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 listeners, the latest from the sports world.

0: वर्ल्ड। प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के बाद अब आर्सेनल अपने स्क्वाड को और तगड़ा बनाना चाहता है। यूफोरिक ट्रॉफी पैरेड से उठा लाल धुआं अभी तक लंदन में ताजा है, फ्रेश है, पर आर्सेनल के अधिकारी अगले सीजन की तैयारी करने लगे हैं। क्लब को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात चल रही है। इसके लिए मैनेजर आर्टेटा के लिए नया पैकेज और नए खिलाड़ियों की लिस्ट बन रही है। एस्टन विला से मोर्गन रॉजर्स, बोर्नमुथ से एली जूनियर क्रूपी टॉप प्रायोरिटीज हैं। फिर एटलेटिको मैड्रिड से जूलियन अल्वारेज भी टारगेट है। इनको लाने के लिए कुछ 3-4 खिलाड़ियों को बेचा जाएगा। फ्रेंडलीज, कल खेले गए फ्रेंडली मैचों में कोलंबिया ने कोस्टा रिका को 3-1 से हराया। इसमें सांचेज, जाज और स्वागेज स्कोर कर पाए। मोंटेनेग्रो ने बुल्गेरिया को 1-0 से हराया। स्लोवेकिया 2, माल्टा 1, नॉर्वे 3, स्वीडन 1। नॉर्वे के लिए स्ट्रन लार्सन का डबल, स्वीडन का एक गोल इसाक ने स्कोर किया। टर्की 4, नॉर्थ मैसिडोनिया 0, ऑस्ट्रिया 1, ट्यूनिजिया 0। UEFA अंडर 17 चैंपियनशिप में डेनमार्क 3, इटली 3, फ्रांस 5, मोंटेनेग्रो 0। आज के कुछ फिक्स्चर्स, क्रोएशिया का मुकाबला बेल्जियम से होगा, जॉर्जिया रोमेनिया, मोरक्को मेडागास्कर, वेल्स गाना, ये कुछ फ्रेंडली मैच हैं। ट्रांसफर बाजार से कुछ खबरें, चेल्सी के मार्क कुकुरेला को साइन करने के लिए एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड लाइन में है। लिवरपूल अब लेप्ज़िग से यान जियोमांडे को साइन करना चाहता है, कई अन्य क्लब उसके पीछे हैं। मार्कुस राशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आ सकता है। बार्सिलोना के साथ लोन डील समाप्त होने वाली है, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे बेचना चाहता है। टेनिस, फ्रेंच ओपन में कल कुबुडी क्वार्टर फाइनल में पहुंचा वाजडा को हराकर। अन्य मैचों में अरीना साबालेंका ने ओसाका को 7-5, 6-3 से हराया। श्वालिंस्का, ओगा अलियासीमे, साबालेंका, कालिंस्काया, श्नाइडर, बेरेटिनी और नाल्डी ये सभी जीत पाए। आज के मैचों में मेंसिच का मुकाबला फोंसेका से होगा। अंद्रीवा शियस्तिया, विटोलिना कोस्टुक और जोदा वेरेव के खिलाफ खेलेगा। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया और भूलिएगा नहीं, वेदिता की कृपा से 8:30 आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्पेशल वर्ल्ड कप। टिल देन हैव ए वंडरफुल टाइम लिसनिंग RM2। बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद, आशीर्वाद आशीर्वाद। मिलते हैं अगले आवर में।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट। Welcome to Radio Musti. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti feels a Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है.
1: रेडियो मस्ती
2: R2 रेडियो मस्ती.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: केक कार्य आज दिन के 11 बज के आधा विपक्षी नेता जोली रोगा के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से शुरू हुई. एक बार प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम हुई. इन एजेंडा में कार्यसूची में कुल 60 से जस्ती प्रश्न बातें जेकर में से 20 गो प्रश्न प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछल जाए. प्रश्न संवेदनशील मामला

0: से संबंधित हुई, जिक्र में रोड्रिग्स, नशा के खिलाफ लड़ाई, सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन और प्रशासनिक सेवा शामिल बातें। अबले मॉरिशस से आदिस अबाबा जाय होला यात्री लोग के जोहान्सबर्ग, नैरोबी या अंतानानारिव में ठहराव करे के परत रहल। अब कयन गो बदलाव लियानल गलबा, अफ्रीका के सबसे बड़का विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस बहुत हाली मॉरिशस में सीधी उड़ान सेवा शुरू करी। गल हफ्ता के इनावा सेवा के घोषणा कर रहल। इथियोपियन एयरलाइंस इनावा मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ान के संचालन करी। जुलाई 2026 से मॉरिशस में कयन गो सामाजिक अकाउंट में कल्ले कल्ले पैसा की डिपॉजिट की कमती करे की संभावना बा। ये फैसला खास करके कम आय होला परिवार के बीच कयन गो सवाल और चिंता पैदा कर ले बा। ये बदलाव में शेयर्स रे इनकम अलाउंस स्कीम बाते, जेकर प्रबंधन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा करल जाला। ये योजना के उद्देश्य उ सब कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड जना के आर्थिक सहायता दे के है, जेकर मासिक आय निर्धारित सीमा से कम बा। और ये बदलाव के असर कयन को परिवार पर परी, जन अपन दैनिक जरूरत के पूरा करे खातिर ई सहायता पर निर्भर रहेलन जा। दूसर देश की खबर में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव फिनों से खतरनाक मोड़ ले लेबा। इजराइल के ताकत दावा कर लेबा कि उ लबनान सीमा के भीरी ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर ले लेबा। तैकरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: के 8:07 हुए हैं। गुड मॉर्निंग, आगे ना मूड में
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: So good morning to everyone tuning in from offices, shops, homes या फिर आप अभी रोड पर हैं, ट्रैफिक में हैं। ये बड़ा जोर का लगता है भाई, क्या करें, पर कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई, आप सबकी वजह से मॉर्निंग बीट इतना स्पेशल बन जाता है, क्योंकि स्ट्रेस कितना भी हो लाइफ में, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बस आपके एक मैसेज का हम इंतजार करते हैं ऑन 549 and 1294। लेकिन ये भी जानते हैं कि जब ड्राइव करें तो मैसेज नहीं भेज सकते, लेकिन फिर भी आई कैन फील इट, आपके दिल से जो आवाज़ आ रही है वो हम तक पहुँच रही है। तो चलो बस यही विश करती हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत खास, बहुत स्पेशल हो। और अगर बगल में कोई बैठा है तो वो अगर मैसेज कर सकते हैं तो वाई नॉट। चलिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए ये जान लेते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। यहाँ का मौसम है, लेकिन बाकी जानते हैं पूजा के साथ।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है सुबह के समय, और इस बीच हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह को देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, रात को भी मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिण पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 26, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. La boîte de Butter Cookies d'Ancita à 129,95 € et le set de vaisselle à dîner de 24 pièces à 999,95 €. Pas oublier, ex-can to pay, gagne plus points Weave à tous les moments. Et papa, merci.
5: On est tous winners!
6: Aja ve aja, hai sajan mainu lut lai gaya hai.
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti. RM2.
2: Radio Musti.
7: Chanteclair présente Chef on Fire, une émission explosive sur le street food à Maurice.
8: Nous venons une heure, toi ?
7: Au menu, 12 candidats, 10 épisodes, une bonne dose de suspense et au final, un seul gagnant.
8: 3, 2, 1, terminé.
9: Chicken down.
7: Rendez-vous tous les dimanches à 20h20 sur MBC1 et MBC7 pour découvrir un nouvel épisode de Chef on Fire et voir qui sera on fire et qui sera fired. Retrouvez aussi l'intégralité de nos épisodes sur la chaîne YouTube de Chanteclair.
10: Protézou contre l'heptospirose. C'est une maladie dangereuse. Ils transmettent à travers les rats, sat, les chiens, CF et BF. Ben symptômes comme douleur musculaire.

0: avant de défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आपका ट्रस्ट भी छीन सकते हैं, लेकिन पता है एक चीज़ है जो कोई कभी नहीं छीन सकता, और वो है आपका विश्वास, आपकी उम्मीद, आपका फेथ। जी हाँ, जब तक आपका विश्वास ज़िंदा है तब तक आपकी उम्मीद ज़िंदा है, और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ नई शुरुआत ज़रूर होती है। पता है दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ लोग हमें इतना हर्ट करते हैं, इतना हर्ट कर देते हैं कि हम खुद पर, रिश्तों पर और दुनिया पर सवाल करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, उनका बिहेवियर उनकी चॉइस है और आपका फेथ आपकी स्ट्रेंथ। अगर आप अपने फेथ को संभाल कर रखते हैं, चाहे वो खुद पर हो, ज़िंदगी पर हो या ऊपर वाले पर हो, तब कोई भी तकलीफ आपको परमानेंटली हरा नहीं सकती। हाँ, कुछ टाइम के लिए आप टूट सकते हैं, स्कार्स रह सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास आपको फिर से खड़ा होना सिखाता है। तो आज की सुबह उन लोगों को अपनी पीस और फेथ का कंट्रोल मत दीजिए जिन्होंने आपको दर्द दिया है, आपको हर्ट किया। अपनी रोशनी को जलाए रखिए, क्योंकि अंधेरा कभी भी एक जलते हुए दिल को हरा नहीं सकता। सो प्रोटेक्ट योर फेथ, नॉट योर फियर, क्योंकि फेथ ही वो ताकत होती है हर सेटबैक को कमबैक में बदलने के लिए, आपको उम्मीद देती है।
0: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Il pas une simple tasse, il un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift, commence par une bonne décision. Nescafé.
2: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
3: Radio Musty.

0: Hey friends, you're listening to Radio Masti. आपके लिए लेकर आए हैं हम मॉर्निंग बीट. मॉर्निंग में मुझे पता है कि अभी सर्दी के मौसम में जरा उठना मुश्किल हो जाता है. उम्मीद है कि आपकी मॉर्निंग अब तक मस्त जा रही होगी, और अगर अभी भी नींद का थोड़ा सा हैंगओवर बाकी है तो टेंशन मत लीजिए, हम हैं आपके साथ. चलिए अभी अरविंद आ गए हैं, जानते हैं वर्ल्ड कप में उसके बारे में कुछ मोर डिटेल्स, है ना अरविंद?
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. Radio Masti की टीम के साथ
2: चलिए
1: United States, Canada और Mexico.
2: Radio Masti के साथ

0: चलो वर्ल्ड कप की ओर। ऑफिशियली 9 दिन रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने के लिए, फ्रॉम जून 11 टू जुलाई 19। कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के 16 शहरों में ये होगा और पहली बार के लिए 28 टीमें फॉर ए ग्रैंड टोटल ऑफ 104 मैचेस। स्क्वाड अराइवल्स, अर्जेंटीना, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अपने टूर्नामेंट बेस पे आ चुकी है कांजास सिटी में। टीम कप्तान लियोनेल मेसी भी वहां पर पहुंच चुका है। उनका पहला मैच 16 जून को होगा अल्जीरिया के खिलाफ। टिकट के दामों पर एक नज़र डालेंगे तो यहाँ $60 से लेकर $10,990 तक रेंज में है, मतलब लगभग ₹300 टू ₹550,000। ये सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप है फुटबॉल हिस्ट्री में। इसमें जो डायनामिक प्राइसिंग लाया गया है, फेस वैल्यू टिकट बहुत ऊपर हो गए हैं, खासतौर पर स्टेडियम लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रियल टाइम डिमांड को लेकर। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, सपोर्ट एंट्री ये $60 में है, ये 104 मैचों में, लेकिन ये बहुत कम है, खासतौर पर नेशनल फेडरेशंस और रीजनल फैंस क्लब को दिए जाते हैं। ग्रुप स्टेज में न्यूट्रल मैच $120, ये कैटेगरी 3 के होते हैं और ये $1200 तक जा सकता है। ग्रुप स्टेज में होस्ट नेशन उनके जो मैच हैं, यानी जो जैसे मेक्सिको है, कनाडा है, यूएसए है, उनके लिए दाम $400, यहाँ तक कि $2,735 तक जा सकते हैं। हाई प्रोफाइल गेम्स जैसे यूएस का ओपन मैच, ये $4,000 तक भी जा सकता है, टू बी मोर प्रिसाइज $4,105। नॉकआउट राउंड में, राउंड ऑफ 32 क्वार्टरफाइनल में रेंज है $225 टू $1,775। फिर सेमीफाइनल $930 टू $3,295। और वर्ल्ड कप का फाइनल, ये तो मालामाल लोग ही जा सकते हैं, तिजोरी साफ करनी होगी, $1,490, ये कैटेगोरी 3 टू $10,990 कैटेगोरी 1। जो फ्रंट कैटेगोरी है, प्रीमियम बॉल फ्रंट रो, ये $30,000 से ज्यादा है। तो मालामाल हो तब वर्ल्ड कप देखो, नहीं तो एमबीसी में तो दिखाए जा रहे हैं मैच। एमबीसी आप हो या एमबीसी टीवी हो, वर्ल्ड कप आप तक लाएंगे जरूर।
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।

James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: अरे वाह मजा आ गया।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: पता है दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ना हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम क्या खो रहे हैं। हाँ, अभी मैं उनसे बात करना चाहूंगी जो इस टाइम पे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप कितने सालों से ड्राइव कर रहे हैं और कितने सालों से आप उसी जगह पे रोज फंसते हैं। इट्स बीन ईयर्स ना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हाँ वहीं पे उसी टाइम पे आप वहीं पे फंसते हैं, है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इस टाइम पे स्माइल करते हैं कि नहीं करते। इस टाइम पे आपका चेहरा थोड़ा अलग हो जाता है, आप थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं, आप थोड़ा सा इरिटेट होना लगते हैं। तो इतने सालों का इरिटेशन आपने जमा करके रखा हुआ है, जबकि बड़ा सा सिंपल है, आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, आप एक स्माइल कर सकते हैं। सोचो इतने सालों का स्माइल होता आपका, जबकि आपने बस यही कमाया है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन। पता है ये लाइफ में आपके बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि जब आप इंसान स्माइल करके घर से निकलते हैं, आप पहले से अपने माइंड को तैयार कर लीजिए। आप बोल दीजिए कि देखो भाई, यहाँ से यहाँ 20 मिनट मुझे ट्रैफिक में फंसना है, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, है ना। आप स्माइल करो, आप खुश रहो और ऐसे में म्यूजिक सुनो, अपने मूड को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि रोज आपको पता है कि यही होने वाला है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लाइफ में जैसा आप खुशी को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप दुख को भी एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि पता है ये मेरे लाइफ का हिस्सा है, ऐसा ही है, कुछ नहीं हो सकता है इसका, और उसे आप स्माइल के साथ जी लें, तो बस लाइफ सेट हो गई, है ना। अभी आप सोच रहे हो कि हाँ यार, मैं तो रोज आधा घंटा यहाँ ट्रैफिक में फंसा रहता हूँ, चीखता चिल्लाता रहता हूँ, जबकि कोई अच्छा सा गाना सुन के अपने मूड को मैं ठीक कर सकता हूँ। नहीं सोचा था ना, इसलिए मैं आती हूँ आपको मदद करने के लिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो लाइफ में ना जितना आपको मौके मिले इरिटेट होने का, चिल्लाने का, उसमें आपको मौका मिलता है अपने आप को शांत रखने का, कुछ करने का, और ये मैजिक का काम करता है म्यूजिक।
1: Radio Musti Hit Music.

0: Music only.
1: Feels a musty. Radio musty.
2: ज्यादा टेंशन है तो बता देना, मैं अपने चिप के लिए आपके यहाँ भेज दूंगी। अरे कुछ नहीं, आप गाना गाना वो ताली बजाएगी।

0: I can see you smiling. Good morning, my dear friends. 8:45 already. आप सुन रहे हैं वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
0: देखा एक छोटी सी स्माइल की आपने और आपका मूड कैसे नेचुरली बेटर हो गया है ना. स्ट्रेस को मालो गोरी ठुशुम ठुशुम, ये अखियों से गोरी चलती है, स्ट्रेस को ऐसे ही मार दो. अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए मुझे आपने दोस्तों को याद करना है. सो वी से वेरी गुड मॉर्निंग टू कविता जो हमें सुन रही है. सिस्टर लॉ अंशिका का बर्थडे है, हिमा और विनाश की तरफ से हैप्पी बर्थडे, एंड ऋषि का भी बर्थडे, उनके वाइफ पूजा, अवनीश और अवनी की तरफ से जो है फ्रॉम बेले. ऋषि को हैप्पी बर्थडे उनकी नीस तन्वी रामदेवर की तरफ से, एंड नहीं नहीं ऋषि की तरफ से उनकी नीस तन्वी रामदेवर को हैप्पी बर्थडे. चाचा चाची बेबी साथ में है, दीक्षा अक्षय आश्ली सॉरी एंड मनीष, साथ में चाचा संजीव नंदी पापा से उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं. भाई ऋषि को हैप्पी बर्थडे, ये हैं उनकी कौन उनकी भाभी हैं केशवरी सानवी अक्षय सुनील और सभी सावन फैमिली की तरफ से फ्रॉम काहोलीन. और ज्योति के लिए ये हैं आशनी रेखा सुरेखा

0: रखा, मतलब फैमिली, किसी ने हमसे पूछा है कि बर्थडे के लिए हम क्या 2-3 दिन पहले भेज सकते हैं, नहीं आपका मैसेज गायब हो जाएगा, जिस दिन बर्थडे है उसी दिन मॉर्निंग में आपको मैसेज भेजना होता है 1549124। चलिए इसके साथ प्यार का रंग भरते हैं आपके लाइफ में हमारे खूबसूरत गीतों के साथ, राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2. Radio.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Hey my beautiful people, अगर आपका दिन already busy हो चुका है तो बस इतना याद रखिए, you are doing an amazing job, you are amazing. कॉफी खत्म हो सकती है, बैटरी लो हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड कभी लो नहीं होनी चाहिए. इसलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए मॉर्निंग बीट. मॉर्निंग बीट में गाने होते हैं कमाल के, हम होते हैं, आप होते हैं, आपके डेडिकेशन होते हैं. कुछ ज्यादा लंबा नहीं जा रही हूँ क्या करूँ, टाइम देख रही थी ना, ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे जाने में.
1: वेलकम Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti feels a Musti.

0: चलो भाई हमने पास बोला, ये तो स्टूडियो में ही आ गए। विकास आ गए हैं साथ देने के लिए आपका, और प्रोग्राम होगा आपके लिए मॉर्निंग मस्ती।
1: आपने कहा आ जाओ, पास आ गया विकास। हेलो, गुड मॉर्निंग। 8:57, 3 मिनट बाकी है, काउंट डाउन बिगिंस। निकलो तुम।
0: मैं जा रही हूँ भाई। ऐसे कैसे भूल जाओ तुम, मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली हूँ मैं। चलिए आपसे कल सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे हम 7 बजे। ख्याल रखिएगा, बाय बाय। दिस इज विदिता साइनिंग ऑफ। विकास के आने का टाइम हो गया।

0: 2nd of June, time check, it's 9 a.m.
1: समाचारों को लेकर पूजा आ चुकी है. पूजा, आपका स्वागत है.
2: नमस्कार आप सभी को. समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. राष्ट्रीय सभा के कार्य आज दिन के 11:30 बजे विपक्ष नेता जूली रोगाओ के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी. इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम होगा. कार्यसूची में 60 से अधिक प्रश्न शामिल हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से पूछे जाएंगे. इनमें रोड्रिक्स, मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और प्रशासनिक सेवा जैसे संवेदनशील मुद्दा शामिल हैं. अब तक मॉरिशस से अदिस अबाबा जाने के लिए यात्रियों को जोहान्सबर्ग, नैरोबी या अंतनारिवो में ठहराव करना पड़ता था, लेकिन बहुत जल्द ये स्थिति बदलने वाली है. अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस बहुत जल्द मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है. पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई थी. इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी. जुलाई 2026 से

0: मॉरिशस में कई सामाजिक अकाउंट्स में धीरे धीरे कटौती की संभावना है। इस फैसले ने विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच कई सवाल पैदा किए हैं। इन बदलावों में सेज़ इनकम अलाउंस स्कीम है, जिसका प्रबंधन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। इस प्रस्तावित बदलावों का असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सहायता पर निर्भर है। विदेश में कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की बात कही है। इस घटना ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच युद्ध सप्ताह समाप्त करने को लेकर चल रही वार्ताएं आगे नहीं बढ़ सकी हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

खदम और मस्ती का सेकंड हाफ शुरू। ट्रैफिक में अभी भी फंसे और ऑफिस की बढ़ रही है टेंशन, तो उसको हटाइए। नो झगड़ा, नो अप्रिहेंशन, इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड विद

0: किसी की सिचुएशन अलग होती है, कहीं लोग हैं जो घर पर अभी कॉफी चाय का आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ, और कहीं है जो ट्रैफिक में फंस गए, सोच रहे हैं कि आज फिर से काम पर लेट, कलीग्स करेंगे थोड़ी सी वेट, लेकिन ऐसा है कि सेफ और सुरक्षित पहुंचे ये जरूरी है। अपने दिल को रेडी मोड पे डाल दीजिए और मूड को सुपर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। वॉल्यूम को बढ़ाइए और रेडियो के थोड़े और करीब आइए। मैं आपका फिल्मी दोस्त, यानी कि शो वो है जहां पर हाउस होल्ड डेकोरेशन टिप्स, बॉलीवुड की बातें बहुत कुछ शामिल होने ही वाली है। जरूरी है टू बी कनेक्टेड विद म्यूजिक, बेस्ट मिक्स म्यूजिक आपके लिए, वहीं पर मूड बनाने के लिए, आपको गुड से बेटर से बेस्ट फील कराने के लिए।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: एक टाइम था जब बसंती ने कहा था कि मैं नाचूंगी, हाँ, लेकिन वहां से आवाज आई थी, बसंती इन लोगों के सामने मत नाचना बसंती, और यहाँ पर बसंती ने बजा दी किसी की पुंगी।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: अरे क्या करो यार, ये थोड़ा फिल्मी स्टाइल है, यानी कि अभी वक्त हो गया कि सितारों की चाल जान ले और शुरुआत करते हैं वेद।
2: मेष राशि,
0: आज का दिन हो सकता है कुछ खास मेहमान के आने से रौनक बढ़ जाए, खुशियों का माहौल बना रहेगा, खातिरदारी में काफी बिजी हो जाएंगे और परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्ते में मिठास घोल देगा, मनमुटाव भी धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। वहीं पर काम को टालने की जो आदत है ना, ये नुकसान दे सकती है, इसलिए जरूरी काम सही टाइम पर निपटाएं।
2: टॉरस वृषभ राशि,

0: आज हिस्ट्री में से कोई पुरानी गलती अचानक सामने आ सकती है जिससे रिश्तों में कभी कभी खटास आ जाती है, उसकी संभावना है। और देखिए साहब, उसको संभालना, तो अगर गलती की है तो उसको मान भी लें, ये बड़प्पन है, सच है ना। उधार लेने से बचे वरना बाद में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। मिथुन राशि, कोको पानी पियो यानी कि नारियल पानी, और जरूरी है, इसमें आप ये सोचे नहीं है कोई हानि। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए काम भी पूरे होने की संभावना है। यदि कोई प्रोजेक्ट या काम पैसों की वजह से अटका हुआ था तो उसमें गति आएगी। सरकारी काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो अभी से अच्छी प्लानिंग।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: लेन देन और पैसे से जुड़े जो मामले हैं उसमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपके भीतर आगे बढ़ने और खुद को साबित करने की जबरदस्त इच्छा रहने वाली है। मेहनत से पीछे हटना अपने स्वभाव में नहीं है, इसलिए काम में लगे रहो, मारते रहो पेडल, फिर चाहे जिंदगी देना दे मेडल। परिवार में किसी से किया हुआ वादा निभाने का समय आ चुका है।
1: लियो सिंह राशि,
0: लियो जो भी काम मिले उसको समय रहते कर दियो। वैसे तो मीठी वाणी और विनम्र व्यवहार आपको लोगों के बीच खास पहचान दिलाएगा। समझदारी से कही गई जो बातें हैं वो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगी। तरक्की की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं और पुराने कर्ज उतारने की कोशिश में भी सफल रहेंगे।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज का दिन वैसे तो एवरेज है लेकिन बैलेंस रहेगा। नहीं, ये अच्छी बात है कि बैलेंस रहने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई पुरानी डील आखिरकार फाइनल हो सकती है जिससे मन को राहत मिलेगी। स्वादिष्ट भोजन और जीवन साथी के साथ बिताए गए जो पल हैं रिश्तों में गहराई और रंग भरेंगे।
1: लीब्रा तुला राशि,
0: हर फैसला सोच समझ कर लेने की जरूरत है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है और इसलिए जरूरी मेडिकल टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जहां पर आपकी सक्रियता और ईमानदारी लोगों को प्रभावित करेगी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज का दिन धैर्य और संयम से काम लेने का दिन है। देखिए साहब, इन दोनों को बैलेंस बनाकर आगे लेकर चलना यही तो है असली टेस्ट। दो अपना बेस्ट, लेकिन जल्दबाजी में किया गया फैसला हो या फिर डिसीजन लिया हो वो ठीक नहीं है। शॉपिंग कर सकते हैं, खुद पर थोड़ा सा खर्च करने का मन बनेगा। ओ जी, वेरी गुड, काम ही क्यों कर रहे हैं।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। खान पान में लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए खुद को आगे रखिए और बाकी चीजों को पीछे। लंबे समय से जिस घर या प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश कर रहे थे उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं, और संतान की ओर से खुशखबरी आपके दिल को खुश कर सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: अगर सूर्य है तो आपके लिए दिन बेहद शानदार रहने वाला है। परीक्षा हो या पढ़ाई से जुड़े परिणाम उम्मीद से बेहतर आ सकते हैं, जैसे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आपके सामान में छोटी सी पार्टी या सेलिब्रेशन हो सकती है। अरे साहब, अच्छा है हर चीज को वैल्यू करना और ये सोचना कि जिंदगी इसी का नाम है, करना अपना अपना काम है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: कुंभ राशि आपके लिए क्या है, चलिए जान लेते हैं। आज कार्य क्षेत्र में भी किसी की बात को लेकर दिल पर थोड़ी सी ठेस पहुंच सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हर किसी का कहना क्या है इस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है ना, अपनों को कंट्रोल कीजिए। हालांकि बात ये सच है कि आपने कोई प्लान अगर बना लिया है बाहर बाहर जाने का तो थोड़ी सी प्लानिंग और चाहिए होगी, यानी कि आपने सोच लिया कि बाहर जाकर क्या प्रोग्राम होगा, खाना पीना से लेकर किससे मिलना, सब कुछ, इसमें टाइम तो लगता ही है। वैसे पारिवारिक बिजनेस में सुधार देखने को मिलेगा जिससे मन में संतोष और खुशी रहने वाली है।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सीख देगा। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से कुछ खबर मिल सकती है, लेकिन भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खर्चों पर भी कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया जो फैसला है ना वो नुकसान दिला सकता है। घर परिवार की समस्याएं मन को परेशान कर सकती हैं, लेकिन यदि आप शांत रहकर आराम से ठंडे दिमाग से सोचेंगे सोल्यूशन वही है।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाना, काफ़ी लोगों की आँखें खुल गई पोस्ट कोविड। उनको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, खाना पीना आपकी बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ में एक मेंटल वेलबींग होना भी ज़रूरी है। देखिए ऐसा होता है कि हम बिज़ी रहते हैं काफ़ी, लेकिन कोशिश कीजिए कि आसपास ढूंढिए ऐसे कपल्स को या फ्रेंड्स को या फिर एक ऐसे ग्रुप को जो कि सेम हैबिट्स रखते हो या फिर हॉबी रखते हो घूमने फिरने टहलने। अब जब आप जाते हैं कहीं पर घूमने फिरने के लिए तो आप रिलैक्स करते हैं कि कुछ और लोग भी वहाँ पर होते हैं। अब बिग हेलो हाय एंड पता लगाए कि वो है कहाँ से, हो सकता है कि बातचीत हो जाए, एक अच्छी कंपनी मिल जाए और उसके बाद हर शाम को एक वॉक के लिए निकल पड़े। नहीं, कोशिश करनी बहुत ज़रूरी होती है और अगर आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालने की। फिर आप वॉक करते हैं इंक्लिनेशन पर या फ्लैट पर या धीरे धीरे अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक चेंज लेकर आई और देखिए कितना अच्छा महसूस होता है। अच्छे दोस्त जो आपको हमेशा इंस्पायर करते रहें, वो लोग जो आपको कुछ नया बताते रहें, और ये सच बात है कि आजकल क्लिक ऑफ बटन सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन जो लोग अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं ना वो बात कुछ अलग होती है। इसलिए आंखों का चश्मा हटाओ, बस ये जिंदगी दिखा रही है खूबसूरत नज़ारे, देखते जाओ।
0: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2.
1: Radio Musty.

0: अच्छा, मैं देख रहा था कि कभी कभी होता ना कि बार बार भूख लगती है, तो ऐसे में एक ऐसी रोटी बनाकर किसी ने डाला है वीडियो पर, भाई होता ना क्योंकि नई चीज़ होती है तो उसको हमेशा फॉलो करते हैं। वी गोना टॉक अबाउट द स्पेशल रोटी। भाई अगर आप साथ होते तो बात कुछ अलग ही होती। आप क्या वाक्य दे रहे हो, वहाँ पहुँच के किचन में शुरू हो गया काम? वेरी नाइस।
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2 Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: पता बड़ी होता है कि आप न्यूट्रिशन भी चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में ही सामान मिल जाए, ऐसी चीज़ें ही हैं वैसे। वी टॉक अबाउट रोस्टेड चना यानी कि चिक पीस, हाँ वही, और दही और पनीर, सुपर फूड है, बहुत प्रोटीन फाइबर और ज़रूरी मिनरल्स सब कुछ है इसके अंदर। तो चलिए इसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। कैसे आप देखते हैं, भुना हुआ चना आधा कप। अब अगर हम बात करें इस हाई प्रोटीन रोटी की रेसिपी की, तो भुना हुआ चना आधा कप, पनीर 100 ग्राम, दही के 3-4 बड़े चम्मच, गेहूं का आटा 1.5 से 2 कप जितनी आपको ज़रूरत है, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन वैसे बहुत अच्छी होती है जब डाइजेशन की बात करते हैं, या फिर जीरा डाल सकते हैं, क्यों नहीं। और वहीं पर पानी पेस्ट और आटा गूंदने के लिए ज़रूरत है इसके लिए। तो बस सबसे पहले मिक्सी में आप रोस्टेड चना, दही और कद्दूकस किया हुआ पनीर, वो ना ग्रेट कर लिया, हाँ, इसमें स्वाद अनुसार नमक और अजवाइन मिला दीजिए। अब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस कर हल्का हल्का पतला पेस्ट बना लें। तैयार पेस्ट को एक बर्तन या परात में निकालकर थोड़ा गेहूं का आटा मिलाएं। इसे तब तक गूंदें जब तक ये रोटी के लिए एकदम मुलायम और बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना हो जाए। गूंदे हुए आटे को ढककर 10 से 15 मिनट जरूर रख दें। और फिर देखिए साहब, आटे में जब आप एक एवरेज साइज़ देंगे उसको, तो बहुत बढ़िया बनेगी। और गर्म तवे पर बेली हुई रोटी को सेक लें, इसमें सब्जी या दाल के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। देखिए अच्छी बात है कि जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, भुने हुए चने पनीर प्रोटीन के बहुत बढ़िया सोर्स हैं, और वहीं पर लंबे समय तक पेट भरा रहेगा। चने और दही का जो इंडेक्स होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है, और वहीं पर भुना हुआ चना फाइबर से भरपूर होता है। पनीर और दही कैल्शियम के पावर हाउस हैं, चने में मौजूद आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तो सब अच्छी चीज़ें हैं, और आपका पेट भी भरा भरा सा ही रहेगा। वर्कआउट के बाद प्रोटीन की भरपूर भरपाई के लिए एक शानदार ऑप्शन है। रात में अगर इस रोटी का सेवन कर रहे हैं, तो सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाएं, उसको डाइजेशन करके काम पे निकल जाएं। इन्होंने कहते हैं वाओ, बनाओ हमें भी खिलाओ। हे अंतिश, सादर है स्विट्जरलैंड से, हेलो टू यू टू, सब कुछ ठीक ठाक। यहाँ तो मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल है।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चाहे आपको कुछ मैसेजेस और कितने प्यार से गाना फॉर लवली ब्रदर देवानंद एंड साथ में सोफी के लिए उनका भी बर्थडे है. अरे क्या बात है, डबल सेलिब्रेशंस. बहुत सारी प्लानिंग होती है, जैसे बर्थडे आ रहा तो क्या देना वो तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या सरप्राइज प्लान कर सकते हैं इसका बड़ा मजा आता है. लवली सिस्टर वरुणा की तरफ से, ब्रदर इन लॉ है उनकी पूरी फैमिली की तरफ से, उनको ढेर सारा प्यार. एंजॉय योर सेल्फ एंड गुड मॉर्निंग ज्योति जी शातो बनारस साथ दे रही हैं. बस कहते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ, नाम सुधा है, कि मॉर्निंग में ना एक हैप्पी मूड रखूँ, ये बहुत ज़रूरी है. और आप देखेंगे कि जब आप ऐसे खुश रहती हैं तो आसपास जो लोग हैं वो भी वो पॉजिटिविटी को महसूस कर सकते हैं. चेहरे पर अगर आप स्माइल किसी और के चेहरे पर स्माइल ला सकती है, वो जी स्माइल के अंदर माइल होता है ना, हाथ में हाथ डालकर आप माइल्स एंड माइल्स विद योर स्माइल्स जा सकते हैं. गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल, सब ठीक है? थैंक यू सो मच, इतना पूछ लिया, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. और कहते मैं राजू हूँ, फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और गाने सुन रहा हूँ. ऐसा लगता है जैसे भारत से इतना दूर नहीं हूँ. हाँ क्यों नहीं, वैसे बहुत सारे हमारे ऐसे भी लोग हैं, दोस्त हैं, लिसनर्स हैं, जो कि अपना देश छोड़कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड आई होप सब कुछ ठीक ठाक है. वैसे कुछ चीज़ें ज़रूर मिस होती हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा हिंदी टच आता है, बॉलीवुड का मिक्स आता है, लगता है कि अरे यही तो है जहाँ पर होम वाली फीलिंग आती है. और जी मैं कहता हूँ खुश रहो, ऐसी बिंदास रहो, कुछ दिमाग में तो हमसे कहो. 5491294.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio.

0: अरे बहुत सारी चर्चा चल रही है अबाउट रणवीर सिंह लीविंग डॉन 3 और उसके बाद वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो फिल्म मेकर्स है वो मान नहीं रहे। अब सिचुएशन कहाँ तक आ जाएगी पता लगेगा तो जरूर आपको बताएंगे। बट कीप ऑन एंजॉयिंग द म्यूजिक। अभी थोड़ी देर में हॉन्टेड 3D का गाना, ऑल्सो पिकिंग अप द पॉपुलैरिटी।
1: वेलकम टू रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
0: बता दूं कि बस थोड़ी देर में चलेंगे हम 10 बजे के समाचारों की ओर, इसके बाद फिर से मस्त मॉर्निंग शो कंटिन्यूज। पुनीत दीक्षित एंड दिस वन इज कॉल्ड रोया ना, लेटेस्ट ऑन द चार्ट बसेज़।

0: स्टूडियो में पूजा उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय सभा की कार्य आज दिन के 11:30 बजे विपक्ष नेता जूली रोगो के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम होगा। कार्यसूची में 60 से अधिक प्रश्न शामिल हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से पूछे जाएंगे। अब तक मॉरिशस से अदिस अबाबा जाने के लिए यात्रियों को जोहान्सबर्ग, नैरोबी या अंतानानारिवो में ठहराव करना पड़ता था, लेकिन बहुत जल्द ये स्थिति अब बदलने वाली है। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की सीआरजे इनकम अलाउंस स्कीम से लाभान्वित लोग, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच कई सवाल उठ रही हैं। ये इसलिए क्योंकि जुलाई 2026 से मॉरिशस में इन लोगों के अकाउंट्स में धीरे धीरे कटौती लाने की संभावना है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। इन प्रस्तावित बदलावों का असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सहायता पर निर्भर है।

0: विदेश में रूसी हमलों में यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें से ड्निप्रो में 6 और राजधानी कीव में 4 लोग शामिल हैं। पिछले सप्ताह मॉस्को ने चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन पर संगठित हमला करेगा। ये प्रतिक्रिया पिछले महीने यूक्रेन के रूसी नियंत्रित लुहांस्क क्षेत्र में छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में थी, जिसमें 21 लोग मारे गए थे। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार। प्लाटो रोड गुडलैंड्स में 90 साल के जनाब गुलाम नबी कुतु, जिन्हें लोग भाई गुलाम नाम से ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके बेटे बुजो हिरन अब्दुल हकीम के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: वेलकम टू द सेकेंड आवर 10:07 एंड ट्यूजडे की मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सुबह उठना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन उसके बाद पता है कि व्हाट्स वेटिंग फॉर यू। हर दिन हर कुछ अलग। जिंदगी में हर दिन वही चीज नहीं होती, उसी समय पर कुछ अलग, एक सरप्राइज। तभी तो जिंदगी में ऐड करते रहो स्पाइस।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2.
2: Radio Musti.
0: अब भाई हेलो टू ऑल इंटरनेशनल लिसनर्स। अब थोड़ी देर में कुछ और बातें हमारी जारी रहेंगी और चलेंगे सीधा कहीं बाहर। कहां पर सुन लेते हैं। अरे पूनम कहां पहुंच गए तुम, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, उनसे बात करेंगे हम। अभी टम टम टमी कहीं आवाज तो नहीं कर रही, इसलिए कहता हूँ सुबह सुबह खा पी लिया करो। हाँ, अपनी एनर्जी बिल्कुल फिट एंड फाइन करके बाकी दिन बिताने के लिए बिल्कुल रेडी।

0: जी हमने कहा था कि बात अभी बाकी है, इसलिए क्योंकि अभी मुलाकात बाकी है, पूनो से मिलने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पहुंच गई है वो।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: एक्चुअली नेशनल साइंस वीक चल रहा है, ऑर्गेनाइज बाय राजीव गांधी साइंस सेंटर, और वहाँ पर सारी अपडेट्स लेकर पूनम हमारे साथ हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग विकास, कैसे हो? ठीक
0: हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। साइंस वीक की बात करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज, बच्चों का आना, क्या हो रहा है? डिटेल्स अपडेट्स दो।
3: डिटेल्स अपडेट में देती हूँ मैं कि इस समय मैं लाइव हूँ कोद्दो से, और नेशनल साइंस वीक 2026 यहाँ पे चल रहा है, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो किया हुआ है राजीव गांधी साइंस सेंटर ने किया है, यानी कि RGSC की ओर से चल रहा है। और सच कहूँ तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो साइंस है ना, सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाने का, यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं।

0: है, जो साइंस सेंटर है यहाँ बच्चे, स्टूडेंट्स और आम लोग जो हैं ये टेक्नोलॉजी को मज़ेदार तरीके से समझ रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड है। सब लोगों ने अपने बैग्स हैं स्कूल बैग साइड में रख दिए हैं और अब एक के बाद एक जो है हर एक सेक्शन में जा रहे हैं। जितने भी एग्जीबिटर्स हैं यहाँ पर उन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई है और बहुत ही तरह से जो एक्सपेरिमेंट्स है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, और यहाँ पर डिज़ाइन जो इंजन्स होते हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर्स के इंजन हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और उसको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। और यहाँ पर की पूरी टीम है साइंस, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ कहते हैं कि भाई साइंस जो PhD कर रहा है या जिसने साइंस की हुई है उसी को समझ आएगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में जो साइंस है वो सारे ही चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि कहते हैं ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि यहाँ पर जो पानी कैसे, बच्चों का एक्साइटमेंट होता है कि भाई पानी कैसे बनता है, पानी कहाँ से आता है, पानी कैसे पीते हैं, कैसे क्लीन होता है, ये इनको पहला होता है, आग को कैसे टच करते हैं, क्यों नहीं टच करें, तो ये उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, जैसे सेंट्रल वाटर अथॉरिटी वालों ने, उन्होंने यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से बहुत सारे कहते हैं ना कि एग्जीबिशन में बहुत सारे सिस्टम्स लगाए हुए हैं कि एक एक चीज़ आपको बहुत माइन्यूट तरीके से सिखाई जा रही है। फायर सर्विसेज भी बता रहे हैं कि बच्चों की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर पेरेंट्स काम पर जा रहे हैं और बच्चे छोटे हैं, या दादा दादी नाना नानी जैसे बड़ी जल्दी उठ नहीं पाते हैं और बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उसके लिए क्या सेफ्टी लेनी चाहिए ये उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे फोटोग्राफी सीख सकते हैं, वीडियो जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, लेज़र कटिंग, जैसे कि कई बार होता है वेजिटेबल्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मार्केट में आती हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हैं। उन लोगों को एंटी ड्रग्स अवेयरनेस दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग सेक्शंस भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, और कहते हैं कि इंटरेस्ट जिनको बिजनेस में है या एजुकेशन में है, टेक्नोलॉजी में है, एग्रीकल्चर लैंड में है या कंस्ट्रक्शंस में है, तो उसको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कैसे आप लाइफ को ईजी बना सकते हैं। और कहते हैं ना जैसे बच्चों को मैथ्स और साइंस से बहुत डर होता है, तो उसका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं ये लोग, क्योंकि साइंस को जब बेस लाइन समझ आ जाती है साइंस की, तो मैथ्स और साइंस बहुत ईजी लगने लगते हैं। और इस समय पूरी MBC की टीम यहाँ पे कद्दो में जुड़ी हुई है, और मैं सभी को कहूँगी घर में मत बैठिए, इतना टाइम, थोड़ा सा टाइम अपनी जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए निकालिए, क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत सारी नॉलेज होगी, आप शेयर कर सकते हैं, और जो बच्चों को चीज़ें चाहिए आने वाले टाइम में, कहते हैं कि हो सकता है कि चलते चलते यहाँ पर कोई बच्चा आगे कोई साइंटिस्ट बन जाए, और ना जाने पता नहीं कितने लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ ले आएँ जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर कैंसर सेल्स को मारने के लिए बहुत चीज़ें सीख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। आप घर में मत बैठिए, यहाँ पर कद्दो में आइए और यहाँ पर चीज़ें समझिए। और मैं हूँ आपके साथ पूनम, और हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको विकास बताऊँ ना, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं जो स्कूल के और कॉलेजेस के, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, सीनियर मिनिस्ट्रीज़ के लोग हैं, वो डायरेक्टली खुद आए हैं, ये नहीं कि उन्होंने किसी को भेज दिया, वो खुद बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब एक्साइट करती हैं एक बच्चे को, तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि घर में मत बैठिए, बस जल्दी से आ जाइए। थैंक यू विकास, आपकी तरफ।
1: थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपसे संपर्क स्थापित करेंगे अगले घंटे के अंदर, जाने को दो में नेशनल साइंस वीक और क्या क्या है डिटेल्स। थैंक यू सो मच।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: 2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: देखिए आप जिंदगी के अंदर फैशन बहुत मैटर करता है और फैशन का आज का मंत्र है शूज मैटर. अरे कपड़े चाहे सिंपल हों लेकिन साफ और वेल कैप्ट शूज अच्छे से रखते ना जो लोग. हाँ जैसे उसके लेसेस होते हैं जहाँ साफ सफाई ओहो पूरे लुक को अपग्रेड कर देती है. मेन लोफर्स या क्लीन स्नीकर्स ट्राई कर सकते हैं और लेडीज कंफर्टेबल फ्लैट्स या फिर स्टाइलिश ब्लॉक हील्स. फैशन तभी अच्छा लगता है जब उसमें कंफर्ट भी हो. तो कदम भी स्टाइलिश और दिन भी सुपर हिट. लेडीज अगर वार्डरोब के सामने खड़े होकर क्या पहनूं वाला सीन चल रहा है तो एक सॉलिड कलर कुर्ती टॉप या ड्रेस को स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ पहन लीजिए. ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लेकिन लुक बिल्कुल रेडी फॉर द कैमरा होगा. कभी कभी एक्सेसरीज ना असली हीरो बन जाती हैं.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स. RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: चल गार्डन में चलते हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती,
0: जहाँ किचन से इतना सारा ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है लेकिन हम उसको सिंपली डस्टबिन में फेंकते हैं। नो, अगर आप सोचिए, अच्छा सोचिए कैरेट टॉप्स, वो आप काट देते हैं। अब भाई इम्पॉसिबल है कि पूरे कैरेट उसमें निकाल दें, हाँ लेकिन आपको वो फेदरी ग्रीनी जो मिलते हैं ना लीव्स, हाँ वो यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के अंदर, सलाद में ऐड कर सकते हैं, सूप में, चटनी में, या फिर होममेड पेस्टो में भी। वैसे कहते हैं कि आप कभी कभी आलू देखते हैं उसमें स्प्राउट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो बस उसको छोटे छोटे चंक्स में काट लीजिए और हर एक बन सकता है एक हेल्दी स्प्राउट। ड्राई कीजिए पोटैटो पीसेस को एक दिन पहले कि आप उनको प्लांट करें, और उसके बाद कुछ महीने बाद देखेंगे कि उसमें ट्यूब्स आने लग जाती हैं और फिर अंडरग्राउंड डेवलपमेंट शुरू। वहीं पर स्प्रिंग अनियंस, हाँ वैसे जो बेस होता है जिसमें रूट्स होती हैं, हाँ उनको भी डालिए। कई लोग क्या करते हैं उसको बस फेंक देते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं, उसका बेस आप काटने के बाद रख सकते हैं। उसको डालिए एक कप पानी के ग्लास में और उसके बाद देखिए कैसे वो फ्रेश शूट्स पैदा करने लगते हैं दिनों में ही। जिंजर भी आप घर में ग्रो कर सकते हैं, सच मानिए, और बस उसको सिंपली प्लांट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल एक मॉइस्ट सॉइल के साथ, और जो बर्ड्स हैं ना फेसिंग अपवर्ड्स, और उसके बाद देखिए साहब उसको थोड़ी सी शेड, थोड़ी सी हीट मिलती रहेगी तो फिर वो शूट करने लगते हैं। ऐसे अनियंस हैं उनके अंदर भी आप देख सकते हैं कि शूट्स आने लगती हैं। वहीं पर कोरिएंडर, किसने कहा कि आप उसको जो होती ना नीचे रूट्स, उसको लेकर पानी में डालिए, थोड़ी सी शुगर डालिए, उसके बाद देखिए वो देने लग जाती हैं थोड़ी थोड़ी रूट्स, और उसके बाद फिर से उगने लग जाती हैं। कमाल है, आसान है। वैसे पानी के अंदर ही कोशिश कर सकते हैं, और उसके बाद आप अगर चाहें तो सॉइल में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करते जाएंगे, आप भी अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: पूजा के स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय सभा के कार्य आज दिन के 11:30 शुरू हो रहे हैं और आज का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित है। विपक्ष नेता जूली रॉगर सिंथेटिक ड्रग्स पर सवाल करेंगे और आपको बता दें कि कार्यसूची में 60 से अधिक प्रश्न भी शामिल हैं जिनमें से 20 प्रधानमंत्री को संबोधित होंगे। कांटोहल में पेश आई घटना के सिलसिले में पिंक कपड़े पहने और कथित रूप से तलवार लिए उस युवती को कल सीसीआईडी में पेश किया गया। हिंसा की घटनाओं के 15 दिन बाद अपने वकील राउफ गुलबुल की मौजूदगी में उसके साथ पूछताछ की गई। 22 साल की इस युवती ने इस आरोप से इनकार किया है। पाई की रहने वाली इस लड़की को पूछताछ के बाद घर लौटने की अनुमति दी गई है। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की सीएसरे इनकम अलाउेंस स्कीम से लाभान्वित लोग विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच कई सवाल उठ रही हैं जो उनकी चिंताएं बढ़ा रही हैं, इसलिए क्योंकि जुलाई 2026 से मॉरिशस में इन लोगों के अकाउंट्स में धीरे धीरे कटौती लाने की संभावना है। इस स्कीम के तहत उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। इन बदलावों का असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है जो अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सहायता पर निर्भर हैं। और विदेश में, जी हाँ, विदेश की खबरों में रूसी हमलों में यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 10

0: लोग मारे गए हैं, जिनमें निप्रो में 6 और राजधानी कीव में 4 लोग शामिल हैं। रात भर के हवाई हमलों में अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाए जाने के बाद दर्जनों लोग भी घायल हुए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। लाकावेन नंबर एक वाकवा में 73 साल के 73 years old जनाब साफिक रामजान बोला, जिन्हें लोग बोला नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान लाकावेन नंबर एक वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। नंबर 8 इंकमैन स्ट्रीट वाले पीतो पोर्टलिस में 43 साल के 43 years old शिपुरेंद्र सिंह पुनित, जिन्हें लोग पुपु नाम से जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पिता राम पुनित के मकान नंबर 8 इंकामन स्ट्रीट वाले पीतो पोर्टविस से उठाकर थौकबाव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 2 PM। और नंबर 5 44 मोसलमान ले प्लेन दे एमिताज हाईलैंड्स 5 ऑफ फिनिक्स में 76 साल की 76 years old श्रीमती रुकवंती लकीराम, पैदाशी नाम गंगा बिसुन और जिन्हें लोग शांता लकीराम नाम से भी जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल, दिन के 1 बजे इनके बेटे केविन और आश्विन लकीराम के मकान नंबर 544 मोसलमॉड ले प्लेन लेमिताज हाईलैंड्स 5 फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भुइयों फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Alright जी, यहाँ पर जरूरत है कि अपनी जो brightest, sweetest smile है वो दीजिए, और ये है खुद अपने लिए। ऐसा आप मुस्कुराएंगे तो जिंदगी को भी मुस्कुराता पाएंगे, और ऐसी अगर जिंदगी के साथ निभाएंगे तो आगे चलते ही जाएंगे रुके बिना। जैसा दो घंटे यहाँ पर जरूर खत्म हुए, लेकिन 11:11, क्या कमाल की तारीख है, 2 तारीख, और हम दो, हमारे दो, जब तक तीसरा ना हो, यानी कि कल, लेकिन आज भी एंटरटेनमेंट का फॉर्मूला इज ऑल सेट। राइट, जून का महीना जहाँ पे शुरू हुआ है वहीं पर ठंड थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन इतनी ठंड नहीं हुई ना, इट्स ऑल ओके द मोमेंट, मैनेजेबल। चलिए साहब, अपने काम को मैनेज करके, डोंट फॉरगेट कि अभी थोड़ी देर में खाने पीने का सीन हो जाएगा, उससे पहले जितना काम खींचना है खींच दो, हम तो दे रहे हैं आपका साथ। करते हैं थोड़ी देर मुलाकात होम डेकोर डेकोरेशन टिप्स के साथ साथ कुछ हाउस होल्ड टिप्स एंड बी टाउन से भी कुछ खबरें आती हुई, इन साथ में चलेंगे खुद दो जहाँ पर चल रहा है नेशनल साइंस वीक ऑर्गेनाइज बाय राजीव गांधी साइंस सेंटर। स्टे ट्यून्ड।
0: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat. RM2.
1: Radio.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: देखिए साहब, आजकल का जो टाइम है वो कुछ ऐसा टाइम है जहाँ पर ये जो स्क्रीन टाइम है ये बढ़ता जाता है, चाहे आपका टीवी हो, टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, इतनी सारी चीज़ें। और आजकल तो होमवर्क भी आपको पता है ना ऑनलाइन मिल जाता है, तो बच्चे कहते हैं हाँ भाई चाहिए। उसके बाद कब उनकी वॉइस कॉलिंग, कब वीडियो कॉलिंग, कब गेम मिलकर खेलने लगे, ओ इतनी सारी परेशानी। लेकिन ज़रूरी उनको टाइम मैनेजमेंट के बारे में, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में समझाना, ये बताना कि जो वक्त है ना ये अगर एक बार निकल गया तो फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है ध्यान दो, जिस चीज़ के लिए अभी तुम हो वही करो ना। हाँ, लेकिन उनकी बात को समझो और उनको समझाओ भी, उनको बताओ कि कैसे अभी अगर आप तरक्की करेंगे, पढ़ाई करेंगे और इतने सारे जरिए हैं, स्क्रीन टाइम का सही इस्तेमाल करो। कुछ क्यूरियोसिटी कि ये चीज़ होती कैसे, नहीं स्कूल में पढ़ा लेकिन मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, तो गेट इन, डाइव इन, रिसर्च। आपके पास एक फैसिलिटी, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ना कि उसको टाइम वेस्ट करने में लगा दीजिए। यानी उसको बताइए कि अगर आपने 2 घंटे गेम खेल लिया, इससे क्या मिला? नहीं ठीक है, आपने छोटा ब्रेक लिया, लेकिन 2 घंटे स्क्रीन टाइम आजकल सब मिल जाता ना कि कौन से एप्लीकेशन पर कितना टाइम स्पेंड किया। तो आप उनके पीछे डिटेक्टिव की तरह ना रहें, उनको समझाएं राधा कि कैसे यू नीड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं कि तुमने अच्छे रिजल्ट नहीं लाए, लेकिन इसे बेहतर हो सकता है क्योंकि तुम इससे ज़्यादा कैपेबल हो। उनको समझाइए, उनको अपने बारे में ही बताइए कि कैसे यू कैन डू सो मच बेटर। बस टाइम मैनेजमेंट का सीन है। और एक बार इस मुश्किल दौर से निकले, पढ़ाई

0: RM2.
1: Radio Musti. Feels a Musti.
2: जैसा बता रहे कि नेशनल साइंस वीक चल रहा है भाई, राजीव गांधी साइंस सेंटर कोदोर, वहां पर पहुंच गई हैं पूनम सारी डिटेल्स लेकर हमें बताने के लिए कि क्या हलचल चल रही है, क्या हो रहा है। आपको एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग।
3: वेरी गुड मॉर्निंग विकास, कैसे हैं भाई? हम यहाँ पर हैं कुद्दो में इस टाइम लाइव, और नेशनल साइंस वीक 2026 चल रहा है, और ये जो प्यारा सा प्रोग्राम है ना जो इन्होंने अरेंज किया है राजीव गांधी साइंस सेंटर की तरफ से है, और मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि साइंस आज लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमें लगता था कि शायद किताबों से पढ़ेंगे तभी हम कुछ साइंस का कुछ समझ पाएंगे, बट ऐसा रियली में नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हो रखे हैं, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस ने उनको परमिशन दी है, वो लोग आए हैं, कई पेरेंट्स भी आ रहे हैं क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है, क्योंकि जब जब वो लोग हमें सुन रहे हैं एमबीसी को और अपने घरों में, तो वो लोग अपने घर से निकल के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं पता था।

0: कि बड़े भी यहाँ पर आके ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस सेक्शन के पास मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे बच्चों की बहुत ही भीड़ लगी है और वो जानना चाहते हैं कि अगर कोई क्राइम हो जाता है तो वो फिंगरप्रिंट्स कैसे होते हैं, डीएनए कैसे मिलता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्लू कैसे मिलते हैं। तो ये उनको बहुत एक्साइटेड लग रहा है और साथ में उनको बहुत एक्साइटमेंट इस बात का भी हो रहा है कि ये चीज़ें उनको सीखने को मिल रही है ईजिली ओपनली, क्योंकि वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम सिर्फ सीरियल्स और प्रोग्राम्स और मूवीज़ में देख रहे थे, तो वो आज ये समझ पा रहे हैं। और मेकर स्पेस बेल विलेज से भी जुड़े हुए हैं, यूएसए एम्बेसी मॉरिशस और राजीव गांधी सेंटर का एक पार्टनरशिप है इनका, और इन्होंने नासा की जो ये लगाई हुई है एग्जीबिशन, यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है और उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और साथ में वो कितना कुछ कर सकते हैं, कितनी आगे हायर एजुकेशन ले सकते हैं, कौन कौन साइंस में क्या क्या नाम कमा चुका है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ पर मेट्रो एक्सप्रेस की टीम भी यहाँ पर है और वो बता रही है कि कौन सा मटेरियल आपको लगाना है, कौन सा ट्रेन ट्रैक्स कैसे लगते हैं, इनके ऊपर ट्रेन कैसे चलती है, वायर सिस्टम्स कैसे लगते हैं और उनकी इंजीनियरिंग कैसे होती है। तो बच्चे तो एक्साइटेड हैं बट बड़े भी एक्साइटेड हैं और मुझे लगता है मैं भी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। यहाँ पे एक एनपीसीसी जो है वो प्रोडक्टिविटी के लिए हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे रिसोर्सेज से आप अपने आप को ज़िंदगी को बहुत बेटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक जैसा आपका एक रूम है और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं तो लाइट ऑन है, इट्स ओके, बट दूसरा रूम है जहाँ पर कोई बैठा नहीं है और वहाँ पर लाइट्स ऑन है, फ़ैन ऑन है, तो उसको बंद कर सकते हैं, उससे आपकी लाइफ किस तरीके से अच्छी हो सकती है। सिर्फ ये एक सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स और ऐसी कम्युनिटी होती हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ से आप निकाल के ला सकते हैं वो बंदे जो चुन के लाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे इजी कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं और आपकी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है। इसके साथ में यहाँ पर भी RSNS की यानी कि रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी अथॉरिटी के भी लोग हैं यहाँ पर, और जो कि बता रहे हैं कि जैसे एक नेचुरल आपको एनर्जी मिलनी चाहिए एक ह्यूमन को, वो लाइट से मिलती है, हमको सन से मिलती है, पर एक जो रेडिएशन होते हैं जो एक्सरे मशीन्स में से निकलते हैं और बहुत सारे गैजेट्स में से निकल सकते हैं, उसके भी एडवांटेजेस क्या हैं और आपको एडवांटेजेस क्या हैं और वहाँ से आपको क्या क्या जो लाइसेंस चाहिए होते हैं उसको कैसे लेना है, तो उनको बहुत सारे मेजर सिक्योरिटी के मेजर्स उन्होंने रखे हुए हैं, इंस्पेक्शन कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँ ना विकास, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के सवाल बहुत सारे हैं और उनके आंसर्स ये जो बड़े लोग हैं जो कंपनीज़ के हेड्स हैं यहाँ पर, डीन्स हैं, CEOs हैं, ये नहीं कि सिर्फ किसी के अंडर कर दिया, उन्होंने बोला नहीं हम सारे खड़े हैं और एक एक क्वेश्चन का एक एक बच्चे को एक एक पेरेंट को आंसर दे रहे हैं। और यही मैं कहती हूँ नेशनल साइंस वीक है भाई और बहुत ही अच्छा टाइम है, कद्दो में हम लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, हमारी पूरी MBC की टीम यहाँ पे, RM2 रेडियो मस्ती की टीम है, RM1 भी यहाँ पर है और हम यही कहेंगे कि घर से निकलिए, आइए इंजॉय कीजिए, साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस यही था अभी तक के लिए विकास, थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच पुनः, आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स।
2: Radio Musti.
3: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसे जानते हैं कि धर्मेंद्र साहब जिस तरह उन्होंने एक्टिंग की, जिस तरह एक किरदार को लार्जर देन लाइफ बनाया, वो कमाल. उनका स्टाइल, उनकी एक्टिंग, उसकी मुस्कुराहट, और वहीं पर जिस तरह उन्होंने कॉमेडी से लेकर सीरियस रोल्स निभाए, बहुत ही लाजवाब. बॉबी देओल साहब ने कहा कि देखिए, ऐसा ही अगर उनकी बायोपिक बनती है तो ना मैं ना सनी कोई भी उनका रोल प्ले नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉज लार्ज इन द लाइफ. और जिस तरह वो इंसान थे, वो गलत चीज़ें सह नहीं पाते थे. कभी कभी हुआ उनका गुस्सा फूट पड़ा पब्लिक के बीच में, लेकिन कहते वो ऐसे इंसान थे कि जब गुस्सा शांत होता था, क्योंकि पहले तो चीज़ जो गलत लगती थी उसके बारे में रिएक्ट करते थे, लेकिन उसको घर में लाना, खाना खिलाना, उसको नए कपड़े देना, ये सब वो ज़रूर करते थे. और कहते प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल, आप नेक्स्ट आने वाले हैं बंदर के अंदर, नॉट टू फॉरगेट, आने वाली है इस फ्राइडे. कहते बाय रियल इवेंट्स इससे हुई है इंस्पायर, और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी काफ़ी अटेंशन उसको मिला, और कह रहे हैं कि मज़ा आएगा मूवी में क्योंकि इसमें सानिया मल्होत्रा भी हैं और साथ में है रिधि सेन, बॉबी देओल तो है ही हैं. बंदर देखते हैं क्या इसके अंदर, लेकिन एक गिरते हुए सितारे जिसका करियर अब इतना कमाल का नहीं.

0: नहीं है, इज ऑल गॉन थ्रू दिस एंड एकदम से जो सफलता मिली एनिमल के अंदर उसके बाद चमक उठे. तो इज गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस मूवी बंदर. अभी तो है आप इसी प्रोग्राम के अंदर, चलेगा 12 बजे तक.
1: A good beat for your morning show. From a morning beat, RM2
2: Radio Musty.

0: बासंतों के बीच में रेट्रो रिदम थोड़ी देर में, और उसके बाद आप सुन पाएंगे बहुत ही कमाल के गाने राज कपूर साहब को याद करते हुए। क्या कमाल की मूवीज, एक शोमैन और कपूर फैमिली।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: अच्छा एक पिक्चर चल रही है लेकिन अब उसके कलेक्शन थोड़े से कम हो रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट पति पत्नी और वो दो, ये कन्फ्यूजन वाली कहानी है। वैसे वामिका गब्बी और साथ में सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह, साथ में आशुमन खुराना भी हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब धीरे धीरे उसका पैसा गिरता जा रहा है, 60% ड्रॉप। अरे क्या बात है, इसे एक दिन पहले कुछ 2 करोड़

0: बातें अब सीधा लाख पे बात आ गई है। लगभग कह सकते हैं अगर इंडिया की ग्रॉस अर्निंग्स की बात करें तो 56.7 करोड़। मूवी ठीक ठाक चली और लोगों ने उसके ह्यूमर को भी पसंद किया, लेकिन कभी कभी आयुष्मान खुराना वेंट ओवर द टॉप और वहीं पर मस्ती एंड कॉमेडी चलती रही नॉन स्टॉप, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी नाम थे। कहते हैं कि एक कन्फ्यूजन के चलते सब होता है। एक मैरिड कपल की कहानी है जो प्रयागराज में रहते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब डिसीजन लेते हैं टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आयुष्मान खुराना क्यों ये करता है ये तो देखना पड़ेगा। एक फेक रोमांटिक सिचुएशन, अब देखिए साहब इसके अंदर मजा आता है जब तिग्मांशु धुलिया है, आयशा राजा है एंड विजय राज जो कॉमेडी की कहानी को ऊपर लेके जाते हैं ओवर द टॉप, और वहीं पर कुछ एंटरटेनिंग मोमेंट्स हैं लेकिन अनइवन स्ट्रेट और साथ में कुछ सिचुएशनल कॉमेडी, हाँ कह सकते हैं कि इसलिए कुछ बीच में ढीलापन महसूस होता है, लेकिन आयुष्मान खुराना कोशिश करते हैं कि कुछ अलग लेकर आए हैं। तो कहानी ठीक चल रही है, गाने भी ठीक ठाक।
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: गाने भाई और मूड सेट कर देते हैं ना। स्टे ट्यून्ड क्योंकि मेरे जाने का वक्त थोड़ा, लेकिन थोड़ी देर में आने वाली है गणिशा साथ देने के लिए 12 से 2 के बीच में। इट्स गोना बी रेट्रो रिदम।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: ट्रैकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं. आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ. नमस्कार.
6: नमस्कार डिनिशा, सभी को मेरा नमस्कार. समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. आज का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित है. विपक्ष नेता जूली रॉगर प्रधानमंत्री से सिंथेटिक ड्रग्स के संबंध में जनवरी 2025 से अब तक की जानकारी पाना चाह रहे हैं. और अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स की रोकथाम के लिए नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल 2025 की स्थापना की गई थी. और इसके अलावा पुलिस कमिश्नर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे सड़क यातायात दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है जिनमें चालक सिंथेटिक ड्रग्स के प्रभाव में पाए गए थे और उन दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप कितनी मौतें और कितने लोग घायल हुए हैं. सिंथेटिक ड्रग्स के प्रसार को रोकने के लिए कौन कौन से कदम भी उठाए गए हैं. नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल ने सिंथेटिक ड्रग्स के उपयोग पर कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ तो ऐसे उपभोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या क्या है जिनकी पहचान की गई है और इसके प्रसार को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं. दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी द्वारा विश्लेषित किए गए सिंथेटिक ड्रग्स के प्रकार कौन कौन से हैं जिनमें हाल ही में पहचाने गए नए सिंथेटिक ड्रग्स भी शामिल हैं. और आपको बता दें कि कार्यसूची में 60 से अधिक प्रश्न भी दर्ज हैं जिनमें से लगभग 20 प्रधानमंत्री को संबोधित होंगे. मॉरिशस में आर्य समाज का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और वैदिक आयोजन सत्यार्थ प्रकाश मास आरंभ हो चुका है. ये विशेष माह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन चिंतन और प्रचार प्रसार को समर्पित है. इस अवसर पर देश भर के विभिन्न आर्य सभा भवनों और आर्य समाज संस्थाओं में प्रवचन सत्संग वैदिक यज्ञ भजन का आयोजन किया जा रहा है. भक्त को सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांतों को समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. मॉरिशस में यह आयोजन भारतीय संस्कृति वैदिक परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है. अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है. पिछले हफ्ते इस नई सेवा की घोषणा की गई थी. इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी. विदेश

0: में रूसी हमलों में यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में 10 लोग मारे गए हैं। रात भर के हवाई हमलों में अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाए जाने के बाद दर्जनों लोग भी घायल हुए हैं और पिछले सप्ताह मॉस्को ने चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन पर संगठित हमला करेगा। ये प्रतिक्रिया पिछले महीने यूक्रेन के रूसी नियंत्रित लुहांस्क क्षेत्र में छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में थी जिसमें 21 लोग मारे गए थे। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। लाकावेन नंबर एक वाकुआ में 73 साल के 73 years old जनाब सफिक रामजान बोला। जनाब सफिक रामजान बोला, जिन्हें लोग बोला नाम से ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान लाकावेन नंबर एक वाकुआ से उठाकर फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। डॉक्टर नंबर 8 इंकामैन स्ट्रीट वैलीपीटो पोर्ट लुइस में 43 साल के 43 years old श्री पुरंद्र सिंह पुनित, जिन्हें लोग पुपु नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पिता राम पुनित के मकान नंबर 8 इंकामैन स्ट्रीट वैलीपीटो पोर्ट लुइस से उठाकर थौकबा किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे At 2 p.m. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musty. Radio.

Retro Rhythm. बिल्कुल जी, रेट्रो रिदम में आप सभी प्यार करने वालों का और म्यूजिक लवर्स का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे। 12:11 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। आज है ट्यूसडे 2nd of June 2026। विशिंग ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड। इस महीने का दूसरा दिन है और उम्मीद करते हैं कि ये जो जून का महीना है सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा हो। वेल, हम चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए आप अपनी सारी टेंशन वेंशन को भूल दीजिए, क्योंकि लेकर आए हैं एक ऐसा म्यूज़िकल सफ़र, क्यों खूबसूरत सफ़र यारों के खजाने में से आप लोगों के लिए। योर रेट्रो रिदम ऑन रेडियो मस्ती, जहाँ हर सुर में होती है मोहब्बत, हर गीत में एक कहानी होती है मेरे दोस्त, और हर धुन ले जाती है हमें उन हसीन लम्हों में जो कभी पुराने नहीं होते। अगले 2 घंटे तक हम सुनेंगे बॉलीवुड के वो अमर नगमे जिन्होंने ना सिर्फ दिलों को छुआ है बल्कि पूरी पीढ़ियों को अपना दीवाना बना दिया। मोहम्मद रफ़ी जी की जादुई आवाज़, लता मंगेशकर के सुरों का जादू, किशोर दा की मस्ती और मुकेश दा की जो दिल को छू लेने वाले गायकी होती है, सब कुछ होगा इस म्यूजिकल सफ़र में खासकर आपके लिए। तो बस तैयार हो जाइए इस खूबसूरत से सुहाना सफ़र में हमारा साथ निभाने के लिए, और 5499194 पर आप हमें अपने दिल की बात, अपने डेडिकेशंस भेज सकते हो। फिलहाल के लिए इस 1 घंटे के सफर में बहुत ही खूबसूरत गाने होंगे, और 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वी आर गोइंग टू पे स्पेशल ट्रिब्यूट टू लेट राज कपूर जी, आज इन योर रेट्रो रिदम। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन RM2 रेडियो मस्ती विद मी गिनेशा, एंड ऑल दोस हैविंग द लंच, बोन अपेटी।

0: Retro Rhythm.
1: What a beautiful song, वाजिवा मोहम्मद रफी जी की आवाज में। बिल्कुल दोस्त, पुराने गाने ना सच में वक्त को जो है ना रोक कर रख देते हैं। अगर आप भी किसी खास गीत की फरमाइश करना चाहते हो तो अपनी कोई याद हमारे साथ बांटना चाहोगे तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं ऑन 5499124 पर। और फिलहाल के लिए चलिए जी, लेट्स चेक इट आउट योर डेडिकेशंस जो आपने बड़े प्यार से हमें भेजे हैं। और अगला गाना बड़े प्यार से हम डेडिकेट करना चाहेंगे अब्दुल जी एंड सैरा बानो जी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं। आपको भी सलाम और स्वागत है इस खूबसूरत से बहुत ही प्यारा सा शो है आपका रेट्रो रिदम ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती। शेखर जी साथ दे रहे हैं वंडरफुल गाने के लिए, गिनी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमें सुन रहे हैं। एंड डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना आपकी खूबसूरत सी वाइफ के लिए जिनका नाम है सांडिया, आपकी बेटी रिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी साथ निभा

0: आने के लिए, और अगला गाना हमारी तरफ से आपके नाम। एंड चलिए जी, अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे All those जो साथ दे रहे हैं, जैसे कि शातो बिनागस से हमारी प्यारी ज्योति जी, आशनी, रेखा, सुरेखा एंड मधु परिवार जी के लिए। तो चलिए जी, ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे मनीष अमर राजा बनी जिस फैमिली के लिए, खुबलाल फ्रॉम अरेविया जगह पर जो साथ दे रहे हैं। ललिता जी, टन जी, लंच टाइम पे हो, कहाँ पे हो, अपने दोस्तों के साथ सारे गाने आज से रॉकिंग है कि नहीं, और अच्छा लग रहा है। सो बोन अपेटी टू यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर। तो चलिए जी, अगला गाना खास कर उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं।
1: You're listening to Radio Masti.

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, हमारा भी मन कर रहा है कि आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। इतना खूबसूरत सा गाना हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए इन योर रेट्रो रिदम। टाइम बीता चला जा रहा है, 12:34 हो चुके हैं कि निशांत माइक साथ देने के लिए इस खूबसूरत से सफ़र में आप लोग हमारे हम सफ़र बने हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती का सबसे सुरीला सफ़र रेट्रो रिदम, पुराने बॉलीवुड के सुनहरे गीत जो हर जनरेशन को जोड़ के रख देते हैं। वैसे कहीं मत जाएगा क्योंकि बाद में 1 to 2 तक विल बी पेइंग अ स्पेशल ट्रिब्यूट लेट राज कपूर जी आज के दिन में। और अगर कोई ऐसा गाना है जो आप सुनना पसंद करोगे जो आपका फेवरेट हो राज कपूर जी का, सो व्हाई नॉट आप हमें डेडिकेशंस में मेंशन कर सकते हो, तो ज़रूर हम प्ले करेंगे आपके लिए। बिल्कुल जी, हम लेकर आए हैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ एवरग्रीन रोमांटिक मेलोडीज जो आज भी दिलों पर राज करता है। सो अभी के लिए चलिए लेट्स चेक आउट योर डेडिकेशंस। और अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे हस्बैंड के लिए जिनका नाम है लालदेव, और मामा शारदा बेगन के लिए, बहन अनीता बिमल के लिए, एंड सभी लोग जो है मिलके हम सुन रहे हैं रेडियो मस्ती। और जून का महीना है, सुया बिहारी ऑफ कोंगमा बड़े प्यार से साथ दे रही हैं, तो इस जून महीने में आई रियली होप कि आपका ये महीना अच्छे से कट जाए, कोई निगेटिविटी जितने भी हो लाइफ में सब निकल जाए, एंड एवरीथिंग कम्स पॉजिटिव, यू नीड टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग गुड स्वीट हार्ट। तो चलिए कनिश का, दैट्स अ लवली नेम, बिल्कुल ठीक है, लवली सिलेक्शन गिनी एंड इट गोज डायरेक्टली टू माई हार्ट, थैंक यू सो सो मच माई ब्यूटिफुल। तो ये अगला गाना आपके नाम भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे। किसी ने गाने के मांग की है, कोशिश करेंगे टू प्ले दैट। और धर्म करम मूवी का ये गाना सारे RM2 लिसनर्स के लिए, ललिता की तरफ से जो लफलोगा की रहने वाली है, एंड ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे, एक बात दिल में आई है राही बदल गए। ओके, कोशिश करेंगे जमन परिवार के लिए और हमारे लिए अविनाश फ्रॉम बेलया भी साथ दे रहे हैं, मनीष अमर राजा बानी जिसिक परिवार को बुलाल फ्रॉम रिव्या जोपा, थैंक यू सो मच जी फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: रेट्रो रिदम
1: RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: वेल जी टाइम बीता चला जा रहा है, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 12:48 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ, दैट्स योर रेट्रो रिदम। जी हाँ, कुछ ऐसे गिने चुने नगमे हम लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। टोल दोस्त जो अभी ये ड्राइव कर रहे हैं, हम तो कहेंगे ड्राइव केयरफुली, लेकिन फिलहाल के लिए स्टूडियो के बाहर लेके जाऊँगी टू मीट आरजे पूनम। जी हाँ, अभी शी इज़ एट राजीव गांधी साइंस सेंटर, वहाँ पे नेशनल साइंस वीक चल रहा है 2026 विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय राजीव गांधी साइंस सेंटर। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। पूनम जी, अब

0: Very good afternoon.
1: Very good afternoon, Ginisha. कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया.
1: क्या बात है, क्या बात है. आपको पता नहीं है कि आज मैं यहाँ पे कोद्दर में हूँ लाइव, और नेशनल साइंस वीक 2026 चल रहा है जहाँ पे, और यहाँ का जो उत्साह है ना, इतना सचमुच देखने को मतलब लग रहा है, क्योंकि बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस से उनको यहाँ पर लाया गया है, टीचर्स आए हुए हैं सबके, और जहाँ पर जो जिनकी जितनी नज़र है ना, वो बच्चों के उत्साह के साथ में जो सारे सेक्शंस बने हैं, जितने एग्जीबिटर्स यहाँ पर हैं वो सभी हैं, और वो सब लोग उनको बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और उनको बच्चों का एक्साइटमेंट जो होती है ना, कि जो चीज़ें वो फिल्मों में देखते थे वो चीज़ें वो यहाँ पर देखने को उनको मिल रही है. जैसे DNA फिंगरप्रिंट्स को जानने का टेक्नोलॉजी कैसी होती है, इनोवेशंस कैसे होती है, यहाँ पर रोबोटिक का बहुत टेस्ट आ रहा है उन बच्चों को. उनको लग रहा है कि बहुत मतलब उनको टच करके देखना है हर चीज़, उनको हर चीज़ को समझना है कि ये कैसे चलती है. सबसे बड़ी मज़ेदार यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सिलसिला जारी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, और बच्चों का ध्यान जो है ना सबसे ज़्यादा ड्रोन्स ने खींचा है, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं सिर्फ मूवीज़ के लिए नहीं है, जैसे फोटोग्राफी होगी या वीडियो के लिए, पर यहाँ पर वो लोग चाह रहे हैं कि भाई ये शुगर केन्स के अंदर, इसके अंदर मेडिसिन डाली जाती है, तो कैसे उड़ता है, यहाँ पर उन चीज़ों को देख के उनको एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि उनको आज तक ये चीज़ें सिर्फ टीवी में देखने को मिली थी. और यहाँ पर फोटोग्राफी, वीडियो, जर्नलिज्म, रिपोर्ट राइटिंग, हेल्थ एग्रीकल्चर से बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल सारे सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ पर स्कूल्स और एजुकेशन से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, वो यहाँ पर बहुत ही चीज़ें आसानी से समझाई जा रही हैं, और इससे इनकी जो लर्निंग क्यूरियोसिटी है ना बहुत ज़्यादा हो रही है. उनको लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और यहाँ पे जो एग्जीबिटर्स हैं, मैं उनका थैंक्स भी करना चाहूँगी, क्योंकि इतने पेशेंस से वो उनको बता रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे मशीन चलती है, क्या इसके अंदर ऑयल डालते हैं, इसमें पानी डालते हैं, कैसे, तो वो लोग बता रहे हैं. और यहाँ पर सारे सीनियर्स जुड़े हुए हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ के कोई डीन आए हुए हैं, कोई प्रिंसिपल आए हुए हैं, कोई CEOs आए हुए हैं, और ये हर चीज़ को बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं उनको. और वो कह रहे हैं कि भाई MBC की टीम पूरी जुड़ी हुई है, तो क्यों ना हो कि सारे लोग एक दूसरे को बता सकें कि यहाँ पर ये अभी जो हम प्रोग्राम जो कल से शुरू हुआ था, 1 तारीख से, 2 तारीख आज है, 3 और 4, मतलब अभी 2 दिन और पड़े हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपको आना है, अपने बच्चों को लाना है, खुद को समझना है, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर सिखा रहे हैं, तो कल आप आ सकते हैं, आज आ सकते हैं, जैसे आपको टाइम लगे. बिल्कुल इस टाइम को मत अवॉइड कीजिए, इस टाइम को इंजॉय कीजिए, और साथ साथ यहाँ पर इन चीज़ों को देखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं तो यही कहूँगी कि MBC की पूरी टीम है, मैं यहाँ पे हूँ, RM2 रेडियो मस्ती आपके साथ है, और गिनीशा आपके गानों के साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है. तो बस थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए बस इतना ही. थैंक यू
0: सो मच पूनम फॉर ऑल दीज डिटेल्स. ऑफ कोर्स विल बी हियर कीपिंग इन टच विद पूनम लेटर ऑन, जानने के लिए और भी डिटेल्स में कि राजीव गांधी साइंस सेंटर पे क्या क्या चल रहा है.
2: रेट्रो रिदम
3: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Thank you so much saath dene ke liye on Radio Misty. Check your time, it's already 1 PM.
1: Welcome to RM2
2: Radio Musty.
3: Radio Musty.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
1: RM2
3: Radio Musty.
1: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musty.
1: Feel the Musty.
0: आइए सुनते हैं समाचार अदिति के साथ. नमस्कार.
4: नमस्कार गिरिशा, श्रोताओं को भी नमस्कार. जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच सिंथेटिक ड्रग्स से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई. 44 सड़क दुर्घटनाओं में भी ऐसे चालक शामिल रहे जिनके ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए थे. इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी. उन्होंने बताया कि देश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई है. कौतूहल मामले में सुर्खियों में बनी पिंक जंप सूट पहनी युवती को कल सेंट्रल CID में पेश किया गया. उस हिंसक घटनाओं के दो हफ्ते बाद उससे पूछताछ की गई जो उसके वकील गौफ गुलबुल की उपस्थिति में चली. उसने अपने बयान में कहा कि उसके हाथ में तलवार नहीं थी और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं. हालांकि उसने घटनास्थल पर मौजूद होने की बात स्वीकारी है. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव और नीप्रो शहर पर रूसी ताकतों की तरफ से किए गए सिलसिलेवार मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है. ये पिछले कुछ महीनों में किए गए सबसे बदतर हमलों में से एक रहा. दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. नंबर 26 रूट मिलिटेयर प्लान व्यत में, नंबर 26 रूट मिलिटेयर प्लान व्यत में 35 साल की 35 ईयर्स ओल्ड की बीबी कौशल हिंगा जो कौशल नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे इनकी बहन बीबी फरसियाना मदीना हिंगा के मकान नंबर 26 गुद मिलिटिया प्लान व्यत से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए प्लान व्यत की मुनावरा मस्जिद ले जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए. अगस्टिया का कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM. मायावरम रोड सुयाक में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आदामा स्वामी पैदाशी नाम पोताया जो सरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी बेटी श्रीमती माला रामिया के मकान मायावरम रोड सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव वाकिच मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट नून. नंबर 54 एवेन्यू अलामोंदा मोंसेलमा प्लेन दे जेमिताज हाइलैंड्स में, नंबर 54 एवेन्यू अलामोंदा मोंसेलमा प्लेन दे एमिताज हाइलैंड्स में 76 साल की 76 ईयर्स

0: श्रीमती रूपवंती लकीराम, श्रीमती रूपवंती लकीराम, पैदाशी नाम गंगा विसुन, जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे, इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे श्री केविन लकीराम के मकान नंबर 54 एवेन्यू अलामोंदा मोसलमा प्लेन दे एमिताज हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीभुइयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2.

0: का ये खास कार्यक्रम समर्पित है उस महान कलाकार को जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन था, लेट राज कपूर जी। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे राज कपूर ने बहुत छोटी सी उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। वो मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई। सिर्फ 24 साल की उम्र में राज कपूर ने आर्के फिल्म्स की स्थापना की और बॉलीवुड को कई अमर फिल्में दी। उनकी पहली बड़ी सफलता थी आग, लेकिन असली पहचान मिली बरसात से। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती रेट्रो रिदम में वी आर पेइंग ट्रिब्यूट इस महान कलाकार को। तो चलिए जी, अगर आपका भी उनका कोई फेवरेट मूवी है, कोई गाना है जो आपके लिए ये वाकई में बहुत ही दिल के करीब है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने डेडिकेशन के जरिए, अपने मैसेजेस के जरिए ऑन 5499-1294 पर।
1: You're listening to Radio Mastery.

0: Retro Rhythm.
1: Orange.
2: That was such a beautiful and lovely song, especially आप लोगों के लिए. जी हाँ दोस्तों, and चलिए जी, लेकर आए हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गिने चुने नग में जो खासकर आप लोगों के लिए हम प्ले कर रहे हैं इस खूबसूरत से शो में. और क्योंकि आज हम ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं हमारे लेट राज कपूर जी को. जी हाँ, और फिलहाल के लिए चलिए जी बात करते हैं उनके बारे में. देखा जाए तो सिर्फ एक्टर नहीं थे बल्कि एक विजनरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे. उन्होंने रोमांस, इमोशंस और सोशल इश्यूज को एक अनोखे अंदाज में पेश किया इस दुनिया में. उनकी जोड़ी एक्ट्रेस नरगिस के साथ हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक मानी जाती है. दोनों ने मिलकर कई यादगार फिल्में दी जो आज भी क्लासिक सिनेमा का हिस्सा है. दोस्तों 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए उन्होंने नए कलाकारों को मौका भी दिया और यूथ रोमांस को एक नया रूप दिया. बिल्कुल जी, सिर्फ ऑरेंज टू रेडियो मस्ती पर लेकर आते हैं ऐसे गिने चुने नगमे जो पेश कर रहे हैं आज आपके लिए. वैसे देखा जाए राज कपूर को द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है. उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती थी बल्कि सामाजिक संदेश भी देती थी. आवारा, श्री 420, जागते रहो, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली जैसे क्लासिक आज भी सिनेमा प्रेमी दिलों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे. उनका आवारा हूँ वाला अंदाज पूरी दुनिया में मशहूर हुआ. सोवियत यूनियन से लेकर मिडल ईस्ट तक राज कपूर के लाखों दीवाने थे, हैं और हमेशा रहेंगे.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: बिल्कुल जी, दैट वाज सच अ लवली सॉन्ग. श्री 420 मूवी से लिया गया दिल का हाल सने दिल वाला, जो स्पेशली मिस्टर राज के लिए था, उनकी खूबसूरत सी वाइफ माया की तरफ से, जो मेबक से हमारा साथ दे रही है. हे वनीशा, मेरा नाम जो का जीना यहाँ मरना, यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. बिल्कुल, ये गाना सभी को तो ही पसंद है और ज़रूर कोशिश करेंगे टू प्ले दैट फॉर यू. माया भी थोड़ी देर में ज़रूर ये गाना आपके लिए हम प्ले करेंगे. मोनिका के लिए, सरोज के लिए, कौशल राजन, पूनम, श्रेया, उमेश, अर्शी ऑफ कैथोबोन के लिए, रेडियो मस्ती टीम के लिए और ऑल दोज लवली फैंस ऑफ राज कपूर, थैंक यू सो सो मच. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए कोई हमें आयरलैंड से सुन रहे हैं, लेट में टाइम नहीं मिला, सो हैप्पी मदर्स डे टू यू मॉम, थैंक यू सो मच. बिलेटेड हैप्पी मदर्स, एक्चुअली वी डू सेलिब्रेट मदर्स डे एवरी डे. आपकी बहन है बेबीना, रेखा, सुचित्रा और वेदना और ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस मदर्स इन द वर्ल्ड, फ्रॉम वाशिल, दिवेश, केतनव, येशना एंड एवा, इयाना फ्रॉम डबलिन, थैंक यू सो मच. और आप हमें सुन रहे हैं तो अगला गाना आपके नाम भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे. एंड आज यू आर प्लेइंग राज कपूर के सारे फिल्मी गाने, ग्रेटफुल होंगे अगर आ अब लौट चले. कोशिश करेंगे टू प्ले दैट एंड रिमाइंडिंग यू द डेज व्हेन बेटी वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर हिंदी इन फॉर्म 6. थैंक यू सो मच जी. तो चलिए बस यूं ही साथ देते रहना और खूबसूरत गानों का आप मजा लेते जाना. सोनी जी और एंजॉय करते रहे ये खूबसूरत और प्यारे प्यारे गाने जो लेकर आए हैं आज, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लेट हमारे राज कपूर जी को. और फिलहाल के लिए शाम देवी चंजी ऑफ पेरे बी एंजॉइंग प्रोग्राम, फुल ऑन वॉल्यूम लगाकर गर्मा गर्म इलायची वाले चाय भी आप पी रहे हो, तो ये अगला गाना खासकर आपके लिए भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे. तो चलिए जी, आज हम बात कर रहे हैं हमारे लेट राज कपूर जी के बारे में, तो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में भी हम बात करना पसंद करेंगे. राज कपूर को सिनेमा में उनके

0: योगदान के लिए कई सम्मान मिले जी। उन्हें भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान मिले दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। उनका जो योगदान इतना विशाल था कि आज भी उनकी जो फिल्में हैं स्कूल्स में पढ़ाई और समझी जाती हैं। और चलिए जी बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। यह है मुकेश दा की आवाज़ में, हमारे सारे लेट राज कपूर जी के फैंस के नाम।
1: You're listening to Radio Mastini.

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: रेडियो मस्ती।
1: आई रियली होप कि हर गाने आपके दिल को छू रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। ये खूबसूरत सा शो आपका रेट्रो रिदम जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती। टाइम बीटा चला जा रहा है, 1:49 हो चुके हैं। तो दोस्तों आज है 2nd of June, 2 जून, और आपको याद दिला दे 2 जून 1988 को राज कपूर हम सबको अलविदा कह गए। उनकी मौत से भारतीय सिनेमा ने अपना एक अनमोल सितारा खो दिया, लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं हैं। वो अपनी कला के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं सबके दिलों में। आज भी जब जीना यहाँ, मरना यहाँ, प्यार हुआ, इकरार हुआ या मेरा जूता है जापानी है जैसे गीत बजते हैं, तो राज कपूर की याद हर दिल में ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल, राज कपूर एक नाम नहीं, एक दौर थे, एक सोच थे, एक एहसास थे, और उनकी फिल्में आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती हैं, करती रहेगी। और अभी के लिए जैसे कहते हैं ना कि आइए उनकी याद में सुनते हैं उनके कुछ अमर गीत और मनाते हैं उस शुमन की विरासत को जिसने सपनों को पर्दे पर हकीकत बना दिया। ये था रेडियो मस्ती का खास ट्रिब्यूट प्रोग्राम द शुमन राज कपूर के नाम। हम हैं कि निशा जी साथ दे रहे हैं, और चलिए एक और गाना हो जाए सभी उनके फैंस के नाम जो बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से इस खूबसूरत शो को दिल से एंजॉय कर रहे हैं।
2: You're listening to Radio Mastery.

तो चलिए जी इसी खूबसूरत गाने के साथ इस टाइम फॉर गणेश आरती से गुड बाय टू यू। आप हमें इजाजत दीजिए और थोड़ी देर में आने वाली हैं यहाँ पर ही आपके एक खूबसूरत से शो के साथ विद सम लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड लेटेस्ट बॉलीवुड के गाने। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। हैव अ लवली डे एंड गॉड ब्लेस यू।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा कीमत की मादक द्रव्य जब्त किए गए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई। 44 सड़क दुर्घटनाओं में से भी ऐसे चालक शामिल थे जिनके ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित रहे। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पीएनक्यू के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि देश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई। युवाओं में तंबाकू और निकोटीन का सेवन साथ ही वेपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 31 मई को मनाए गए विश्व तंबाकू रहित दिवस के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इसका उद्देश्य रोकथाम प्रयासों को मजबूत करना और विशेष रूप से युवाओं में तंबाकू, निकोटीन और वेपिंग उत्पादों से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। कांतोगल मामले में सुर्खियों में बनी पिंक जंपसूट पहनी युवती को कल सेंट्रल सीआईडी में पेश किया गया। उन हिंसक घटनाओं के दो हफ्ते बाद उससे पूछताछ की गई जो उसके वकील राउफ गुलबुल की उपस्थिति में चली। उसने अपने बयान में कहा कि उसके हाथ में तलवार नहीं थी और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। हालांकि उसने घटनास्थल पर मौजूद होने की बात स्वीकारी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बोला के नए वायरस से निपटने के लिए 3 नए टीके विकसित किए जा रहे हैं, जिससे अब तक लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है। एक टीके पर काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव का कहना है कि इस बार एबोला का सबसे खतरनाक प्रकोप फैला है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसके संक्रमण से 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: NBC Play, NBC Radio.tv. More music in the mix. Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलो और चलते हुए

आज का ट्यूसडे आपका अच्छे से बीत रहा है। कामकाज के बीच फंसे हुए आप और आपका एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हुए हम, मैं हूं परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा 4 PM राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती। बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स एंड सम ब्यूटीफुल लेटेस्ट सॉन्ग्स लेकर आए हैं आपके नाम टू गेट यू इन द ट्यूसडे मूड। सो साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स, आपका तहे दिल से स्वागत और मैसेजेस डेडिकेशंस का इंतजार ऑन 5499-1294। RM2 Radio Musty Feels a Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: फ्रेंड्स, अगर आप रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपको बता दें, कृति सनन, रश्मिका मंदना और शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। इसका ट्रेलर देखने के बाद आप भी ऐसा कहेंगे कि मेकर्स ने कॉकटेल 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया और आते ही इसने यूट्यूब पर धूम मचा दी है। लव ट्राइंगल पर बेस्ड इस फिल्म के ट्रेलर में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया है। सो इफ यू आर अ फैन ऑफ रोम कॉम, आप इस फिल्म को खूब एंजॉय करने वाले हैं। और स्टार कास्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है। शाहिद कपूर, कृति सनन एंड रश्मिका मंदना। रश्मिका मंदना आफ्टर हर शादी फर्स्ट टाइम बिग स्क्रीन पर नजर आने वाली है और इस बार एक रोम कॉम में। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये फिल्म लोगों को कितना पसंद आती है। अभी के लिए तो वालिद प्रेत से नानी शोभा, शोभा कालीचरण हमारा साथ दे रही हैं आप और कहती हैं एक स्वीट सा गाना आप जरूर डेडिकेट करें, होगा फॉर मामा पापा ब्रदर सिस्टर इन लॉ सभी के लिए बहुत सारा प्यार एंड गोज आउट फॉर ऑल कालीचरण फैमिली।
0: रेडियो मस्ती, हिट म्यूजिक ओनली।
3: और यहाँ पर विजया जी अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये तो हम जानते थे कि आपका साथ तो हमेशा रहता है। सो थैंक यू सो मच, ट्यून इन किया है आपने रेडियो मस्ती के साथ। सो मस्ती ही मस्ती आपके लिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग गोज आउट फॉर यू एज वेल एंड विशिंग यू अ वंडरफुल आफ्टरनून। जीना जोशी ने भेजी है अपनी गुड गुड विशेज। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेज जीना जी। गाना आपके लिए अनेक बड़ी गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो दे रहे हैं साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM एंड सुन रहे हैं आप योर बॉम्बे टॉकीज़।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Welcome to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: टाइम चेक का थोड़ी ही देर में 3 बजने वाले हैं और लेकर चलेंगे आपको समाचारों की ओर. कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड.
6: Nous fin arrive qu'en finale compétition débat climat. Bans élèves depuis 8 collèges qui fin sélectionnés fin pari pour porter à autre l'opinion le changement climatique. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Alors, pas oublier, suivez débat climat samedi 6 juin au MBCN et MBCSAT à partir de 8h30 à soir.
4: RM2
3: Radio Musti. Feels a Musti.
5: Exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति. आपको नमस्कार.

0: नमस्कार
1: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज़्यादा कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई। 44 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल 168 चालकों के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए थे। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर रवीन्द्र गुलाम ने राष्ट्रीय सभा में आज विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई है। साथ ही पुलिस कार्रवाइयां भी बढ़ाई गई हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के ओवर टाइम का भुगतान इस महीने के आखिर से किया जाएगा और दमकल कर्मियों के लिए संडे अलाउंस और पब्लिक हॉलीडे अलाउंस की अदायगी शुरू हो चुकी है। इन एलोकेशंस का पूरा भुगतान वित्तीय साल 2026 के आखिर से पहले कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा लगाए गए एक प्रेस सम्मेलन के अंतर्गत आज सुबह इन फैसलों पर चर्चा की गई। युवाओं में तंबाकू और निकोटीन का सेवन साथ ही वेपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 31 मई को मनाए गए विश्व तंबाकू रहित दिवस के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल सोमवार को एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इसका उद्देश्य रोकथाम प्रयासों को मजबूत करना और विशेष रूप से युवाओं में तंबाकू, निकोटीन और वेपिंग उत्पादों से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल रहा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एबोला के नए वायरस से निपटने के लिए 3 नए टीके विकसित किए जा रहे हैं, जिससे अब तक लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है। एक टीके पर काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव का कहना है कि इस बार एबोला का सबसे खतरनाक प्रकोप फैला है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसके संक्रमण के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: with this song, it's time to welcome aap sabhi ka. 3:06 ho gaye hain. Tuesday afternoon, 2nd of June. Umeed karte hain that you're having a nice Tuesday out there. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. बी टाउन की खबरों के साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स कर रहे हैं आपका इंतजार. स्टे कनेक्टेड. मैसेजेस डेडिकेशंस है, रहेगा इंतजार 5499-1294 पर.
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: कभी सोचा है? हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

आयुष्मान भव।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, 3:24 बात करते हैं रणदीप हुड्डा, जो इन दिनों अपनी लाइफ के खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं। एक्टर एक बच्चे के पिता बन गए हैं और उनकी पत्नी ने कुछ टाइम पहले एक बेटी को जन्म दिया था। एक्टर अक्सर अपनी बेटी संग सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर बेटी संग एक क्यूट फोटो शेयर की है। रणदीप हुड्डा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बेटी न्योमिका को बेड टाइम स्टोरी सुनाते नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी लीन अलेश्राम बेटी को गोद में लेकर बैठी हुई है। एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, एवरी स्टोरी टेलर ड्रीम्स ऑफ फाइंडिंग अ न्यू ऑडियंस, नथिंग प्रिपेयर्स यू फॉर द जॉय ऑफ टेलिंग स्टोरीज टू द वन हु लुक्स एट यू लाइक यू आर द होल वर्ल्ड। अपनी

0: बेटी को कहानी सुनाते हुए रणदीप हुड्डा शेयर कर रहे हैं ये क्यूट क्यूट पिक्चर। और रणदीप हुड्डा का ये जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं और लोग तस्वीर पर अलग अलग तरह के कमेंट्स और प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं। बता दें, रणदीप ने कुछ टाइम पहले अपनी बेटी का नाम रिवील किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हमारी दुनिया का एक नया केंद्र नियोमिका हुड्डा। कपल ने 10th मार्च 2026 को अपनी बेटी का वेलकम किया। रणदीप और ली नलेश्राम ने साल 2023 में शादी की थी। कपल ने मणिपुर के इम्फाल में पारंपरिक मिताई रीति रिवाज से शादी की थी, जो काफी खुशहाल जीवन अब जी रहे हैं और अब तो फाइनली बन गए हैं पेरेंट्स ऑफ अ क्यूट क्यूट बेबी गर्ल नियोमिका। और ऐसे ही खुशियां उनकी लाइफ में आती रहे ये तो हम जानते हैं। दैट रणदीप हुड्डा ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन ये पिक्चर देखकर लग रहा है दैट ही इज गोइंग टू बी इवन अ बेटर फादर।
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: रहमान लकेश की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: लड़की जो सबसे अलग है, दैट वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. एंड वेल फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू रीड आउट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294. रितेश, रामी, रानी, श्यामा, तनेश, आदर्श, निष्ठा, जयश्री, युषरा, वशिष, राधा, शकीलन, सभी जीवन परिवार बेले से हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं गाना गोज आउट फॉर एंटायर क्रू ऑफ रेडियो मस्ती. क्या बात है, थैंक यू जी. और हमारी पूरी टीम की ओर से गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपकी स्वीट फैमिली के नाम. साथ देने के लिए शुक्रिया. नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट फॉर बेटी अवनी एंड बेटा रोशन. मनीषा साथ दे रही हैं आप. हेलो जी मनीषा, गाना होगा आपके लिए फॉर योर हबी एंड फॉर योर लवली डॉटर. थैंक यू सो मच, साथ दे रही हैं आप ऑन रेडियो मस्ती. गाना फॉर योर स्वीट फैमिली. और कहते हैं दैट सर्दी हो गई है मुझे. ओ माई गॉड, रोशनी जी ये क्या हो गया. मौसम ही कुछ ऐसा है, बदलता मौसम जहाँ पर अब विंटर दस्तक दे रही है और विंटर ने आते ही आपको सर्दी दे दी, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए. गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीजिए, थोड़ा सा आप स्टीम लीजिए और गानों को एंजॉय करिए. यहाँ से आपके लिए गुड विशेज हम ज़रूर पहुँचाएंगे. सो गेट वेल सून विशेज एंड वेल डेडिकेट करेंगे गाना आपके नाम टू गेट यू इन द मूड. बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी गुड विशेज टू यू रोशनी. गेट वेल सून डियर. साथी ललिता जी यहाँ पर साथ दे रही हैं, कहते हैं एंजॉइंग द प्रोग्राम, इट्स रॉकिंग और गाना मेरे नाम. क्या बात है, थैंक यू जी. और ऐसे ही साथ देती हैं आप एवरी डे. सभी पूरे परिवार को आप याद करती हैं और आज मुझे भी याद किया, सो इट्स रियली स्पेशल. थैंक यू जी. गाना आपके नाम आपके पूरे परिवार के लिए. एंड कुमार देवीचंद एंजॉइंग द प्रोग्राम अपने गिटार के साथ. क्या बात है, साथ में याद कर रहे हैं पापा श्याम देवीचंद को ऑफ पेबे. उनके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी गुड विशेस. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप हमारे स्वीट लिसनर्स के नाम जो देते हैं हमारे हमेशा हमारा साथ ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. सो अभी के लिए तो बी टाउन के लेटेस्ट सॉन्ग्स, बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स. मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज.
0: You're listening to Radio Mastery.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: मस्ती
1: रेडियो मस्ती द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक
2: रेडियो मस्ती
1: फील द मस्ती
3: टाइम चेक शाम की ठीक 4 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अदिति के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको अदिति।
4: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार। दक्षिण अफ्रीका तब तक मॉरिशस को पूरा समर्थन देगा जब तक कि शागोस द्वीप समूह की पूर्ण प्रभुसत्ता मॉरिशस के अधीन न आ जाए। इस बात का दावा मॉरिशस के लिए दक्षिण अफ्रीका के राजदूत और कूटनीतिक खो की डीन डॉक्टर लामालानी नेली मांजिनी ने किया। मॉरिशस में उनका कार्यकाल समाप्त होने चला है और सेथासोजी में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल के साथ एक खास मुलाकात के दौरान उन्होंने औपचारिक तौर पर उनसे विदा लिया। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई। 44 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल 1168 चालकों के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई, साथ ही पुलिस कार्रवाइयाँ भी तेज की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के ओवरटाइम का भुगतान इस महीने के आखिर से किया जाएगा और दमकल कर्मियों के लिए संडे अलाउंस और पब्लिक हॉलीडे अलाउंस की अदायगी शुरू हो चुकी है। इन एलोकेशंस पर का पूरा भुगतान वित्तीय साल 2026 के आखिर से पहले कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा लगाए गए एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आज सुबह इन फैसलों पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव और नीप्रो शहर पर रूसी ताकतों की तरफ से किए गए सिलसिलेवार मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले कुछ महीनों में किए गए सबसे बदतर हमलों में से एक रहा। दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई बच्चे शामिल बताए जाते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Raftar Vibes, Filmy Rides.
2: RM2. Radio Musti.

0: गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते। अभी हम आ गए हैं, आपकी रिया आ गई है यहाँ पर रॉन रेडियो मस्ती, और आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स। कैसे हैं आप सभी? शाम के 4:08 और यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाने हम लेकर आए हैं, बट बाहर तो सड़कों पर रफ्तार बढ़ने लगी है, ऑफिस की कुर्सियाँ धीरे धीरे खाली हो रही है, गाड़ियाँ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी है, और कई लोग अभी भी अपने काम में इतने व्यस्त है कि क्या ही कहे। वेल, किसी की शिफ्ट ख़त्म हो रही है, किसी का काम अभी बाकी है, और किसी का सफ़र घर की तरफ शुरू हो चुका है। ट्यूसडे का दिन है, हफ्ता अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक तो हम मिड वीक तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वीकेंड की तरफ एक और कदम हमने ज़रूर बढ़ा लिया है। तो चाहे आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे हो, ऑफिस डेस्क पर हो, या कहीं रास्ते में हो, अगले कुछ घंटों तक हमारा ही साथ मिलने वाला है, ज़बरदस्त गानों के साथ, मस्त बातों के साथ और पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो आपसे हम कहेंगे कि सीट बेल्ट आप बांध लीजिए, मुस्कान साथ रखिए, और चलिए शुरू करते हैं रफ्तार वाइब्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप हम तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2
3: Radio Musty.

Well, कभी कभी हम दिन के अंत में सिर्फ उन बातों को ही याद रखते हैं जो हमसे रह गई, जो काम पूरा नहीं हुआ, जो फोन नहीं कर पाए, जो बात कह नहीं पाए। लेकिन आज एक छोटा सा हिसाब हम बदलते हैं। सोचिए आज आपने क्या क्या किया। शायद किसी की मदद आपने की, किसी मुसीबत का हल आपने निकाला, किसी को मुस्कुराया, या बस पूरे दिन जिम्मेदारियों को आपने निभाया। हर दिन कोई बड़ी जीत लेकर तो नहीं आता, कभी कभी समय पर उठ जाना, काम पर पहुंच जाना और पूरा दिन ईमानदारी से गुजारना भी एक जीत ही होती है। इसलिए आज शाम खुद को थोड़ा सा पर शाबाशी दीजिए, एक छोटा सा पैट आप दीजिए बैक पर, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर रही है। खुद पर नाज करना भी बहुत अच्छी बात है, और अगर हम खुद पर नाज नहीं करेंगे कौन करेगा। बाकी कर सकते हैं लेकिन खुद पर नाज करना बहुत ही फायदेमंद है, इससे आप ही खुश रहते हैं एंड अगर आप खुश रहते हैं तो मन आपका ऐसे ही संतुष्ट रहता है। इसलिए बी हैप्पी।

0: हैप्पी, आपका मन भी ऐसे हैप्पी हैप्पी रहेगा और हमारी गानी तो है ही आपको हैप्पी रखने के लिए। दिस इज योर ऑफ दैट वाइब्स रिया के साथ एंड वी आर प्लेइंग सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ पर 4:20 थोड़ी देर में आप ऑल्सो सुन पाएंगे आज की स्पोर्ट्स खबरें। सो स्टे वेल ट्यून्ड एंड फॉर नाउ आप एंजॉय कीजिए ये नेक्स्ट गाना।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.

4:31 और ट्रैफिक में शायद बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। वेल, ट्रैफिक में फंसना किसी को पसंद तो नहीं है, लेकिन जिंदगी भी कुछ तो ऐसे ही है। कभी सिग्नल ग्रीन ना मिलता है और सब कुछ आसान लगता है, कभी रेड लाइट हमें रोक देती है और हम बेचैन सा हो जाते हैं, लेकिन हर रुकावट का मतलब देर नहीं होता है। कभी कभी वो हमें संभाल कर आगे बढ़ने का मौका भी देती है। सो अगर आज कोई काम आपकी मर्जी के अनुसार नहीं हुआ तो परेशान आप बिल्कुल मत होइए। हो सकता है कि जिंदगी बस आपके लिए सही समय का इंतजार कर रही हो। सफर लंबा हो सकता है पर मंजिल तक कहीं नहीं जा रही, वही है और आप पहुंच जाएंगे मंजिल तक। सो बस आप थोड़ा सा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए और मीनवाइल हमारे साथ ये गाने आप एंजॉय करते रहिए। वैसे नेक्स्ट ट्रैक यहाँ पर हम चलाएंगे वीना जी के नाम, क्योंकि आप ये गाना सुनना चाहती थी और हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी थी। सो वी आर प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर यू एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो। आई एम श्योर कि आपको ये गाना बहुत ही पसंद आएगा एंड यस आई एम गुड, आई होप आप भी ठीक हो। एंड यस, हमारे सभी लिसनर्स के नाम भी ये गाना जाता है आपके मैसेजेस, आपकी डेडिकेशन के साथ। हम थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: अपनी घड़ी मिलाते चलिए 4:40 और स्टूडियो में आ गई है अडविन। तो चलिए सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में हो क्या रहा है। गुड आफ्टरनून आपको अडविन।
5: गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून आरएम टू लिसनर्स। बहुत कुछ हो रहा है टावर्ड्स द वर्ल्ड कप इंटरनेशनल फ्रेंडलीज तैयारी के रूप में, और कोलंबिया ने आज सुबह कोस्टारिका को 3-1 से हराया। कनाडा की टीम द होस्ट नेशन, उसकी जीत हुई उज्बेकिस्तान पर 2-0 से। आज कुछ और फ्रेंडलीज हैं, क्रोएशिया बेल्जियम, जॉर्जिया रोमानिया, मोरक्को मेडागास्कर, वेल्स गाना। आपको बता दें मोरक्को का पहला मैच ब्राजील के खिलाफ है। तो ये आज के फ्रेंडलीज। कल भी काफ़ी फ्रेंडली मैच रखे गए हैं, इनमें नेदरलैंड्स का मुकाबला अल्जीरिया से होगा, फिर पोलैंड नाइजीरिया, लुक्जम

0: बर्ग इटली, इटली जो इस बार वर्ल्ड कप में नहीं है, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसका मुकाबला डेनमार्क से है, अल्बेनिया इजराइल और किर्गिस्तान केन्या, ये मैच पोस्टपोन कर दिया गया है। सो फिक्स्चर्स तो यहाँ पर हैं, वर्ल्ड कप फिक्स्चर्स के बारे में आपको समय समय पर जानकारी यहाँ देते रहेंगे। फिलहाल ये खबर है कि सर केनी डालग्लिश मिस्टेक से, गलती से उन्होंने एक मैसेज, एक पोस्ट शेयर कर दिया जिसमें जिससे पता चला कि ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था लेकिन उसने कहा कि इस न्यूज़ को प्राइवेट रखना चाहता था, लेकिन उसने अपने डायग्नोसिस को कंफर्म किया जब एक्सीडेंटली वो अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये लेकर आ गया। वैसे इस सप्ताह दो ऐसे फुटबॉल ग्रेट फुटबॉल लेजेंड के कैंसर बीमारी के बारे में पता चला है। केविन कीगन ने भी रिवील किया है कि अभी वो स्टेज फोर कैंसर डायग्नोसिस के दौरान है। उनको हम कहेंगे गेट वेल सून। लिवरपूल इन एडवांस टॉक्स विद इराओला। इराओला जो बोर्नमुथ का मैनेजर रहा उसके साथ बातें होने लगी हैं और उसको नया हेड कोच बनाया जा रहा है आर्ने स्लॉट को निकाले जाने के बाद। लिवरपूल जल्द से जल्द ये अपॉइंटमेंट करना चाहता है फॉर इराओला, जिस जो फुटबॉल पसंद करता है, फ्रंट फुट अग्रेसिव फुटबॉल। अभी तक अप्रोच नहीं हुआ है उनके पोटेंशियल कोचिंग स्टाफ को लेकर, लेकिन खबर है 43 ईयर ओल्ड स्पैनियर्ड वो अपने असिस्टेंट जो बोर्नमुथ में था उसको लाना चाहता है, टोमी एल्फिक जो लिवरपूल का एक लाइफ लॉन्ग फैन है और यहाँ पर आना चाहेगा। तो एल्फिक अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं हुआ लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी से बहुत इंटरेस्टेड होगा। इस हायरिंग प्रोसेस में आनफील्ड रोड में रिचर्ड ह्यूज काम कर रहा है जो लिवरपूल का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, जो पहले इराओला के साथ काम कर चुका है बोर्नमुथ में, उसी ने इराओला को बोर्नमुथ के लिए चुना था, सो इसीलिए उसको यहाँ पर लाना चाहता है। अन्य बातों में साउथहैम्पटन के ओनर ने बताया कि वे उसके कोच एकट को शक नहीं करेगा, उस पर जासूसी करने का आरोप है। फिर फुलहाम के बॉस सिल्वा वो बेनफिका से बात कर रहा है। इतना कुछ फुटबॉल, लेट्स टॉक अबाउट टेनिस। टेनिस इन दिनों फ्रेंच ओपन और आज कोश्ट्विक ने वितोलिना को हराया और पहली बार के लिए एक मेजर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। बाकी मैच जो आज खेले गए, अंद्रीवा सियस्टिया को उसने हराया 6-0, 6-3। कोश्ट्युक डिफीटेड वितोलिना और आज के अन्य मैच जुडा वेरेव, मैंसिच फोनसेका और कुछ डबल्स भी खेले जाएंगे आज और कल भी। ये फिक्स्चर्स कुछ अच्छे अच्छे फिक्स्चर्स हैं जैसे सबालेंका, श्नाइडर, ओगा अलियासिमे, कोबोली, बेरेटिनी, अर्नाल्डी, ये कल के फिक्स्चर्स हैं। क्रिकेट आईपीएल तो समाप्त हो गया लेकिन अब वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में लगने वाली हैं फॉर दी इंडियन वुमेन, इस पर समय समय पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। और ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप को लेकर अभी थोड़ी देर बाद आपको ज्यादा डिटेल्स देंगे। सो दैट्स इट, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
4: रेडियो मस्ती
5: हिट्स, म्यूजिक ओनली,
4: फील्स अ मस्ती।

0: टीम्स 104 मैचेस रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और मेक्सिको
1: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप
2: चलो वर्ल्ड कप की ओर। ऑफिशियली 9 दिन रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने के लिए, फ्रॉम जून 11 टू जुलाई 19। कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के 16 शहरों में ये होगा और पहली बार के लिए 28 टीमें, फॉर ए ग्रैंड टोटल ऑफ 104 मैचेस। स्क्वाड अराइवल्स, अर्जेंटीना, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अपने टूर्नामेंट बेस पे आ चुकी हैं कांजास सिटी में।

0: हैं। टीम कप्तान लियोनेल मेसी भी वहां पर पहुंच चुका है। उनका पहला मैच 16 जून को होगा अल्जीरिया के खिलाफ। टिकट के दामों पर एक नजर डालेंगे तो यहां $60 से लेकर $10,990 तक रेंज में है, मतलब लगभग ₹300 टू ₹550,000। ये सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप है फुटबॉल हिस्ट्री में। इसमें जो डायनामिक प्राइसिंग लाया गया है, फेस वैल्यू टिकट बहुत ऊपर हो गए हैं, खासतौर पर स्टेडियम लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रियल टाइम डिमांड को लेकर। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, सपोर्ट एंट्री ये $60 में है, ये 104 मैचों में, लेकिन ये बहुत कम है, खासतौर पर नेशनल फेडरेशंस और रीजनल फैंस क्लब को दिए जाते हैं। ग्रुप स्टेज में न्यूट्रल मैच $120, ये कैटेगरी 3 के होते हैं और ये $1200 तक जा सकता है। ग्रुप स्टेज में होस्ट नेशन उनके जो मैच हैं, यानी जो जैसे मेक्सिको है, कनाडा है, यूएसए है, उनके लिए दाम $400, यहाँ तक कि $2,735 तक जा सकते हैं। हाई प्रोफाइल गेम्स जैसे यूएस का ओपन मैच, ये $4,000 तक भी जा सकता है, टू बी मोर प्रिसाइज $4,105। नॉकआउट राउंड में, राउंड ऑफ 32 क्वार्टर फाइनल में रेंज है $225 टू $1,775। फिर सेमीफाइनल $930 टू $3,295। और वर्ल्ड कप का फाइनल, ये तो मालामाल लोग ही जा सकते हैं, तिजोरी साफ करनी होगी, $1,490, ये कैटेगोरी 3 टू $10,990 कैटेगोरी 1। जो फ्रंट कैटेगोरी है, प्रीमियम बॉल फ्रंट रो, ये £30,000 से $30,000 से ज्यादा है। तो मालामाल हो तब वर्ल्ड कप देखो, नहीं तो एमबीसी में तो दिखाए जा रहे हैं मैच। एमबीसी आप हो या एमबीसी टीवी हो, वर्ल्ड कप आप तक लाएंगे जरूर।
1: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई। Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti.

Well, I'm sure कि आप तो ये मानते ही होंगे कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ गाने नहीं एक पूरी याद बन जाते हैं, और जब उनकी धुन फिर से सुनाई देती है तो दिल सीधा ही पुराने दिनों में पहुंच ही जाता है। ऐसा एक गाना है जो वापस आ गया है। जी हाँ, हमने अभी अभी चलाया ऊंचा लंबा कद, और इसका जो नया वर्जन है ये ऊंचा लंबा कद फॉरएवर, ये हाल ही में रिलीज हुआ है, और कब, आई थिंक कल ही रिलीज हुआ है। इस बार स्क्रीन पर नजर आ रही है अक्षय कुमार के साथ है दिशा पटानी, एक नए अंदाज और नए जोश के साथ है। लेकिन जब लोगों ने देखा क्लिप, उनको तो अपनी पुरानी कटरीना की याद आ गई, क्योंकि पुरानी कुछ ऐसी तस्वीरें जुड़ी थी, कुछ यादें जुड़ी थी जो हम भूल से भी भूल नहीं पाते हैं। तो दैट वाज जो ऑडियंस ने जाना पहचाना और उन्होंने बताया। सो यस, आपको कैसा लगा गाना, नया या आपको पुराना ही वाला गाना अच्छा लगा? कुछ भी हो, हम दोनों गाने बजाते रहेंगे आपके नाम, क्योंकि कई को पुराने गाने पसंद हैं, कईयों को नए गाने पसंद हैं। बट जो पुराना वाला गाना था फ्रॉम द मूवी वेलकम, ये कुछ अलग ही अंदाज का गाना था और हटके था। बट स्टिल हमारे जो गाने हैं RM2 रेडियो मस्ती के गाने रफ्तार वाइब्स में, जो हम स्पेशली चलाते हैं आप सभी के नाम, हटके होते ही हैं एंड बहुत ही स्पेशल होते हैं, क्योंकि आई नो कि आप थके हारे घर लौट रहे हैं, और शायद अभी कुछ लोग अभी तक बस के इंतज़ार में हैं, शायद अभी तक आप बस में ही हो, घर की ताग में हो कि कब पहुंचेंगे घर, बट आप पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्द। सो यस, लेट्स हियर द नेक्स्ट ट्रैक, और थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे इंग्लिश फ्लैश न्यूज़।

वंस अगेन नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एंड रफ्तार वाइब्स में हम दिल खोल के स्वागत करते हैं आप सभी लिसनर्स का। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया आपके साथ रेडियो मस्ती पर। एंड यस, यहाँ पर सेकेंड आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स शुरू हो चुका है। शाम धीरे धीरे अपने रंग बिखेर रही है, बाहर अभी भी रोशनी काफ़ी है, आसमान साफ है, लेकिन हवा में वो हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी है जो बता रही है कि सर्दी का मौसम अपनी दस्तक तो दे ही चुका है। कुछ लोग अब घर की तरफ शायद बढ़ रही है, अब ही बढ़ रहे हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं, अटके हुए हैं और कुछ के लिए तो काम का दिन अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक काम कर रही है। बट आपको हम कहेंगे बुखार। ऐसे इसे खूबसूरत शाम को और भी हसीन बनाने के लिए अगले एक घंटे हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, दिल को छू लेने वाली रोमांटिक गाने। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, खिड़की से बाहर आप नज़र तो डालिए, वो ठंडी हवा, वो शाम का सुकून और साथ में आपके पसंदीदा गाने, बस इसी एहसास का नाम तो है रफ्तार वाइब्स। तो चलिए इस शाम को थोड़ा और भी खूबसूरत बनाते हैं प्यार के सुरों के साथ रेडियो मस्ती पर डिया के साथ। एंड द नेक्स्ट ट्रैक इट्स अ ब्यूटीफुल वन, हमारे सभी लिसनर्स के नाम हम डेडिकेट करते हैं। नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294।

मलमल की खुशी क्या होती है? खुशी अक्सर हम बड़ी चीजों में नहीं बट छोटी छोटी बातों में ही हम इसे ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती है। घर पहुंचते ही बच्चे की मुस्कान, माँ की आवाज़, एक गर्म चाय का कप, या फिर थोड़ी देर बिना किसी फिक्र के अपना पसंदीदा गाना सुनना, बस यही होता है। ये सब वो लम्हे हैं जो दिन भर की थकान को धीरे धीरे मिटा ही देते हैं। आज शाम जब आप

0: हेड अप पहुंचेंगे, तो मोबाइल आप थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रख देना और अपनों के साथ चंद पल आप जरूर गुजार ही सकते हैं, बिता सकते हैं, वही पल कल की ताकत बन जाते हैं। और टॉकिंग अबाउट सेटिंग योर फोन साइड, जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या है कि आजकल काफ़ी सर्वेज के बाद ये देखा गया है कि फ़ोन काफ़ी हानिकारक है। ये तो हम कब से जानते थे, लेकिन फ़ोन के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहना ये काफ़ी हानिकारक है। सो आपको जब भी टाइम मिले तो बस ऐसे ही फ़ोन मत पकड़ लेना, आप थोड़े टाइम के लिए फ़ोन को साइड में रखना और यू कैन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये सब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, यू कैन हैव गुड टाइम अपनों के साथ, रेडियो के साथ गाने आप सुन सकते हैं। बस फ़ोन को आप साइड में ही रख दीजिए एंड यूल फील मोर रिलैक्स्ड। ये काम आता है, आप अगर बिलीव नहीं करते तो ट्राई करके देख लीजिए, आई एम श्योर कि ये ज़रूर काम करेगा। सो चलिए रफ्तार वाइब्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाने जो आपको बहुत ही पसंद तो आ ही रहे हैं, बट आई एम श्योर कि आपको किसी की याद भी दिला रहे हैं। तो चलिए यादों को हम ताज़ा कर लेते हैं द नेक्स्ट ट्रैक के साथ।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,

राइट, वी हैव अ मैसेज यहाँ पर व्हाट्सएप पर, किसी ने मैसेज भेजा है और आपका नाम है वाई, और अभी आप बस में एमबीटी बस में एंड डेडिकेट करना चाहते हैं गाना फॉर द ड्राइवर कंडक्टर एंड सभी पैसेंजर्स के नाम, एंड एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर बन रहे सभी को विश करते हैं। तो चलिए वाई, आपके नाम भी हम गाना डेडिकेट करते हैं।

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: दोस्तों कभी कभी सबसे सिंपल फैशन ट्रिक ही सबसे ज्यादा असर करती है। आज का फैशन टिप ये है कि अपने आउटफिट के साथ एक्सेसरीज को आप स्मार्टली मैच कीजिए। एक खूबसूरत वॉच, एलिगेंट इयर रिंग्स या एक स्टाइलिश हैंडबैग आपके पूरे लुक को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि एक्सेसरीज का मजा तब भी है जब वो आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करे, ओवरपावर नहीं। और सबसे जरूरी बात, जो चीज आप कॉन्फिडेंस के साथ पहनते हैं वही आप पर

0: सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है. सो दैट वाज द फैशन टिप ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय अल्कोरी फैशन. हर मौके के लिए स्टाइल, ग्रेस और नई सोच का परफेक्ट डेस्टिनेशन.
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय अल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.
0: चलिए, हमारे साथ एक टोली है, लड़कियों की टोली है जो अभी तक काम कर रही है पोर्ट लुइस में. एंड ये खूबसूरत गाना इन सभी के नाम जाता है. दैट वाज ब्यूटीफुल वन फॉर ब्यूटीफुल लेडीज जो हमारे साथ कनेक्टेड है एंड ऑल आवर लिसनर्स एज वेल.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: बज रहे हैं। नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मेलरोज के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कुछ महीने पहले हुई कैदी आंदी सेल्मो की मौत के सिलसिले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सुपुर्द की गई। जनवरी 2025 से अब तक मॉरिशस में 957 मिलियन रुपए मूल्य के सिंथेटिक ड्रग जब्त किए गए हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में पीएमक्यू सत्र के दौरान दी। पीएमक्यूटी के दौरान आगामी बजट 2026-2027 पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राप्त सभी प्रस्तावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेलरोज की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कुछ महीने पहले हुई कैदी आंदी सेल्मो की मौत के सिलसिले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सुपुर्द की गई। पूर्व जज पॉल लामशांगलिन ने इस रिपोर्ट में पूरा घटनाक्रम, आयोग के निष्कर्ष और कई सिफारिशें पेश की, खासकर कैदखानों में सुरक्षा और संचालन को लेकर। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज़्यादा की कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई हैं। 44 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल

0: 1068 चालकों के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई है। साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई है और पुलिस कार्रवाइयां भी बढ़ाई गई हैं। राज्यसभा में आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान अन्य कई मुद्दों के साथ साथ 2026-2027 के भावी बजट पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। सिल्वर बैंक के संबंध में भी एक प्रश्न उठाया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने दावा किया कि बैंक के संदिग्ध प्रबंधन के बावजूद पूर्व वित्त मंत्री ने इस संस्था में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 3 बिलियन रुपए के निवेश के लिए मंजूरी दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की नाजुक वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 150 रुपए का टेलीविजन लाइसेंस फी समाप्त करने का प्रस्ताव स्थगित किया गया है। सिल्वाना पारिमामन, करुणा लालू।
1: Madam Speaker, the Minister of Finance launched...
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि बजट 2026-2027 एक विश्वार्थिक अनिश्चितता के माहौल में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों से अपने प्रस्ताव रखते समय इसे ध्यान में रखने की मांग की गई।
1: The Minister of Finance is currently...
2: वित्त मंत्रालय वर्तमान में सभी मंत्रालयों के साथ नीति संवाद बैठकों का आयोजन कर रहा है। मैं सभी संबंधित पक्षों को ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और सिफारिशों का सावधानीपूर्वक और गहनता से अध्ययन किया जा रहा है ताकि उन्हें 2026-2027 के बजट की तैयारी और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में उचित रूप से ध्यान में रखा जाए। COVID-19 प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में जानकारी दी गई। पूर्व वित्त मंत्री ने सिल्वर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 3 बिलियन रुपए के निवेश को मंजूरी दी। इसके बाद 3 बार पैसे निकाले गए। ये अत्यंत चिंताजनक बात है जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की सरप्लस राशि को निवेश करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कोटेशन मांगे गए थे तो सिल्वर बैंक लिमिटेड द्वारा दी गई दर अन्य बैंकों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा थी। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने 12 महीनों के लिए 0.75% की दर प्रस्तावित की। बैंक वन मॉरिशस ने 12 महीनों के लिए 1.25% की दर, जबकि सिल्वर बैंक लिमिटेड ने 12 महीनों के लिए 4% की दर दी, जो बहुत अधिक थी। स्पष्ट है कि कुछ असामान्य स्थिति थी, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सिल्वर बैंक को ये फंड उस उच्च दर पर प्रदान कर दिया गया। ये सब ऐसे समय हुआ जब बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी उपलब्ध थी और लगभग रिकॉर्ड स्तर पर अतिरिक्त तरलता मौजूद थी। इस समस्या के साथ अभी भी जूझ रहे हैं। ये निर्णय किसी भी वस्तुनिष्ठ वित्तीय आधार पर उचित ठहराना कठिन है। बाजार की परिस्थितियों का कोई भी समझदारी भरा मूल्यांकन ये समर्थन नहीं कर सकता कि अन्य प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक दर स्वीकार की जाए। सबसे संभावित व्याख्या ये है कि ये निवेश केवल सिल्वर बैंक की वित्तीय स्थिति और उसके बैलेंस शीट को कृत्रिम रूप से मजबूत दिखाने के उद्देश्य से किया गया था। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि 150 रुपये की टेलीविजन लाइसेंस फी हटाने का फैसला टाल दिया गया MBC की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए ऐसा किया गया। मासिक टेलीविजन लाइसेंस फी को समाप्त करने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय लेते समय ये ध्यान रखना आवश्यक होगा कि MBC की वित्तीय स्थिरता बनी रहे और ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसका सार्वजनिक प्रसारण का कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहे। वर्तमान में MBC की वित्तीय स्थिति अत्यंत नाजुक है, इसलिए फिलहाल मासिक टेलीविजन लाइसेंस फी को समाप्त करने का निर्णय स्थगित किया गया है। ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जब ये सरकार नवंबर 2024 में सत्ता में आई तब

0: ने एमबीसी की गंभीर वित्तीय स्थिति को ध्यान में लिया। इसमें शामिल थे लगभग 1.5 बिलियन रुपए का संचित घाटा, कुल 165.5 मिलियन रुपए का कर्ज और लगभग 1.8 बिलियन रुपए की पेंशन ओब्लिगेशन।
1: The new management of the corporation, together with the MBC board, embarked on a major transformation plan aimed at strengthening the corporation's operation, financial and public service performance.
2: Puis-je demander à l'honorable Premier ministre si le dossier de libéralisation des ondes est arrivé de télévision privée progresse?
1: They are looking into the matter. This is the commitment we have taken during the election campaign and we intend to actually oblige on this.
0: एमोरशिस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरलाइन अभी इस तरह के कदम पर विचार नहीं कर रही। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने साफ किया कि नेटवर्क और फ्लीट का मूल्यांकन किया जा रहा है। जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक VAT के तौर पर 52.2 बिलियन रुपए जमा किए गए।
3: दक्षिण अफ्रीका तब तक मॉरिशस को पूरा समर्थन देगा जब तक कि शागस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता मॉरिशस के अधीन न आ जाए। इस बात का दावा मॉरिशस के लिए दक्षिण अफ्रीका के राजदूत और कूटनीतिक कोर की डीन डॉक्टर लामालानी नेली मंजीनी ने किया। मॉरिशस में उनका कार्यकाल समाप्त होने चला है और स्टेट हाउस हजवी में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोहुल के साथ एक खास मुलाकात के दौरान उन्होंने औपचारिक तौर पर उनसे विदा लिया। फागा कुना की रिपोर्ट।
4: दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त और कूटनीतिक क्षेत्र के डीन डॉक्टर हलामालानी नेली मंजीनी ने स्टेट हाउस रिज्यू में राष्ट्रपति धर्म गोगोल से रस्मी मुलाकात की और उनसे विदाई ली। इस औपचारिक दौरे से ही मॉरिशस में उनके कूटनीतिक मिशन का समापन हुआ। इस बैठक की बदौलत मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने के चरणों पर भी बात करने का मौका मिला। राष्ट्रपति धर्म गोगोल ने उन कई परियोजनाओं की सराहना की जिन्हें कूटनीतिज्ञ ने अपने कार्यकाल के दौरान साकार किया। साथ में शागोस पर दक्षिण अफ्रीका का समर्थन भी मिला। डॉक्टर हलामालानी नेली मंजीनी ने कहा, मॉरिशस के साथ हमारी द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने शागोस मामले को लेकर हमारे समर्थन को भी सराहा। दक्षिण अफ्रीका शागोस पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता का समर्थन करने के लिए अन्य अफ्रीकी देशों के बगल में डटा रहा। समझौते पर अंतिम निष्कर्ष तक मॉरिशस का समर्थन करते रहेंगे। ये बात उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मंजीनी के कूटनीतिक मिशन के पूरा होने पर इस महीने के अंत में देश से वे रवाना हो रही हैं।
3: और चलिए कैसे फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं जिसकी शूटिंग सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। निर्माता एवं निर्देशक कृष्णादत्त रामरोच की फिल्म गुरु दक्षिणा केवल भेंट देने तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन में प्राप्त ज्ञान संस्कार और मूल्यों के लिए आभार व्यक्त करने की भावना को उजागर करती है। ये फिल्म इसी शिक्षा पर केंद्रित है जिसकी लॉन्चिंग पिछले हफ्ते MC ने फ्लैक में की गई। पूजा सुकालू।
5: फिल्म की शुरुआत होती है दादा और पोते के इस शॉट के साथ। दादा जो हमेशा से अपने नाती पोतियों की रक्षक रहे हैं, यहाँ गुरु दक्षिणा नाम के इस फिल्म में शुरू से ही अपने पोते का मार्गदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं।
6: गुरु पूर्णिमा एक बरिस में एक ही हार आविला।
7: एक बरिस में तका है दादा।
6: गुरु पूर्णिमा एको खास दिन है जहाँ पर सब लड़का
5: निर्माता एवं निर्देशक कृष्णदत्त रामरुच की फिल्म गुरु दक्षिणा भोजपुरी भाषा संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समर्पित एक महत्वपूर्ण सिनेमाई प्रस्तुति है। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। गुरु दक्षिणा मॉरिशस के विभिन्न मनोरम और ऐतिहासिक स्थलों पर फिल्माया गया है जिनमें से एक देश के प्राचीन और प्रसिद्ध कोविल है जो फिल्म को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करता है। फिल्म का शीर्षक गुरु दक्षिणा भारतीय परंपरा में गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। ये केवल गुरु को

0: दी जाने वाली भेंट नहीं बल्कि जीवन में प्राप्त ज्ञान संस्कार और मूल्यों के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना को दर्शाता है।
1: दक्षिणा जब जब लेसन लोबे तो पिए कहता ना दू ऐसे छात्र लग होमन सा गए समय गुरु लगे शिक्षा लोबे तो छोटा से जलन सा जब बड़ा हो गलन सा तब उन लोग के अब जाए चाहेला घरे लौटे चाहेला फिर से नहीं जान सब

0: छात्र लोग चकेला देवे कि नहीं तो इस फिल्मों में देखबा तो जान जेबा।
1: हाल ही में 29 मई को एम सिनी फ्लैग में फिल्म का भव्य प्रीमियर और लॉन्च आयोजित किया गया।
2: हम मैं फिल्मों में गुरु काम गुरु हैं तो हम तो बहुत साल से गुरु के काम कर रहे हैं। कॉलेज में रही तो सोचते हैं जवान लोग देखिए सब बड़े आदमी लोग भी देखें अपन लेकर होके है शिक्षा दिए।
3: हम गुरु दक्षिणा में भाग ले रही, हम रोल कर ले हैं दादी के
4: फिल्म एंड गुरु के लिए फैनो अपन वन ऑफ द रिस्पेक्टेड जो तुम अनगों जबुन एक जनूरान सर्विस सो ओकेन सो दे रहे।
1: गुरु दक्षिणा का मुख्य उद्देश्य हमारे पूर्वजों की भोजपुरी भाषा को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है।
5: पूरे देश को हिला देने वाली एक त्रासदी जिसमें दो लोगों ने जान गंवाई, 24 वर्षीय मनीषा बधू और 31 वर्षीय नोविक सालेस के शव पिछले गुरुवार को युवक की गाड़ी में बरामद की गई। माना जा रहा है कि उनकी मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की इंटॉक्सिकेशन के कारण हुई है। ये कैसे हुआ और इस गैस के क्या खतरे हैं, इस पर विस्तार अंजू राम गुलाम की इस रिपोर्ट में, विवरण रजनी बिकर का।
6: कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक प्रतीक केमिकल सिंबल CO है, ये कार में कैसे पाया जाता है, एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक विशेषज्ञ ने समझाया।
7: सासे एन मानिफोल ई सोच पाला ई पास दो एन पाइपिंग एन अबान रेजोनेटर एन अबान कैटाली एन कैटालाइजर कि ली फिल्ट्रे प्रे 60-70% अबान कार्बन। Après, il y a les sauts-pas ou l'échappement à l'œil. Mais s'il y a une addition dans ce banc de connexion, parce qu'il y a 3 ou 4 connexions dans la ligne d'échappement, là, la fumée, là, le carbone, là, ça veut dire qu'il commence à refouler un petit peu à l'intérieur.
6: गैराज का दरवाजा बंद था। नोविक सालेस और मनीषा बधू के शवों को प्राप्त करने वाली परिजनों को कार के अंदर पहुंचने के लिए उसकी खिड़कियां तोड़नी पड़ी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अदृश्य और गंधहीन गैस है। फिर ये 2012 मॉडल की शेवोले कार के अंदर इतनी मात्रा में कैसे जमा हो गई कि घातक साबित हुई? क्या ये AC के डक्टों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर गई होगी?
7: Ça veut dire si vous mettez l'eau sur le fond, automatiquement, il bouvine l'eau. L'eau, ça système-là, ça veut dire qu'il prend l'air de haut, il y a bouillon l'eau. Là où capable de gagner un carbone, monoxide.
6: Or, il y a des kirkiens, thori, khuli, hui, tito.
7: Si, mais j'ai eu un garage, automatiquement, la fumée-là pour rentrer à l'intérieur dans la cabine. Surtout, il y a un véhicule qui est un peu ancien, je te donne de carbone, un petit peu plus fort.
6: कार्बन मोनोऑक्साइड को खतरनाक बनाने वाली बात इसका शरीर पर असर करने का तरीका है।
8: यह एक गैस कि très rapidement absorbé à travers les poumons. Les poumons attachés avec avec l'hémoglobine 240 à 250 fois plus rapidement que l'oxygène. Il reste là et donc nos organes vitaux, le cœur, le cerveau, mais se dépriver d'oxygène. C'est comme si nous payons tout, vous autres. Nous payons une affaire de, disons, 10 minutes avant qu'il y ait un symptôme commencé.
6: Iske lakshanon mein sir dard, chakkar aana, asamanya thakan, bhram aur atyadhik neend aana shamil hain. Jab gas ki matra badh jati hai to vyakti dheere dheere behosh hone lagta hai aur aksar use is baat ka ehsaas bhi nahi hota ki wo gambhir khatre mein hai.
8: Ban chauffe-eau à gaz, c'est une source assez fréquente d'empoisonnement parce que l'installation a été mal faite. Peine de ventilation et gaz là peut accumuler. Nous entendez, non? Dimon, il allait une prendre douce et puis après 20 minutes, pas trop de sortir, à l'guetter, c'est une finie mort.
6: कार्बन मोनोऑक्साइड के मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये मौन हत्यारा जो न दिखाई देता है न ही जिसकी कोई गंध होती है बिना किसी चेतावनी के जानलेवा साबित हो सकता है।
5: थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे जनवरी 2025 से अब तक देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा की कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता की PNQ के जवाब में दी।

0: indicate the estimated number of users thereof.
1: सिंथेटिक ड्रग की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, न केवल मॉरिशस में बल्कि दुनिया भर में, कहा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने. प्रधानमंत्री ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि इन पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान कितने गाड़ी चालकों पर सिंथेटिक ड्रग संबंधी टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए हैं. उन्होंने कहा,
0: since January 2025 to the 1st of June 2026, police has established 1594.
1: कमिश्नर ऑफ पुलिस की ओर से सूचित किया गया है कि 2025 के जनवरी महीने से पहली जून 2026 तक पुलिस ने सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए हैं. इसके परिणाम स्वरूप 1650 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस अवधि के दौरान 44 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें ऐसे गाड़ी चालक संलग्न रहे जो खतरनाक मादक द्रव्य सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए, और इनमें से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अन्य 6 लोग घायल हुए. प्रधानमंत्री ने इस समस्या को अधिक फैलने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया.
0: 461 vehicles have been stopped and checked, resulting in 1,068 persons being tested positive for synthetic drugs. From January 2025 to the 2nd of June 2026, police has carried out 361 crackdown operations, resulting in seizure of synthetic drugs for an amount of 957 million rupees.
1: इसके साथ साथ मादक द्रव्य और अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय संघ दफ्तर की 224 वाली रिपोर्ट के सुझावों के मद्देनजर नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सुझावों के अंतर्गत कार्य जारी है. इनमें मादक द्रव्य तस्करी से प्रभावित इलाकों का मैपिंग करना, संबंधित लोगों की निगरानी, कार्रवाइयों को बढ़ाना, आजसू को दिए जाने वाले माध्यम एवं उपकरण बढ़ाया जाना तथा निगरानी मिशन के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल आदि शामिल है. फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के स्तर पर सिंथेटिक ड्रग्स ऐसे पदार्थ रहे हैं जिनका इस्तेमाल 2025 में 1100 मामलों में ज्यादा पाए गए हैं.
0: The National Agency for Drug Control is launching a study on the prevalence and determinants of synthetic drug use among secondary school students in Mauritius.
1: National Agency for Drug Control की तरफ से मॉरिशस में माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को सिंथेटिक ड्रग संबंधी सेवन पर एक अध्ययन चलाया जाएगा. दूसरी बात, नादेक एक कार्रवाई चलाएगा जिसका मकसद होगा मादक द्रव्य लेने वालों के साथ 2021 में कायम जांच के नतीजों को अपडेट करना, ताकि प्रवृत्तियों के विकास को देख सके, समय के साथ बदलावों का मूल्यांकन किया जा सके और सबूतों पर आधारित हस्तक्षेप स्ट्रेटेजीज एवं नीतियां निर्धारित की जा सके. दूसरी तरफ सिंथेटिक ड्रग्स संबंधी रोकथाम को लेकर एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है. मादक द्रव्य और अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय संघ दफ्तर की रिपोर्ट के अनुरूप नादेक स्वास्थ्य संस्थाओं और संबंधित प्रयोगशालाओं के सहयोग से एक ऐसी चेतावनी प्रणाली अमल में लाएगा जिसकी बदौलत तीव्र गति से पता चल जाए कि किस तरह के नए सिकोएक्टिव पदार्थ हैं और मादक द्रव्यों से जुड़े उभरते खतरों के चलते राष्ट्रीय संस्थाओं में शीघ्र ही जवाब मिले. मादक द्रव्यों के आयात और वितरण नेटवर्क को लेकर जांच से संबंधित सांसद किरण के एक अतिरिक्त प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस को अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरों की मदद मिल रही है. नेशनल ड्रग कंट्रोल मास्टर प्लान में निर्धारित तत्काल कदमों पर विपक्ष नेता जूले जोगो के एक अतिरिक्त प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये जवाब दिया.
0: You should read the report, the master plan.
2: You should read the report, and you should read the report what it says. It says in the last 10 years, this is the toxic legacy that we've inherited from the MSM.
3: Exactly.
2: And this is what the you can't expect it to do overnight, what you didn't do in 10 years. But they are doing what has to be done.
4: Le Premier ministre peut-il dire à la Chambre si au niveau de la police...
1: Madak Dravya Jaisi Purai... मुख्य रूप से सिंथेटिक ड्रग राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है. राजनीतिक विभाजन से परे होना चाहिए. जो लोग हमारे नागरिकों का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उन्हें प्रमुख चुनौती से निपटने के लिए अपने प्रयास संगठित करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर रही है.
0: For that area, including the, in the Indian Ocean. This is that kind of collaboration we are getting through our

0: friends from abroad.
1: स्वतंत्र आशा खबरों की ओर। मई महीने के दौरान भारत के कई प्रांतों में रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर चली। कुछ राज्यों में 48 डिग्री तक का तापमान दर्ज किया गया। इससे वहां ऊर्जा की मांगें भी काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। उधर जापान में भी पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। विधि मासीपोरन।
2: दिल्ली के निवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलना जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जून तक बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। उत्तर और दक्षिण गोवा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 4 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी दिनों के लिए कोई चेतावनी नहीं है, जबकि महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहां गरज चमक तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अपने नवीनतम पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के भीतर केरल पहुंचने की उम्मीद है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। दूसरी ओर एक सीवियर ट्रॉपिकल तूफान ने दक्षिण पश्चिमी जापान में भारी तबाही मचाई, जिससे हजारों घरों की बिजली गुल हो गई, सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 9 लोग घायल हो गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ऊंची लहरें उठने, भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी जारी की है, क्योंकि जांगमी तूफान सोमवार को सब ट्रॉपिकल द्वीप ओकिनावा से टकराने के बाद अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। क्यूशु द्वीप पर स्थित मियाज़ाकी शहर की पूरी आबादी लगभग 3.9 लाख लोगों को अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है।
1: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आशात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटो वाले कुछ इलाकों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:39 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में शिव हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शुभ समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: शुभ समाचार सुनिए। नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा मोंसेलमा प्लेन दे एमिटाज हाईलैंड्स में, नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा मोंसेलमा प्लेन दे एमिटाज हाईलैंड्स में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रूपवंती लकी राम, श्रीमती रूपवंती लकी राम पैदाशी नाम गंगा बिसुन जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे श्री केविन लकी राम के मकान नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा मोंसेलमा प्लेन दे एमिटाज हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेवियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। मायावराम रोड सुयाक में, मायावराम रोड सुयाक में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती आदामा स्वामी पैदाशी नाम पुताया जो सरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी बेटी श्रीमती माला रामिया के मकान मायावराम रोड सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। गांधी रोड एन एस फ्लोरेंस बेलिया में, गांधी

0: रोड एन एस लॉन्ग बेलिया में 52 साल की 52 ईयर्स और श्रीमती देवयानी लक्ष्मण, श्रीमती देवयानी लक्ष्मण पिताशी नाम जहाजिया जो बबीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। की अर्थ थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11:30 बजे की अर्थ थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11:30 बजे के पति श्री विनोद स्तम लक्ष्मण के मकान गांधी रोड एन एस लॉन्ग बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन थर्सडे 4th of June। गालिया गली कास्टेल में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड श्री उत्तम दत्त सामनाथ जो प्रीतम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11 बजे इनके मकान गालिया गली कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भुइयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन थर्सडे 4th of June। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
2: Radio Musti.

0: वेरी गुड इवनिंग आप सभी को. रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स, थर्ड आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स, और मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया. शाम अब रात की दहलीज पर आ पहुंची है. बाहर अंधेरा अपनी चादर बिछा चुका है और सड़कों पर हेडलाइट्स की रोशनी चमक रही है और हवा में एक सुकून सा घुल गया है. दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब समय है थोड़ा सा आराम करने का, थोड़ा सा मुस्कुराने का और दिल को पसंद आने वाले गानों में खो जाने का. आज के इस खूबसूरत ट्यूसडे इवनिंग में अगला एक नहीं कहेंगे बट कह सकते हैं कि 20 मिनट अभी शेष है, तब तो 7 बज जाएंगे और हम चले जाएंगे. बट द थर्ड आवर अब तो कह सकते हैं कि ऑफिशियली शुरू हो चुका है और हम यहाँ पर लेकर आए हैं बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक गाने. वो गाने जो दिल की बात कह देते हैं, वो धुनें जो यादों को जगा देती है और वो एहसास जो शाम को और भी हसीन बना देते हैं. तो जहाँ भी हैं आप, रिलैक्स कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा आप बढ़ाइए और प्यार भरे सुरों के सफ़र को आप भी एंजॉय करते रहिए. रेडियो मस्ती पर रिया के साथ था. आपकी डेडिकेशन, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: वेल, कुछ शामी बस शामी नहीं होती है, वो यादों की किताब बकाए का खूबसूरत पन्ना बन जाती है। कभी किसी गाने से कोई चेहरा याद आ जाता है, कभी कोई पुरानी बात मुस्कान ले आती है, और कभी कभी बिना किसी वजह से बस ऐसे ही दिल मुस्कुराने लगता है। और आज की ये शाम भी कुछ ऐसी ही लग रही है। बाहर अंधेरा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर घर में रोशनी जल चुकी है। कोई परिवार के साथ बैठा होगा, कोई बस ऐसे ही चाय के साथ, एक कप चाय के साथ आराम कर रहा है, और शायद कब कहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको हम मुगवार कहते हैं। एंड आप फिक्र ना करें, क्योंकि आप अभी घर पहुंच जाएंगे फटाफट। तो चलिए नेक्स्ट ट्रैक हम अपने सभी लिसनर्स के नाम चलाते हैं जो हमारे साथ है, कनेक्टेड है। इट्स अ ब्यूटीफुल वन फ्रॉम द मूवी कलयुग।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2 for Radio Masti.
1: चलिए जी, इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ कि ये म्यूजिकल सफर आपको पसंद आया एंड हमारी मुलाकात अब बहुत ही जल्द होगी। तब तक यू टेक केयर, बाय बाय एंड हमेशा कीप स्माइलिंग एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग।

0: प्यार का सलाम आया और प्यार से हम भी आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए। शाम के 7:05 हो चुके हैं, सो वंडरफुल ट्यूसडे इवनिंग और ऑलरेडी 2 June 2026। चलिए आप सभी का वार्म वेलकम एंड अ लवली लवली गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सोच रही थी कि आपको क्या कहें। बस ये मौसम के बारे में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। जितना इसके बारे में सोचने की कोशिश करती हूँ उतना ही उलझता जाता है। कहने का मतलब यही है कि कभी ठंड कभी गर्मी समझ में नहीं आता है कि विंटर सीज़न है कि समर सीज़न है। लेकिन कोई बात नहीं, ये मौसम है हर बार अपना रूप बदलता रहता है। लेकिन हम इतनी गारंटी तो ज़रूर देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। स्पेशली हमारा प्यार अगर कभी बदलेगा तो प्यार और भी मज़बूत होगा, कभी कम नहीं होगा, इतना प्रॉमिस तो ज़रूर करते हैं। चलिए दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 तक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हम लेकर आए हैं एज यूजुअल आप लोगों के लिए खूबसूरत गाने जिनको सुनने के बाद आपको बस और भी प्यार की दुनिया में डूबने के लिए मजबूर कर देगा आपका ये दिल। बस दिल को थोड़ा सा करार देने के लिए, थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं ये गाने, खास तौर से आपकी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए। तो अगर आप लोग भी इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, शायद अभी आपका काम ख़त्म हो रहा है और आप लोग ड्राइव करके घर वापस जा रहे हैं, तो आपको कहेंगे हैव अ सेफ एंड अ म्यूजिकल राइड एंड अ ड्राइव विद रेडियो मस्ती। बस ऐसे ही दिव्या का साथ देते रहिएगा। एंड आपको हम बता देते हैं कि मैसेजेस भेजने का नंबर है 5499-1294, या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, लाइन खुली हुई है ऑन 4028035। कत्सो पर आप ज़रूर हमें याद कर सकते हैं।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

दिल पे कोई जोर नहीं और दिल को क्या कहें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ और करने को मजबूर हो जाता है। शायद इसी वजह से कहते हैं कि जहां पर प्यार होता है वहां पर लॉजिक नहीं बस मैजिक ही काम करता है। शाम के 7:21 टू ऑल दोस हैविंग देयर डिनर राइट नाउ, आपको विश करेंगे बन अपेचे शुभ आहार। वैसे कहते हैं फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो हमेशा आप लोग परिवार के साथ ही मिलकर खाइएगा और इससे आपका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। इस ट्यूसडे इवनिंग को चलिए आपके कुछ और मैसेजेस और डेडिकेशन की ओर हम जरूर बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर अगला गाना खास तौर से आपके स्वीट अरशद के लिए, और आप कहते हैं कि नो वन एल्स इज क्लोजर टू माई हार्ट, ओनली यू इन माई लाइफ, आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू सो मच फ्रॉम रेबेका, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। गिरीश हरलोल साथ देने के लिए थैंक यू सो मच, और आपको गाना चाहिए खता तो जब हो के हम हाली दिल फ्रॉम मूवी दिल का क्या कसूर, चलिए हम इसको चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऑल्सो द नेक्स्ट गाना गुजार फॉर करिश्मा, और साथ में जितने भी सारे लोग इस वक्त शायद नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ थैंक यू सो मच, एंड काम करते करते आप हमारे गीतों को एंजॉय करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस और डेडिकेशन के बीच में एक बहुत ही ख़ास डेडिकेशन है फॉर समवन वेरी स्पेशल। एक छोटी सी राजकुमारी 6 साल पहले इस धरती पे आई थी, और जैसे ही वो आई एक छोटी सी परी की तरह सबकी दुनिया सबके जीवन को उन्होंने बदल के रख दिया। अपने इस खूबसूरत हंसी के साथ, अपने इस प्यार के साथ सबका दिल छू लिया, और उनके बारे में क्या कहें। बस उस छोटी राजकुमारी को हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार, और हम उनको विश करेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू प्रिंसेस आंशी, एंड विशेज कमिंग फ्रॉम मम्मी, आपके पापा हैं केविन, साथ में दादी हैं दादी सन्मति शांति गनुआ, आपके दादा हैं राज ऋषि, और साथ में आपकी फूफू हैं अदिति, आपके फूफा हैं विनय, छोटा भाई है वरदान,

तमाम गनुआ फैमिली की तरफ से आंशी को बहुत बहुत सारा प्यार और आप है गन्यू मोगैल से और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। बस आप जियो हज़ारों साल और ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छी सेहत दे। और चलिए, उनका ख़ास दिन है तो इस स्पेशल ओकेजन को और भी स्पेशल बनाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू प्रिंसेस आंशी।

0: वेल, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, इस काम को और भी आसान बनाने के लिए इसीलिए तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं टू कीप ऑन सेंडिंग यू मैसेजेस ऑन 5499-1294, ताकि दिल का हाल आप बयां कर पाए। और हमेशा हम कहते हैं ना कि जब आपने प्यार किया है तो बस जताना भी आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम छुपाने में माहिर हैं, प्यार जताना तो हमें कभी आया ही नहीं, लेकिन अगर आप जताएंगे नहीं तो लोगों को आप कैसे स्पेशल फील कराएंगे। ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है कि लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर देम, और उनको बताएं कि वो आपकी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं और कितने स्पेशल हैं। सो ऑलवेज़ ऑलवेज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस, जब भी आप कहें ना कि ये मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि मुझे जताना नहीं आता है, तो हमेशा आप ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि ईच एंड एवरी वन डिज़र्व्स टू बी लव्ड एंड टू बी हर्ड, टू बी सीन एंड टू फील लाइक दे आर स्पेशल इन समवनस लाइफ। चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे। एंड आप कहते हैं, गुड इवनिंग, ट्रस्ट यू एंड योर फैमिली आर ऑल फाइन, थैंक यू सो मच, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नेक्स्ट गाना गुजाउट स्पेशली फॉर ट्विंस रेवांश एंड रेयांश, और साथ में गोज आउट फ्रॉम विजय एंड वशिनी एंड मॉम वेदा ऑफ हाईलैंड्स। आपने गाने की फरमाइश की है यहाँ पर, विल ट्राई टू सी इफ वी कुड प्लीज वी कैन प्ले दिस सॉन्ग। एंड साथ में यहाँ पर आप कहती हैं, हाई यू वॉन्ट टू विश माई मॉम संगीता बिपिन ऑफ काहोली इन बेलिया अ वेरी हैप्पी बर्थडे, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना स्पेशली फॉर हर, लव हर सो मच। अनलकीली आपका मैसेज यहाँ पर अधूरा आया है, अगर आप अपना कंप्लीट मैसेज चाहते हैं कि हम इसको पढ़े तो प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, डू सेंड योर मैसेज वंस अगेन ऑन 5499-1294। आप व्हाट्सएप पर अगर हमें मैसेज भेजेंगे तो उधर आपका मैसेज पूरा कंप्लीट आएगा। तो चलिए एक बार फिर से कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो।

0: बिल्कुल, सब लोग यही कहते हैं कि प्यार कर लेने के बाद शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे हसी ये शाम है, और अंजाम सब लोग खूबसूरत ही चाहते हैं, और अगर आप अपनी मंजिल की ओर पहुंचना चाहते हैं तो बस अंजाम के बारे में ना सोचें, क्योंकि अंजाम तो हमेशा क्लाइमैक्स ही होता है और मंजिल हमेशा खूबसूरत ही होती है। एंड जस्ट कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन टुगेदर विद द वन यू लव। चलिए, शाम के 7:51 हो चुके हैं एंड रोशन हुकुम आप है बना कोई सी डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर रानी श्वेता हुकुम, जस्ट वांट टू टेल हर दैट आई लव हर सो मच, एंड अगला गाना हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच रोशन जी, हाय, नाइस सॉन्ग सिलेक्शन, थैंक यू। नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर योर लव साहिल, जिनको आप इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से मिस कर रही हैं, फ्रॉम जानवी, थे जानवी साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड आई जस्ट होप कि आप जब भी साहिल को मिलो तो आप उनको बताओ कि आपने उनको कितना याद किया। हाय, वॉन्ट टू विश माई मॉम संगीता बिपिन ऑफ काहोलिन बिले अ वेरी हैप्पी बर्थडे, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर हर, लव यू सो मच मॉम, फ्रॉम बेटी रीतू, ग्रैंड डॉटर हैं कियाना, ऑल्सो दामाद अविनाश बंजनोव क्यूपिप, इन लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, और बस आप जियो हज़ारों साल और ऐसे ही अपने बच्चों का साथ देते रहिएगा। एंड द नेक्स्ट ट्रैक हम ज़रूर बजाएंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। शायद एक बार फिर से आपको हम याद दिला देते हैं, अगर आप काम पर हैं ना तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम जल्द ही निपट जाएगा। इसको कहते हैं द मैजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिक, जहां पर म्यूजिक अपना जादू चलाता रहता है और आप उस जादू में खोए जाते हैं।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: हाय, ऐसे ऐसे गाने चला रहे हैं आप लोगों के लिए कि सच में आप थोड़े से दीवाने हो ही जाएंगे प्यार में। 8:09 हो चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का हम वार्म वेलकम कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट, आप अभी तक अपने मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294 एंड पलक झपकते ही पता नहीं चला कि हम सेकंड आवर में कब कदम रख चुके हैं। हमने कहा था ना कि दिस इज़ द मैजिकल इफेक्ट ऑफ म्यूज़िक, जहां पर आपको गाने सुनाते सुनाते कुछ दिल का हाल बयां करते करते बस ये वक्त ऐसे ही धीरे धीरे करके निकलता ही जाएगा। चलिए यहाँ पर आपके कुछ और मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं ऑन 5499-1294 जिनकी ओर हम थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट, लाइन खुली हुई है अगर आप फिर से हमारे साथ बात करना चाहते हैं। यस, कुछ कुछ लोग हैं जो ऑफ एयर बात करते हैं, ऑन एयर आने से थोड़े से हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, तो कोई बात नहीं, आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑन 5499-1294 फोर मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के लिए 402-8035-4500 पर आप हमें ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं। लाइन खुली हुई है तो आपके फोन कॉल्स का जरूर इंतजार करेंगे।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वेल चलिए बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं। वैसे एक मैसेज इज ऑलवेज द सिंबल ऑफ लव, क्योंकि प्यार में लोग वक्त निकालना जानते हैं और आपके मैसेज में बस प्यार ही प्यार झलकता है। थैंक यू सो मच अपनी बिजी लाइफ में छोटा सा वक्त हमारे निकालने के लिए। हाय दिव्या, हाउ यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आपको फ्लू हुआ है? ओ माई गॉड, जुकाम तो बहुत ही बुरी चीज़ है। काढ़ा पीजिएगा एंड ट्राई टू हैव सम लाइम टी और जिंजर टी, अदरक वाली चाय आपकी इम्यूनिटी को ज़रूर बूस्ट करेगा। एंड आई जस्ट होप दैट यू रिकवर वेरी सून, सो विश यू अ क्विक रिकवरी एंड गेट वेल सून। कुछ नहीं कर पा रही हैं आप, बस गाने सुन रही हैं, बस यही बहुत ही बड़ा काम है। आई एम जस्ट श्योर कि म्यूजिक विल वर्क वंडर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच रोशनी जी आपके मैसेज के लिए। हाय दिव्या, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर बहन शोभा, अनुराधा, लक्ष्मी के लिए, सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए। एंड आप के लिए हम खास तौर से ये अगला गाना डेडिकेट कर रही हैं। अनीता जी, आप हैं फ्लिक ऑन फ्लैग से, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर फ्रेंड रीना पुलवन। ऑल आवर ब्लेसिंग्स अपन हर फॉर हर जेनरोसिटी। फ्रॉम बेस्टीज रितिशा, लतिका एंड अनलकीली, आपका मैसेज यहाँ पर इनकम्प्लीट आया है, इसीलिए तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं टू कीप सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन व्हाट्सअप। नंबर तो वही है 5499124। नमस्ते, आप है गीतिका जोधा फ्रॉम पोतुपीमा, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर मॉम सुखवानी एंड दैद चंदन। तो चलिए आपके पेरेंट्स के लिए अगला गाना एंड ऑल्सो टू ऑल दोज जो हद से ज्यादा इस गाने को पसंद करते हैं।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वैसे अगर सोचा जाए तो ज़िंदगी में प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है और सच्चा प्यार बस ऐसे ही लोगों के पास नहीं आता है, ना ही आपको इसको ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। बस जब आपके इरादे नेक होते हैं तो सच्चा प्यार खुद आपको ढूंढ ही लेता है। चलिए, यहाँ पर किसने कहा है, साथ रहते यूं ही वक्त गुजर जाएगा, दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल जब हम साथ हैं दोस्तों, कल का क्या पता वक्त कहाँ ले जाएगा। ये आपने एकदम सही कहा, इसीलिए तो कहते हैं कि आने वाला पल आकर ही रहता है और जाने वाला पल जाकर ही रहता है। आकाश चेतन मनसुख, आप हैं बॉम्बू से, थैंक यू सो मच आपके इस खूबसूरत शायरी के लिए और आप सबको विश कर रहे हैं गुड इवनिंग एंड हैप्पी हैप्पी ट्यूसडे, लोट्स ऑफ करेज टू बोथ योर फ्रेंड्स दिशाल महादू एंड युदीन सुमारू ऑफ बॉम्बू। एंड चलिए, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत करेज। एंड आप कहते हैं कैन यू प्लीज़ प्ले द सॉन्ग व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट, ये तो हमेशा आप इसका रिक्वेस्ट करते रहते हैं। कैश, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। चलिए, जितना पॉसिबल होता है हम यहाँ पर आपके गानों को चलाने की कोशिश करते हैं। एंड फिलहाल के लिए हमें किसी ने फ़ोन किया है ऑफ एयर और आप है रागिनी जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड फॉर ऑल योर फैमिली और आप हैं थुदुदु से और बहुत ही प्यार से कनेक्टेड हैं हमारे साथ।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. Well, we have this beautiful masterpiece, one of my favorites. Harshit Saxena ki awaaz mein Haali Dil Tujhko Sunata aur bas pyar mein sab log yahi sochte hain ki koi aisa ho jo end of day uske saath hum baithe kuch baatein kare aur wo hame sune hum kuch sunaye. दिल का हाल ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ बयां करें. कभी ऐसा होता है ना कि जिनसे आप प्यार करते हैं और आपको लगता है कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में हो तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं, इसको ही सच्चा प्यार कहते हैं. चलिए, आपका प्यार कभी आपसे ना छूटे और कभी ना रूठे. एंड आई जस्ट होप कि आपको ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिलता रहे. वेल, ये गाना हम ख़ास तौर से डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर गायत्री जी. आप कहती हैं, हाय लवली दिव्या, प्रणाम, नमस्कार. आपको भी नमस्कार, प्रणाम. हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल शो. अनकंडीशनल लव इज़ द नोबलेस्ट गिफ्ट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन गिव ईच अदर. गॉड ब्लेस, टेक केयर. थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज इंडीड. जिंदगी में आपको बस थोड़ा सा और काइंड होना है टवर्ड्स ईच अदर एंड टवर्ड्स अदर्स, स्पेशली टवर्ड्स योरसेल्फ. और अगर आप ये दिल में रख लेना तो ज़िंदगी में आपको सब अच्छे ही नज़र आने लग जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. बस नज़र और नज़रिए की बात है और ऐसे ही ज़िंदगी कटती जाती है.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Well, today इसी के साथ it's a time for me to say goodbye to all of you. हमारी और आपकी मुलाकात बहुत ही जल्द होने वाली है. Of course, कल मुलाकात होगी सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक. चलिए यहाँ पर आप कहते हैं जाते जाते आपका ये मैसेज जरूर हम पढ़ेंगे. हेलो दिव्या जी, नमस्कार. कैन यू प्लीज प्ले अ सॉन्ग फॉर माय एल्डेस्ट डॉटर मोक्षदा गंगादीन. कल उनका बर्थडे है और इट्स अ वेरी वेरी बिग डे फॉर हर बिकॉज शी विल बी स्वेयरिंग इन एज नोटरी एट द सुप्रीम कोर्ट. दैट्स अ रियली गुड न्यूज. हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार एंड लोड्स ऑफ गुड विशेज एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द प्राउड पेरेंट्स एंड टू मोक्षदा एज वेल. एंड आप कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन Congratulations to her and wish her plenty of more success in the future from Mom Babita. Dad Subhash, behen hai, Pim, Smriti, Dadi, sabhi Gangadin family of Sudnak and Sebastopol, Har Har Mahadev, aapko bhi once again many many congratulations. To chaliye isi ke saath hum aapse vida lenge. Kal subah aapse mulaqat karte hain. Tab tak ke liye Divya ko dijiye ijazat. Take care, keep smiling. Shubh ratri, shubh bakhair.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: लीजिए साहब, जून का महीना भी शुरू हो चुका है। लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर और आपकी हमारी मुलाकात हो रही है जून के महीने में इस प्रोग्राम के साथ। जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की। अब इमोशन से भरी ये शाम कुछ अलग ही देगी इस वक्त को अंजाम। ये वो वक्त है जब दिल थोड़ा सा ज़्यादा फील करता है, इमोशंस को ज़्यादा समझता है। तो हम भी लाए हैं वो मेलोडीज़ जो सीधा दिल से कनेक्ट होंगी। जी हाँ, कुछ अलग अलग स्टाइल के गाने, नाइन जहाँ पर टेम्पो थोड़ा सा हाई रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्लो टेम्पो, क्योंकि रात भी खामोश होती जा रही है और दिल से दिल तक बात पहुँचनी ये भी जरूरी है। लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर, चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ।
2: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: कहते हैं कि रात और म्यूजिक का रिश्ता बहुत पुराना है और इस वक्त हर गाना भी कुछ खास ही लगता है। तो अगर आप भी मेमोरी लेन में हैं और इस मेमोरी लेन में चलना चाहते हैं तो बस हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब दिल की प्लेलिस्ट खुलने वाली है और हर ट्रैक बनेगा सुनेगा एक नई कहानी।
1: लेट नाइट ग्रूव्स
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: अच्छा, कभी आपके साथ हुआ है कि गाने को सुनने के बाद ही आपको कुछ याद आ जाए, या फिर वक्त आपको हाथ थामे कहीं पीछे ले गया हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप एक सच्चे ट्रू म्यूजिक लवर हैं, क्योंकि म्यूजिक के साथ कनेक्ट करना आपको आता है। हर एक मेलोडी, हर एक गाना जैसे सॉफ्टली आपको हग करता है। म्यूजिक टू सराउंड यू, म्यूजिक टू बी अराउंड यू, हमेशा की तरह RM2 पर आपके लिए म्यूजिकल वाइब्स।
3: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 Radio Musty.

0: जाना।
1: It's all day long. Bollywood hits music.
2: Check this out.
1: Radio Musti. Radio Musti. Feel the musti.
3: Nimura, nimura, nimura.
2: Check this out.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
4: अच्छा बॉलीवुड में हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बस वो बैठे थे कि एक सिचुएशन का इंतजार करते हुए कि ये सिचुएशन आएगी तो एक धुन बज जाएगी। फीलिंग ज़्यादा महसूस होती है ना उस वक्त, यानी कि इमोशंस को जिस तरह पर्दे पर दिखाया जाता है। लेकिन साहब हमारे कान के पर्दे से जब बात जाती सीधा दिल पर तो फिर कुछ नाम, कुछ यादें, कुछ पल सामने आते हैं। ये एक अलग ही फंडामेंटल केमिस्ट्री है बॉडी की कि जाने कब कैसे दिल का पिटारा खुलता है और कुछ आता है आंखों के सामने। तो बस इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया। अगर किसी की याद आई है तो एक छोटा सा मैसेज, कुछ दिल से बात।
0: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti.

0: ये गाने आपके दिल को रिचार्ज कर देंगे। मेलोडीज हैं, म्यूजिक है, लिरिक्स है और सूदिंग वाइब्स, अमेजिंग सुपर हिट गानों के साथ जुड़ गए आपके साथ और सब कुछ रेडी आपके लिए ऑन द मेन्यू। तो बस हेडफोन पहनिए और दुनिया को थोड़ा पॉज कीजिए, क्योंकि ये वक्त सिर्फ आपका है। वो कहते ना, मी टाइम।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: ये रात धीरे धीरे खूबसूरत होती जा रही है और साथ में बज रहे हैं बॉलीवुड के कुछ कमाल के गाने, कुछ गाने जो आपको स्माइल देंगे और कुछ गूज बम्स, क्योंकि हो सकता है उस सिचुएशन से आप फिलहाल गुजर रहे हो और कुछ आपको क्वाइटली इमोशनल कर सकते हैं। तो बस दिल खोल के सुनिए और ये सोचिए कि अगर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं तो आपके अंदर फीलिंग्स तो भरपूर हैं, इनको फील भी करना जरूर है।
2: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 Radio Musti।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: दुनिया वो ही, रास्ते वो ही, लेकिन अभी सब कुछ जैसे थम सा गया है।

0: वो ट्रैफिक, वो भागा दौड़ी, वो शोर शराबा सब थोड़ा कम हो चुका है, इसलिए सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। ये फीलिंग्स भी अलग सी चीज़ है ना, कहाँ पैदा होती हैं और कहाँ से महसूस की जाती हैं, लेकिन एक जोर का प्रभाव करती हैं हमारे दिल और दिमाग पर। कभी लगता है दिल सही है कि दिमाग, लेकिन साहब दोनों को अगर बैलेंस में ले आए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा इमोशनल बन जाए तो गलत बात तो नहीं।
1: लेट नाइट ग्रूव्स, RM2, Radio Musti.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a Musty.
2: भाई फिल्मी सॉन्ग्स का माजे की कुछ अलग होता है। एक लाइन और पूरी मेमोरी बिल्कुल फ्रेश। आज की रात वैसे सरप्राइजेस आ रहे हैं इन गानों के साथ। और सोचिए कब किसने कैसी सिचुएशन देखकर कोई गाना लिखा होगा और इतने सालों के बाद एक बार फिर से उसका चलना या फिर लगना कि अरे ये गाने इतना बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो मैथमेटिकल हो जाएगा, लेकिन अगर दिल से कुछ करें तो वो मैजिकल हो जाएगा। चलिए मैजिक को थोड़ा स्प्रेड करते हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।
3: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 Radio Musty।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
5: पूरी दिन की भागदौड़ के बाद रहता है याद की कुछ शांति, कुछ calmness और अच्छे गाने, ये एक जरूरत है। यानी कि जब आपकी तबीयत कभी खराब हो, अब जब मौसम चेंज हो रहा है तो हाँ कुछ ऐसे ही। वहीं पर कभी लगता है कि जैसे भागदौड़ के बाद क्या चाहिए भाई, कोई दवाई तो नहीं लेकिन म्यूजिक की थेरेपी जरूर चाहिए। वहीं पर सॉफ्ट बीट्स और लवली लिरिक्स, हार्ट टचिंग वाइब्स, सब कुछ ये प्रॉमिस है इन द मेन्यू टुनाइट RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स। कोशिश रहती है कि आपके साथ इस लंबे सफर में हम सफर बन जाएं।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: दिमाग कहना तो बहुत कुछ आता है, बताना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन कभी कभी लफ्ज नहीं मिलते। तो अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स आपकी बात कह पा रहे हैं तो ये माजी तो है। इस वक्त हम वही मैजिकल गाने लेकर आए जो आंखों में स्पार्कल और चेहरे पे स्माइल ले आए। हो सकता है कि गाने को सुनकर वो मिसिंग वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में फिल हो जाए। तो बस कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी लगता है कि थोड़ा सा गैप है, उसको म्यूजिक से भर दीजिए। फिर देखिए जिंदगी रंगीन, बेहतर से बेहतरीन।
2: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musti. RM2 Radio.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
3: जितने लोग प्यार मोहब्बत में हैं और हो सकता है कि पार्टनर के साथ कुछ बातचीत थोड़ी सी इधर उधर की कहानी शुरू हो जाती है, फिर लगता है उसको सॉल्व कैसे करें, तो वो ही

0: प्यार मोहब्बत आराम से एक दूसरे के अगर आप केयर करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो फिर एक दूसरे के बारे में जानेंगे भी, उस सिचुएशन के बारे में भी, या फिर जो आपको उनसे कहना या फिर उनको आपसे, ये सोचना जरूरी है। एक दूसरे को वक्त दें, समझें, हर एक की सिचुएशन जरूरी है।
1: Late night grooves. RM2 Radio Musti.

0: RM2 Radio Musty. Hot the lights go black. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: वैसे कितना समय उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि ऑफिस में बिताते हैं और वहाँ भी एक फैमिली सी बन जाती है ना, हर किसी की बात सुनना या फिर कोई अगर आपसे कोई ओपिनियन मांग रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, तो कभी कभी वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और फिर आपको लगता है कि कोई तो है जो अपने दिल की बात आपसे कर सकता है या फिर आपको लगता है कि आप उनसे कर सकते हैं और फिर दिल हल्का महसूस होता है जी हाँ बात करने से सिंपली। हाँ वैसे एक फैमिली नेटवर्क है हमारा, इतने सारे लोग, कोई तो होगा जो आपकी बात सुनता है, इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि आप अकेले नहीं और कभी कोई भी आसपास ना हो तो म्यूजिक है ना 24/7 आपके लिए यहाँ पर।
3: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musty.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: बॉलीवुड म्यूजिक और लेट नाइट वाइब्स, टाइमलेस कॉम्बो। आज भी बस खुश ये कि जो मैजिकल म्यूजिकल एनर्जी है वो आपके साथ इन गानों के साथ छोड़ दें और कह देना कि ये जो गाने हैं वो कभी पुराने नहीं होते। तो इस रात पीसफुल मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं और दिल को करते हैं रिफ्रेश, रिवाइंड। और उसके बाद देखिए कल आप जब उठेंगे अपने दिन को बिताने के लिए एकदम फ्रेश।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 Radio Masti।

0: चलिए मिडनाइट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज का सफर एक बार फिर से इमोशंस और मेलोडीज से भरा रहा। कहीं रोमांस रहा, कहीं फ्रेंडशिप, कहीं ड्रीम्स। हर एक गाना जैसे एक नई फीलिंग लेकर आता है। तो स्माइल करते रहिए और जिंदगी के अलग अलग इमोशंस को अपने दिल में कैप्चर करके जिंदगी को खूबसूरत बना लीजिए। हम भी आपका साथ देने के लिए जल्दी वापस लौट कर आएंगे। टिल देन यू टेक केयर और लेट नाइट मेलोडीज पर मैं विकास आपके साथ जल्द मिलता हूँ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।
1: Late Night Grooves. RM2 Radio Musti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती। You're listening to RM2 or Radio Masti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Masti.
1: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty feels a musty.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Musti
1: in the mix.
0: Radio Musti feels a musti
1: in the mix.